ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली और प्रातःकालीन सभा अब मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को है, अब सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आज का विचार। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे पाप और पुण्य विषय पर विचार। वाचक स्वर है डॉक्टर छगन मोहता का।
2: भारतीय धर्म और दर्शन की दृष्टि से पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, सदाचार और कदाचार, नैतिकता और अनैतिकता के संबंध में मूल धारणा प्राय एक सी ही है। बादरायण व्यास का ये श्लोक प्रसिद्ध है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात 18 पुराणों में 2 ही सार वचन है कि पराय का उपकार करना पुण्य है और पराय को पीड़ा देना पाप है। इसी धारणा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यों व्यक्त किया है कि परहित सरकार या अनैतिकता का मूल कारण मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति है और इसके विपरीत पुण्य, धर्म, सदाचार और नैतिकता का मूल उसकी परार्थ वृत्ति है। ये दोनों वृत्तियाँ प्रत्येक मनुष्य में जन्मजात होती है। मनोविज्ञान में एक को इगोइज्म और दूसरी को अल्ट्रोइज्म कहते हैं। जन्म के पश्चात जिस तरह की शिक्षा दीक्षा व परिवेश का प्रभाव मनुष्य को संस्कारित करता है, उसी के परिणाम स्वरूप दोनों में से कोई एक वृत्ति प्रबल हो जाती है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में इसका काफ़ी विवेचन किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि यदि हम अपनी जीवन दृष्टि में साध्य और साधन का विवेक करने की शिक्षा शैशव अवस्था से ही दे सकें तो नैतिकता के निर्माण में बहुत कुछ सफलता हो सकती है। बचपन से ही व्यक्ति को ये सिखाने की आवश्यकता पड़ती है कि जिस परिवेश में वह रहता है उसमें किए जाने वाले प्रत्येक क्रियाकलाप का साध्य वह स्वयं नहीं है, बल्कि जिसको वह अपने से अन्य समझता है वही उसका साध्य है और वह स्वयं तो उस साध्य की पूर्ति का साधन मात्र है। ऐसा समझने से वह व्यक्ति साधन ही नहीं बल्कि सही अर्थों में स्वयं साधक हो जाता है। अभिभावक संतान के हित को, संतान अभिभावक के हित को, पति पत्नी के हित को, पत्नी पति के हित को, व्यापारी ग्राहक के हित को, चिकित्सक रोगी के हित को, शासक शासित के हित को, शिक्षक शिक्षार्थी के हित को साध्य समझकर कार्य करें तो सबका पारस्परिक व्यवहार

ही साधना बन सकता है। भारतीय तत्व ज्ञान की दृष्टि से वास्तव में पर या पराया कोई नहीं होता, क्योंकि एक ही परम सत्य स्व और पर, अपने और पराये दोनों में अंतर्निहित होता है और समस्त देहधारियों का यही परम जीवन है। इसलिए केवल अपने शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि को ही साध्य न मानकर जीवन की दिशा को परार्थ की ओर मोड़ देने से जो साधना होती है वह परम जीवन की सेवा हो जाती है।

0: स्वकर्मणा तमभ्यर्चय सिद्धिम विन्दति मानवा, अर्थात जिस परम सत्ता से समस्त प्राणियों की प्रवृत्तियों का संचालन हो रहा है और जो इन सब में व्याप्त है, उसकी पूजा प्रत्येक व्यक्ति अपने सहज स्वाभाविक कर्मों के द्वारा करके ही परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ये स्वार्थ से परार्थ और परार्थ से परमार्थ तक पहुँचने का अथवा अनैतिकता से नैतिकता और नैतिकता से आध्यात्मिकता तक उत्क्रांत होने का सोपान क्रम है।
1: अभी आपने सुना पाप और पुण्य विषय पर विचार, वाचक स्वर था डॉक्टर छगन मोहता का। इसी के साथ कार्यक्रम आज का विचार यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, सुबह के 6:10 होने को हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये पहला भजन वंदना में हम आपको सुनवा रहे हैं नितिन मुकेश और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में।

हरिहरन और साथियों की आवाज में ये भजन अभी आपने सुना। कार्यक्रम वंदना में लीजिए अगला भजन, हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। 6:30 होने को है, लीजिए अब सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान। आज आप इसमें सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 133 से दोहा संख्या 135 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। संगीत है सतीश भाटिया का।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूल कर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिवजी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो। फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आज आपने इसमें सुना बालकांड के दोहा संख्या 133 से दोहा संख्या 135 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। समय है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके विवरण का।

आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, और इसी केंद्र से रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से कार्यक्रम शख्सियत का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। वहीं 6:40 पर इसी केंद्र से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, और जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से ही सिंधी कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:10 से। आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से अब से कुछ ही देर में सुनेंगे आप कार्यक्रम खेती की बातें। ठीक 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुप्रभात, और 7:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत हेल्दी बीकाना। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 8:30 से। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय रहेगा गर्मी में नवजात और छोटे बच्चों की देखभाल विषय पर। डॉक्टर गौरव दाधीच से श्रीमती बरखा थानवी व्यास की बातचीत, और एक अन्य भेंटवार्ता में रक्तदान के फायदे विषय पर डॉक्टर प्रेम कुमार से श्री रेवंत राम लेघा की बातचीत। सहभागिता श्रीमती कविता वर्मा की रहेगी, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का। 9:10 पर सुनना ना भूलिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से पॉडकास्ट प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे बच्चों का कार्यक्रम मुकुल, जिसमें आज चर्चा रहेगी गर्मियों में बच्चे रखें अपना ख्याल, कहानी एक कदम शांति की ओर, कविता पाठ हमारी सुंदर धरती, और रोचक जानकारी में नदियों के बारे में जानकारी। फिल्म संगीत सुनना ना भूलिएगा 10 बजे से, और 11 बजे हम आपको सुनवाएंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज विषय रहेगा युवा शक्ति। वहीं ठीक 11:35 से आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्में गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर में 12:40 पर सुनिएगा फिल्म संगीत, और दोपहर 1:05 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज चर्चा रहेगी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, भोजन की शुद्धता, बच्चों के टिफिन के लिए पौष्टिक आहार, मिलावटी खाद्य पदार्थों की घर पर पहचान, नियमित योग अपनाएं, और साथ ही कार्यक्रम में एक वार्ता जिसका विषय रहेगा गर्मियों में खान पान। वार्ताकार होंगी श्रीमती पूनम गर्ग। 2:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी शाम 5:05 पर, जिसमें आज की बात में चर्चा रहेगी योग और स्वस्थ वृद्धावस्था का विज्ञान। लघु जानकारी के विषय रहेंगे AI और रोजगार की संभावनाएं, सतत विकास।

0: आज इसरो और अनुच्छेद 112 कार्यक्रम के रेगुलर सेगमेंट्स रोजगार समाचार और क्विज टाइम कार्यक्रम का अंग रहेंगे। 6:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत। ठीक 7 ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, जिसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे समेकित कीट प्रबंधन, खरीफ सीजन में काम आने वाले 10 उपयोगी कृषि यंत्र, विश्वकर्मा योजना, किसानों के मित्र पक्षी और इसी के साथ कार्यक्रम में मौसम की जानकारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और लोकगीत भी रहेगा। 7:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत और लोक संगीत सुनना न भूलिएगा 8:30 से। वहीं फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 9:15 पर। श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। आज आप इसमें सुनेंगे मोठ की उन्नत खेती के बारे में जानकारी। वाचक स्वर है श्री अनिल सिंह का।
1: किसान भाई बहना राम राम। किसान भाई बहना आप देखा कि आपने जो की पश्चिमी राजस्थान रमाई आपने जो की वीरानी खेती बाड़ी करी जावे और वीरानी खेती बाड़ी में आप देखा कि भाई आपने मोटे तौर से मोठ जो की फसल है वह आप उत्पादन ले कर रहा और आपने राज्य री मोठ री पैदावार रो 99% उत्पादन पश्चिमी राजस्थान से ही उत्पादन लियो जावे जो की मोठ री फसल है या सूखो सहन करने में ऐसी क्षमता बहुत ही ज्यादा होया करे। मोठ री जो की जड़ा है वह गहराई ते जावे और चूंकि मिट्टी में नमी हुए वह लेती रहे। तो आप जो की मोटरी खेती बाड़ी है वह उन्नत तकनीका सु कर अपनी जो की मोटरी खेती बाड़ी में 25-60% अपनी पैदावार ने बढ़ा सका है। किसान भाई बिना मोटरी पैदावार ज्यादा लेने खातर अपन के सबसे पहला भूमि की जो की तैयारी है वह कहीं ध्यान देना बहुत जरूरी है। कभी जो की मोटरी पैदावार आप ले तो वह में खेत की जो की तैयारी है वह करनी बहुत ही जरूरी है। खेत की तैयारी करा सबसे पहला ध्यान देवा कभी आपने जो की खेत में पानी रुके नहीं और पानी की जकी निकासी है वह अच्छे तरीके से होनी चाहिए और अपन जकी क्रॉस जुताई है नी हैरो सी करने नहीं भूला और एक जुताई जकी कल्टीवेटर पाटो लगा करा भूमि समतलीकरण कर लेना चाहिए। और आप बात करा कभी मोटरी ज्यादा पैदावार लेने खातर सबसे मोटो ध्यान रखना है कभी पिछली बार आपने ए भूमि रमाई जैमे आप मोटरी बिजाई करने लाए रहे हैं वे में मोटरी पैदावार नहीं ली होनी चाहिए और उन्नत तकनीका है उन्नत किस्म है उन्होंने आप काम में ही लेना चाहिए। जी हाँ, उन्नत किस्म की बात करा RMO 40 एज के पकड़ की अवधि है वह 55-60 है। औसत जो की उपज है वह प्रति हेक्टर 6-8 क्विंटल है। RMO 225 पकड़ी जो की अवधि है वह 60-65 काजरी मोठ 2 70-75 पक जावे और काजरी मोठ 3 65-70 रमाई पके। RMO 257 62-65 रमाई यह फसल पकर तैयार हो जावे। तो किसान भाई बहना ध्यान देवा कभी जकी वर्षा ऊपर आप आधारित हाँ बठे मोठ जकी फसल है वह आप आसानी से उत्पादन मोठ फसल रमाई सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा वह है खरपतवार और खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। निराई गुडाई टाइम पर करते रहा और ज्यादा आप नहीं लगे कि भी खरपतवार हो रही है तो आप पेंडी मेथालीन जकी 3.30 लीटर 500 लीटर पानी घोल रमाई मनार प्रति हेक्टर छिड़काव कर देवा तो वैसे आपा ने खरपतवार से निजात मिल जाए। मोटी फसल रमाई दिमक री भी भरमार होया करे तो दिमक आपने फसल ने नुकसान नहीं पहुंचावे ए खातर आपा ने जकी खेत री तैयारी करता ध्यान देवा कभी अंतिम जुताई करा वह टाइम क्यूनोलफॉस पाउडर जो है 20-25 किलोग्राम मात्रा में प्रति हेक्टर मिट्टी में मिला देना चाहिए। कातरो है जो कातरा लट हुआ एक त्रिकरी थे तो जानो यो यह भी आपने जो की फसल है मोटरी बने नुकसान पहुंचा हुआ है और इन्हें खत्म करने खातर मिथाइल पैराथायोन पाउडर जो है 20-25 किलोग्राम मात्रा रमाई प्रति हेक्टर सु देनो चाहिए। मोटरी फसल रमाई तना झुलसा रोग है जो मोटे तौर से दिखाई देवे और जका पौधा मुरझान लाग जावे अपन लक्षण दिखाई देवे तो 2 किलो मेनको जो ने 500 लीटर पानी रमाई घोल मिलार आप प्रति हेक्टर छिड़काव करना चाहिए। मोटरी बुआई री बात करा किसान भाई बना तो 15 जुलाई तक आपने मोटरी फसल री बुआई कर देनी चाहिए और जब बिरखा लेट हुई हुई है तो आप 30 जुलाई तक मोटरी फसल रो बीजान कर सका। अपन ध्यान देवा कभी जे आप 25 फसल री बुआई करा तो जल्दी पकड़ री जो की किस्म है उन्होंने बुआई काम में लेवा। मोटरी फसल री बुआई करता ध्यान देवा कभी जो की कतार सु कतार की दूरी है 45

0: सेंटीमीटर रखा और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना उचित होया करे। किसान भाई बिना फसल अपना कोई भी विज्ञान करा पर फसल चक्र ने अपना बहुत ही जरूरी है। फसल चक्र ने आप अपनावा तो आप कम खर्चा में ज्यादा उत्पादन ले सका और वर्षा आधारित क्षेत्र में मोट बाजरा जी की फसल है उनारो फसल चक्र आप आसानी से अपना सका और अपनी जी की पैदावार है मोटरी वह आप उत्पादन ने बढ़ा सका।
1: अभी आप सुन रहे थे मोट की उन्नत खेती के विषय में जानकारी, वाचक स्वर था श्री अनिल सिंह का। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक भजन। ये लोक भजन हम आपको सुनवा रहे हैं अब्दुल शकूर सुलेमानी की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे ये लोक भजन अब्दुल शकूर सुलेमानी की आवाज में। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। लीजिए अब सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमंत्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काली भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमी कर्तुं अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवित जनसम्बन्धस्य सीमापार सम्पर्कस्य पारस्परिक सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रियसीमासु वित्तीयव्यवहारस्य भवननिर्माणस्य सम्पत्तिक्रयविक्रयणस्य च विषये विशेषसमवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः BSF इति सीमासुरक्षाबलस्य त्रिपुरासीमामुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तरराज्यसीमाक्षेत्रविषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमंत्री विगत पंचवर्षाणां भूमि लेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंक सत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अंतिमां तिथिं जून मासस्य सप्तम दिनांक पर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा

0: श्रृङ्खला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकान्तरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारम् एषा श्रृङ्खला जिता। अपरतः नव चण्डीगढ़े भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडा समाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, सुबह के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है सुप्रभात।

आज के सुप्रभात के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सुप्रभात में हम बात करेंगे बहुत सारे आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों के बारे में। और बातों की अगर बात हो तो किस्से कहानियां जो हैं वो हमारे जीवन का बहुत ही खूबसूरत पहलू होते हैं। किस्से कहानियां, जी हाँ, जब दादी नानी सुनाती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, कल्पनाओं की एक अलग ही दुनिया में उड़ान भरने लगते हैं। और जब दोस्तों से सुनते हैं या फिर अपने दोस्तों को सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई सीख ज़रूर लेकर के आते हैं। जी हाँ, ऐसे ही एक कहानी से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। और कहानी है एक बड़ी सी कंपनी में एक ऊंचे पद पर काम करने वाले अमन की। अमन, जिसका पूरा दिन डेडलाइंस, फाइलों और फोन की नॉनस्टॉप बजती रिंगटोन के बीच कहीं ना कहीं उलझ चुका था और उस शोर में अमन खुद को खो चुका था। इसी शोर में उसके कंधे जो हैं वो लगातार जकड़न का शिकार होते जा रहे थे। इस तनाव की वजह से अमन चिड़चिड़ा भी रहने लगा था और सबसे कहीं ना कहीं अलग थलग भी रहने लगा था। सिर का दर्द हो या फिर शरीर की थकान हो, ना तो वो इसके बारे में ज़्यादा किसी से बात करता और उसे कहीं ना कहीं अंदर पता भी था कि इस बारे में बात करने से तो खास कुछ होने वाला है नहीं, और उस चीज़ को ठीक करने के लिए फ़िलहाल वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और ऐसे ही दिन अमन बैठा था अपने बगीचे में अपनी फाइलों के बीच अपने फ़ोन का जवाब देते हुए, और उसकी नज़र पड़ी माली पर। जी हाँ, माली बाबा जो है वो अपना काम करने में लगे थे, अपने पौधों को पानी दे रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे। और अमन ने उनको देखकर सोचा कि क्या इनको कभी तनाव नहीं होता होगा, और उसने माली बाबा से पूछ ही लिया कि बाबा, क्या आपको कभी चिंता नहीं होती, आपको कभी तनाव नहीं होता? बाबा मुस्कुराए। बाबा ने मुस्कुराते हुए अमन की तरफ देखा और बाबा बोले, बेटा, ये तनाव, चिंता सब बाहरी दुनिया की बातें हैं, बाहरी दुनिया का शोर है। मैंने योग और ध्यान के जरिए अपने अंदर शांति की खोज कर ली है, तो मुझे अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमन ने कहा, बाबा ये कैसे संभव है? तनाव तो हर किसी के जीवन का अंग है, इसको तो चाहते हुए भी हम नहीं छोड़ सकते। बाबा फिर से मुस्कुराए, बोले, बेटा तुम अभी बहुत नादान हो, शायद तुमने अभी अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है, इसी वजह से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो जिस दिन तुम अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, इस योग को, इस ध्यान को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम उसकी ताकत को वास्तव में पहचान पाओगे। और योग का अर्थ है खुद से जुड़ना, और ध्यान का अर्थ है उस जुड़ाव को महसूस करना। ठीक है, तो अब इसके बारे में सोचो और उसके बाद इसको अपने ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करो, तब देखना इसकी ताकत। अमन ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, ठीक है बाबा, मैं कोशिश करता हूँ, हुआ तो ठीक है, मेरा ही फायदा है, और नहीं हुआ तो फिर मैं आपसे फिर से बात करूँगा। बाबा ने कहा, बिल्कुल बेटा।

0: मैं तो यही हूँ, जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। और अमन लग गया इस योग और ध्यान को अपने जीवन में उतारने के लिए। और कुछ ही समय में उसने देखा कि बहुत फर्क पड़ा उसको। उसने बाबा से वादा किया था कि छोटी छोटी चीज़ें करूँगा, एकदम से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा प्राणायाम धीरे धीरे अपने जीवन में उतारूँगा। और सच में अमन ने खुद देखा कि उसके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव इसके ज़रिए आए हैं। तो श्रोताओं, योग जो है और ध्यान जो है वो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में बदलती हैं, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। और जब हमारा दिमाग शांत रहता है, हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो हमारी समस्याएं हैं उनका बेहतर विकल्प, उनके बेहतर सॉल्यूशंस ढूंढने के अंदर लग जाते हैं। तो ये है योग की ताकत। इस बारे में इस गीत के बाद आकर के आपसे और बात करूंगी। तब तक सुनिए और मजा लीजिए इस गीत का।
1: Tell Molly, jump in.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: श्रोताओं, गीत से पहले हम बात कर रहे थे योग के बारे में और ध्यान के बारे में। तो भाई, इसके बारे में अगर कुछ शब्दों के माध्यम से बयां किया जाए तो और बेहतर होगा। और यही कहना चाहूँगे कि भीड़ में भी जो एकांत खोज लेता है वही तो तनाव की जंजीरें तोड़ देता है। जो ध्यान की गहराई में उतर हर चिंता छोड़ देता है, योग के जरिए वो खुद को ही हासिल कर लेता है। ये जरूर ध्यान रखने की बात है कि ध्यान करना कुछ न करना नहीं है, बल्कि सब कुछ सही तरीके से करना है। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो ध्यान का मतलब ये समझते हैं कि ध्यान से जो है ना, जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं उस समय हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आने चाहिए, हमें बिल्कुल विचार शून्य हो जाना चाहिए, हमें कुछ भी दिखाई ना देना चाहिए, हम कुछ भी सोचे नहीं, हम कुछ भी करें नहीं। ऐसा नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो काम आप कर रहे हैं, जिस समय आप कर रहे हैं उस समय पर आपकी एकाग्रचित्त इतना होना चाहिए आपको कि कहीं भी आपका ध्यान इधर उधर भटके नहीं, और आप उस पल में, उस मोमेंट में, उस समय में पूरी तरीके से उपस्थित रहें, यानी प्रेजेंट रहें। जी हाँ, आपकी प्रेजेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा सा उदाहरण अगर बात करें तो ये है कि जब बच्चा जो है स्कूल में जाता है, या कॉलेज के विद्यार्थी हों, या ऑफिस में भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और उस समय पर क्या होता है कि अगर हम वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, हम सोच रहे हैं घर में आ जा करके ये काम करना होगा, बच्चा सोच रहा है अगले जो कक्षा आने वाली है उसका होमवर्क मैंने नहीं किया है, या फिर जो लास्ट पीरियड है उस टाइम पे मेरे को ये चीज़ पेंटिंग बनानी है, उसके लिए मैं आज ये कलर नहीं लेकर के आया हूँ, या फिर लंच में आज मम्मी ने क्या बनाया है वो ध्यान करना पड़ेगा, तो उसका ध्यान जो है वो कक्षा में भटक रहा है, उसका ध्यान उस पढ़ाई हुई चीज़ पे नहीं है जो कि उस समय पर उसके अध्यापक उसे सिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस समय वह उस चीज़ को याद करने की कोशिश करेगा वो कभी उस चीज़ को याद नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो अपने उस समय में पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं है। और यही चीज़ योग या ध्यान जो है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं कि आप जहाँ जिस समय पर हैं, जिस काल में आप हैं, वहाँ पर आप 100% उपस्थित रहें। अपनी उपस्थिति जो है वो आपको नहीं छोड़नी है। और योग और शांति के महत्व को बताते हुए हरिवंश राय बच्चन जी भी कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। यानी जब चीज़ें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती तब भी यदि हम शांत रह सकें वही असली योग है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम धैर्य भी

साथ में सीखना होगा। तुरंत किसी चीज़ पर प्रतिक्रिया दे देना, तुरंत ही किसी चीज़ का जवाब दे देना बिना किसी आगे पीछे के कारण को जाने हुए हमारे लिए ही कहीं ना कहीं नुकसानदायक बनता है। और अगर हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम उनको बहुत अच्छा जो सोल्यूशन है किसी चीज़ का वो भी दे सकते हैं, या फिर कई बार सिर्फ सुनना ही काफ़ी होता है। तो योग और ध्यान जो है हमारी इन क्रियाकलापों में वृद्धि करता है और अनावश्यक चिंता या किसी भी बेकार तनाव से हमें बचाता है। और जहाँ हम भागा दौड़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ हमें ठहर कर अपने बारे में सोचने की और अपने आसपास की परिस्थितियों का अवलोकन करके उसे बेहतर तरीके से डील करने की जो है वो स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां विकास की दौड़ में प्रकृति को हाशिए पर धकेल दिया है। ध्यान और योग की हम जब भी बात करते हैं तो प्रकृति से जुड़ाव कहीं ना कहीं इसका बहुत ही गहरा जो है वो संबंध है इसमें। और जब हम आज की बात करते हैं, पर्यावरण को नुकसान होते देखते हैं, पेड़ों को कटते देखते हैं या फिर कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखते हैं, तो ये योग और ध्यान की जो चिंता है कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। कोयले और जीवाश्म ईंधन से निकलने वाला धुआं हमारे आकाश को धुंधला कर रहा है। ऐसे में अगर हम खुले में ध्यान करने या योग करने के लिए जाएंगे, ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाधा बनती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम योग और ध्यान की बात करें तो साथ ही प्रकृति की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। और जब प्रकृति की बात होती है तो बात होती है स्वच्छ ऊर्जा या क्लीन एनर्जी की। यह स्वच्छ ऊर्जा और क्लीन एनर्जी का मतलब होता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। ये ऊर्जा न केवल अक्षय है बल्कि ये कार्बन उत्सर्जन को शून्य की ओर भी ले जाती है। जब हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो हम सीधे सूर्य की उस असीमित शक्ति का दोहन करते हैं जो कि प्रदूषण रहित है। नेहरू जी का एक विचार यहाँ बहुत ही प्रासंगिक है श्रोताओं। उन्होंने कहा था, भविष्य का भारत वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होगा। और आज यही वैज्ञानिक दृष्टि हमें स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जा रही है। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना ही नहीं है बल्कि उस ऊर्जा स्रोत को चुनना है जो हमारी मिट्टी और हवा को शुद्ध रखे। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों को अपनाते हैं और ऐसी कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हमें स्वच्छ ऊर्जा को भी अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। एक सोलर पैनल न केवल बिजली के बिल को कम करता है बल्कि सैकड़ों पेड़ों के बराबर पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम भी करता है। पर्यावरण का संरक्षण कोई सरकारी नीति नहीं बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे आसपास के पेड़, पंछी, नदियाँ, ये सभी जो हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यहाँ पर को एग्जिस्टेंस कहते हैं जिसे, यानी कि हम एक साथ में एक साथ सह अस्तित्व की जो भावना है उसको लेकर के चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लेकिन उससे पहले सह अस्तित्व जो है वो जो है हमें अपनाना होगा। अगर हम अपने आप को बेहतर रखेंगे, हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, जानवरों के, पंछियों के, पानी के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं स्वच्छ ऊर्जा स्वयं ही हम किसी न किसी तरीके से अपने जीवन में अपनाने लगेंगे और अपनी प्रकृति को सुरक्षित रख सकेंगे।

0: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे तनाव और स्वच्छ ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण की, तो कार्यक्रम में लीजिए अब आपको सुनवाते हैं योग और ध्यान का मनोवैज्ञानिक लाभ विषय पर एक वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर मनीष कुमार सैनी।
1: उनके क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त है। आदिदेव भगवान शिव की सौम्य मुद्रा ध्यान योग की ही है। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान समाधि में ही लीन रहते हैं। नाथ पंथ में शिव को आदिनाथ माना गया है और उन्हीं की परंपरा में गौरनाथ जी को भी महायोगी कहा गया है। अवतारवाद में भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपदेश देते हुए कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी थी। हमारे देश में शिव संहिता और गौरक्ष शतक में मंत्र योग, हट योग, लय योग एवं राजयोग आदि चार प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है। इसके पश्चात योग विद्या को व्यापक रूप से महर्षि पतंजलि ने व्याख्यात किया। ये योग दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। पतंजलि के अनुसार योग बुद्धि नियंत्रण की एक प्रणाली है, जिसे राजयोग के रूप में जाना जाता है। पतंजलि से पूर्व भी राजयोग के अंतर्गत ज्ञान योग तथा कर्म योग की चर्चा होती रही थी, जिसे शिव संहिता व गौरक्ष शतक जैसे ग्रंथों में पर्याप्त स्थान मिला था। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका सीधा सा अर्थ है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है, जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है, और ऐसे संतुलन से शारीरिक रोगों के अलावा मानसिक समस्याओं का भी समाधान होता है। हमारे वैदिक ऋषियों से लेकर वर्तमान काल तक अनेक साधु संतों ने योग को अपनाया, लेकिन आम लोगों में योग का प्रचार सीमित ही रहा।

की महिमा और महत्व को देखते हुए वर्तमान में इसे स्वस्थ जीवन शैली हेतु बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है तनावपूर्ण, व्यस्त और अस्वस्थ दिनचर्या में योग का सकारात्मक प्रभाव। इसके प्रभाव से प्रभावित होकर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने हेतु मान्यता दी, जिसके फलस्वरूप 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विश्व के 192 देशों में योग का आयोजन किया गया। इनमें 47 मुस्लिम देश भी शामिल थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली में 35,985 लोगों ने योग का प्रदर्शन किया, जिसमें 84 देशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस दिन भारत ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए, पहला दिल्ली में सर्वाधिक लोगों द्वारा योग प्रदर्शन और दूसरा विश्व के सर्वाधिक देशों के लोगों द्वारा योग प्रदर्शन किए जाने का। ये दोनों रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किए गए। तत्पश्चात हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। योग और ध्यान से अनेक मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं, जैसे नींद अच्छी आना, तनाव से मुक्ति मिलना, मन स्थिति में और स्वास्थ्य में सुधार आना, अपक्षयी रोगों पर नियंत्रण और एकाग्रता में सुधार तथा दाम्पत्य जीवन में सुधार आदि। महर्षि पतंजलि ने योग को अष्टांग योग कहा है। उनके अनुसार योग के 8 सूत्र या अंग हैं जो इस प्रकार हैं। 1. यम। इसके अंतर्गत सत्य बोलना, हिंसा न करना, लोभ न करना, विषयाशक्ति में लिप्त न होना और स्वार्थी न होना आदि शामिल हैं। 2. नियम। इसके अंतर्गत पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन और ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण शामिल हैं। 3. आसन। इसमें बैठने का आसन महत्वपूर्ण बताया गया है। 4. प्राणायाम। सांस को लेना और छोड़ना तथा स्थगित रखना इसमें महत्वपूर्ण है। 5. प्रत्याहार। इसके अंतर्गत इंद्रियों को विषयों से हटाकर चित्त के समान निरुद्ध करते हैं, यानी बाहरी वस्तुओं से भावना व अंगों से प्रत्याहार करना। 6. धारणा। इसमें एकाग्रता यानी एक ही विषय पर ध्यान लगाना महत्वपूर्ण है। 7. ध्यान। ध्यान की वस्तु की प्रकृति का गहन चिंतन इसमें शामिल है। 8. समाधि। इसमें ध्यान की वस्तु को चैतन्य के साथ विलय करना शामिल है। इसके 2 प्रकार होते हैं, सविकल्प और अविकल्प। अविकल्प में संसार में वापस आने का कोई मार्ग नहीं होता, अतः यह योग पद्धति की चरम अवस्था है। योग के इन 8 अंगों में ध्यान और प्राणायाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने दिमाग और मन को एकाग्रचित रखने की कोशिश करता है। ध्यान वैसे तो अपने आप में एक मानसिक अवस्था है, पर कई धार्मिक परंपराओं या मान्यताओं के रूप में प्राचीन काल से ही ध्यान करने का अभ्यास किया जाता रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ध्यान के संबंध में एक सुंदर दृष्टांत बताते हैं कि एक बहुत ही अच्छा खाना बनाने वाली स्त्री ध्यान में बहुत उन्नति कर सकती है। कारण यह कि यदि वह बेमन से खाना बनाती है तो उसके खाने का स्वाद अच्छा नहीं होगा। बेमन से खाना बनाने पर कभी नमक कम पड़ जाएगा तो कभी 2 बार भी पड़ सकता है, और वह यदि दूध उबालेगी तो सप्ताह में 2-3 बार दूध उफन कर बाहर बह जाएगा। वह कह देगी, ओह मैं असावधान थी। अतः मन लगाकर रुचि से काम करना अपने आप में ध्यान योग है। इससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है और कार्य में कुशलता आती है। गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, यानी योग से ही कर्मों में कुशलता आती है और व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म में कुशलता का अर्थ ऐसी मानसिक स्थिति में काम करने से है जिसमें व्यक्ति कर्म तो अच्छे तरीके से करे लेकिन फल की चिंता में पड़कर खुद को व्यग्र न करे, क्योंकि योग व्यक्ति को तनाव से मुक्ति दिलाता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म की महिमा का गुणगान करते हैं। इस लोक में व्यक्ति 7 सुखों की कामना करता है, जिनमें स्वास्थ्य को पहला सुख बताया गया है। पहला सुख निरोगी काया। लोक मंगल की कामना करने वाले हमारे ऋषियों का कथन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, यानी सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। तो योग का प्राणायाम नामक सूत्र हमें बताता है कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। इसके लिए प्राणायाम की कुछ क्रियाओं का अभ्यास जरूरी है, जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका तथा कुंभक रेचक आदि श्वसन क्रियाएं। इन क्रियाओं के अभ्यास से हमारा श्वसन तंत्र सही रहेगा और रोगों से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही कुछ योगासन भी करने चाहिए जिनसे हमारा शारीरिक सौष्ठव बना रहेगा। प्रातः उठते ही कम से कम 20 बार लंबी श्वासें इस प्रकार लें कि फेफड़ों में पूरी हवा भर जाए। ऐसा करने से न केवल फेफड़े मजबूत होते हैं बल्कि स्नायु तंत्र में रक्त प्रवाह भी सुचारू रूप

0: में प्रवाहमान रहता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता है। अतः कह सकते हैं कि प्राणायाम के द्वारा हमें शारीरिक तथा मानसिक क्षमता प्राप्त हो जाती है और शरीर के सभी दोष और मन के विकार भस्म हो जाते हैं और हम अपने रोगों को नष्ट करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। नियमित योग अभ्यास मानसिक शांति और निर्मलता पैदा करता है, शरीर की जागरूकता बढ़ाता है, पुराने तनाव तंत्र से छुटकारा दिलाता है, मन को शांत करता है, ध्यान केंद्रित करने और एकाग्रता को तेज करने में सहायक होता है। भारतीय योग चीनी, जापानी आदि सभ्यताओं का भी अभिन्न अंग रहा है। गौतम बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से कष्ट रूपी जीवन से मुक्ति का रास्ता बताया। श्री कृष्ण ने गीता में राजयोग के रूप में ध्यान का वर्णन किया और पतंजलि ने अष्टांग योग में धारणा, ध्यान एवं समाधि को छठा, सातवां व आठवां अंग बताया है। ध्यान व्यक्ति के मन को सुचारू रूप से चलाने का साधन है। आज के युग की तनाव भरी कार्य शैली एवं रुग्ण मानसिकता से उभरने में ध्यान योग बेहद जरूरी है। यही कारण है कि वर्तमान में दुनिया भर में योग एवं ध्यान केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों में अनेक जिज्ञासुजन योग एवं ध्यान का अभ्यास करके अपने कष्टों का निवारण कर रहे हैं।
1: श्रोताओं, अभी ये वार्ता आपने सुनी। विषय था योग और ध्यान का मनोवैज्ञानिक लाभ। वार्ताकार थे डॉक्टर मनीष कुमार सैनी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: और इसी के साथ आज का कार्यक्रम सुप्रभात यहीं तक। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिएगा फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वक्त से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने और संगीत है रवि का।

इस साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

फूल बने पत्थर से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे फैज अनवर ने और संगीत था श्याम सुरिंदर का। अगला गीत लीजिए हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में। फिल्म का पंकज उदास का साथ दिया है अनुराधा पौडवाल ने और फिल्म का नाम है गवाही। बोल है सरदार अंजुम के और संगीत है उत्तम जगदीश का।

मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज से। बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। फिल्म संगीत का आखिरी गीत लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साजन बिना सुहागन से। इस गीत को गाया है यशुदास ने, बोल हैं इंदीवर के और संगीत है उषा खन्ना का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है, अब सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
5: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
6: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन

0: सिक्योरिटी
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
2: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
5: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से

0: प्यारी झांकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर

0: राठौर और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्ते की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स।

0: 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में टिकट बजकर 30 मिनट हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे भेंट वार्ताएं। गर्मी में नवजात और छोटे बच्चों की देखभाल विषय पर डॉक्टर गौरव दाधीच से श्रीमती बरखा थानवी व्यास की बातचीत और रक्तदान के फायदे विषय पर डॉक्टर प्रेम कुमार से श्री रेवंत राम लेखा की बातचीत। सहभागिता श्रीमती कविता वर्मा की है और प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का है।
1: स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है और जब नागरिक स्वस्थ हो तो समाज और राष्ट्र सशक्त बनता है। इसी सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के संदेश के साथ आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम हेल्दी बीकाना में। गर्मियों का मौसम श्रोताओं अपने साथ तेज धूप, बढ़ता तापमान और कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लेकर आता है। विशेष रूप से नन्हे मुन्ने बच्चों को इस मौसम में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त, वायरल संक्रमण, लू और खानपान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में बच्चों की सही देखभाल, संतुलित आहार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बेहद आवश्यक हो जाती है। श्रोताओं, इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए हेल्दी बीकाना कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित है प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव दाधीच। डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, गर्मियों में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में और अभिभावकों की जिम्मेदारियों के बारे में। तो आइए सुनते हैं, इनसे बातचीत कर रही हैं श्रीमती बरखा थानवी व्यास।
2: गर्मी का मौसम सभी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, वहीं नवजात और छोटे बच्चों के लिए ये समय विशेष सावधानी की मांग करता है। तेज धूप, बढ़ता तापमान, डिहाइड्रेशन और संक्रमण जैसी समस्याएं बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। ऐसे में माता पिता और अभिभावकों के लिए सही जानकारी और सतर्कता बेहद आवश्यक होती है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव दाधीच। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और ये मेरे लिए भी बड़ा खुशी का मौका है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया।
2: डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि गर्मी दिनों दिन जो है बेहद बढ़ती जा रही है और अपना असर दिखाना उसने शुरू कर दिया है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो हैं घर के बच्चे, तो गर्मी से उन्हें बचाना तो हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन हम अगर चिकित्सक नजरिए से उसे देखें तो नवजात शिशुओं पर अत्यधिक गर्मी का क्या प्रभाव पड़ता है?
3: मैम, जैसा कि आपने सही बताया कि गर्मी ने अपना पूरा प्रखर रूप धारण कर लिया है और लू चल रही है अभी, तो ऐसे समय में मैडम जो नवजात बच्चे हमारे होते हैं वो एकदम फूल की तरह होते हैं, तो उन्हें अत्यधिक सावधानी से हमें संभालने की ज़रूरत होती है
2: जी।
3: उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो उनको इस तेज धूप से डायरेक्ट तो उसको लाने का हमें प्रश्न नहीं उसमें उत्पन्न नहीं होता, और उसको हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर जिसको कहना चाहिए मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि 27 से 28 डिग्री का होता है, या उसे हम 26 प्लस माइनस 2 की तरह भी लेते हैं कि 24 से 28 का अगर हमारा रूम का टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकें तो
2: जी।
3: और अगर इसी प्रकार अगर वो तेज तापमान गर्म वातावरण में रहता है तो हाइपरथर्मिया की एक समस्या हो जाती है, जिससे कि उसको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे उसके एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं, बॉडी से पानी का लॉस हो जाता है इवेपोरेशन की वजह से, और वो डिहाइड्रेट हो जाता है बच्चा, और ऐसे में जब वो डिहाइड्रेट होके इरिटेबल होता है तो वो दूध पीना फिर से बंद कर देता है। अब ये विशेष साइकिल स्टार्ट हो जाती है, एक तो डिहाइड्रेशन है और ऊपर से उसने इनटेक घटा दिया, तो इससे उसे परेशानी हो सकती है।
2: तो ऐसी ही समस्या हम जो छोटे बच्चे हैं उनमें डायरिया, डिहाइड्रेशन, ये समस्याएं देखते हैं, तो ये जो सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो बच्चों में क्या रहती हैं?
3: गर्मी के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी हम समस्याएं देख रहे हैं वो लू लगना के अलावा उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन, गर्मी की वजह से चक्कर आ जाना, ये आम समस्याएं हैं। दूसरे संक्रमण जैसे कि गर्मी के मौसम में अभी मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, उसी दौरान जैसे कि हमारा पानी की समस्या हम देखते, उसके आंतों का संक्रमण जैसे कि टाइफाइड, पीलिया, हैजा, ये सब भी अपने पांव पसार रहे हैं,
2: यानी कि इन्फेक्शन होने के भी चांसेस
3: बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा।
2: और ऐसे में यही हीट स्ट्रोक के या लू लगने के शुरुआती लक्षण रहते हैं?
3: लू लगने के जो शुरुआती लक्षण रहते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो शरीर का तापमान है बढ़ जाता है, अगर हम बच्चे को हाथ लगा कर देखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, चेहरे पर उसके ड्राइनेस और बॉडी पर ड्राइनेस नजर आएगी, चेहरा लाल होगा,

0: और वो थोड़ा इरिटेबल हो जाएगा, ये शुरुआती लक्षण है। और नेक्स्ट स्टेप पर उसके बाद बेहोशी आना, चक्कर आना, तेज बुखार आके कई बार, जिसको कि हम दौरे या कमेडे बोलते हैं, वो स्थिति भी उत्पन्न हो जाया
1: जी,
0: करती है।
1: ऐसे में एक अभिभावक की क्या जिम्मेदारी रहती है, और तुरंत प्रभाव से अगर ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए?
0: मैम, सबसे पहला तो जैसे कि हमने हमेशा सुना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो
1: बिल्कुल
0: हमें इससे बचाना ज़्यादा है। तो पहले मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि वैसे तो अगर हम थ्योरेटिकली जाएँ तो हमारी पुस्तकें कहती हैं कि 10 से 4 के बीच में हमें डायरेक्ट अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो हमारा अगर हम लोकल माहौल देखें तो मेरा उसको कहना कि 8 से 8 या 8 से 7 वाला है। बहुत उस समय हम बच्चों को बाहर ना निकालें, तेज़ धूप में बाहर ना निकालें, डायरेक्ट बचाएं, सूती कपड़े पहनाएं, हल्के कपड़े पहनाएं, घर में उनको कूलर पंखा एसी जो हमारे पास व्यवस्था है उसका इस्तेमाल करें,
1: जी
0: खूब ज़्यादा पानी, दही, छाछ, अपना इमली पानी, कैरी पानी, इस प्रकार के हाइड्रेशन उनका मेंटेन करने की कोशिश करें। इस दौरान गर्मी में कुछ बच्चे खाना कम कर देते हैं, तो उससे हमें परेशान ना होकर बल्कि उनको फ्लूइड्स देते रहें कम से कम, ताकि
1: जी
0: उनकी हाइड्रेशन प्रॉपर रहे। प्लस एट द सेम टाइम हाइजीन का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। जैसे हमने बात करी थी अभी कि इसमें संक्रमण के खतरे भी फैलते हैं, तो हाइजीन का ध्यान रखते हुए हमें उनका भरण पोषण करना चाहिए और उससे बचाना चाहिए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बच्चों में हम आमतौर पर गर्मी में त्वचा संबंधी समस्याएं भी देखते हैं, स्किन पर दाने उठना या फिर रैशेज होना, इरिटेशन होना, तो इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है? एक तो आपने बात कही जैसे कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, और क्या माता पिता ध्यान रखें कि उन्हें इस तरीके की जो मतलब को प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो गर्मी से?
0: बिल्कुल सही आपने बताया कि एक तो कपड़े हमें सूती, हवादार और खुले पहनने चाहिए, एक तो यही बात होगी। दूसरा, हमारे यहाँ एक छोटे बच्चों में, खासकर जो नवजात और प्रथम 1 या 2 साल के, हमारे यहाँ मालिश करने का बहुत चलन है,
1: जी
0: तो मैं चाहूंगा कि गर्मी के अंदर उसको थोड़ा सा हम कम करें, क्योंकि उससे हमारी त्वचा के जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो तेल की वजह से बंद होने की वजह से ये समस्याएं ज्यादा आती हैं। दूसरा, हमें कम से कम सुबह शाम तेज गर्मी में स्नान करवाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनकी स्किन हाइड्रेट हो सके और जो भी गंदगी है वो निकल सके। प्लस एट द सेम टाइम अभी हमने जो बात करी उसकी, कुछ इंसेक्ट्स बाइट्स की, तो वो भी हम अगर अपने कपड़े पूरे पहना के रखते हैं तो उससे भी हम उनके संक्रमण से और उनके काटने से होने वाले दानों को बचाव कर सकते हैं।
1: जी एक आपने बात कही नहलाने की, तो क्या गर्मी में बच्चों को बार बार नहलाना सही रहता है?
0: बार बार नहलाने का कंसेप्ट नहीं है, सुबह शाम नहला ले देना चाहिए, 2 टाइम इज इनफ। अगर हम बाकी उसकी, मतलब अगर कुछ बहुत ही वो गंदा हो गया, ऐसे कोई बच्चे ने कुछ और हो गया, तो एक समस्या अलग है, अदरवाइज सुबह शाम नहलाना सफिशियंट है।
1: सफिशिएंट है। हम बात कर रहे थे बच्चों में डिहाइड्रेशन की, आपने कहा कि डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है, तो तरल पदार्थ जो है वो ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा था, नवजात शिशुओं को लेकर कहा जाता है कि 6 महीने तक उन्हें हमें पानी नहीं देना चाहिए, तो ऐसी भीषण गर्मी में अधिकतर अभिभावक या उनके जो चारों ओर लोग होते हैं उनको रहता है बच्चा इतना छोटा है तो उसे पानी नहीं दोगे, इसे प्यास लग रही होगी, तो क्या ये सही है, पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैम ये, और क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास रोज ओपीडी में भी आते हैं,
1: जी
0: तो उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारे WHO की, IAP की, सभी की गाइडलाइन यही कहती है कि प्रथम 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान ही करवाना चाहिए। अब जो आपका सवाल था कि उसको प्यास लगती होगी, तो जो कि मैं अपने ओपीडी में भी समझाता हूँ, वो यही बात है कि जो माँ का दूध आता है उसमें 70% तक पानी ही होता है।
1: जी
0: तो हम कर क्या सकते हैं, उनको एक तो ये मैसेज देना है कि उनको समझाना है कि 70% इसमें पानी ही है, तो उसको प्यास दूध से ही प्यास बुझ रही है और उसका संपूर्ण आहार है प्रथम 6 महीने बच्चे का।
1: जी
0: तो अगर आपको ऐसा लग रहा है एक बार बार कि वो प्यास लग रही है, उसको लग रही है, तो हम स्तनपान की फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं,
1: जी
0: बार बार करें। माँ का हाइड्रेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा,
1: जी
0: माँ खूब पानी पिए, अच्छी खुराक ले और बार बार बच्चे को स्तनपान
1: बिल्कुल,
0: करवाए।
1: इसी से मेरा अगला प्रश्न था कि अगर स्तनपान पर बच्चा निर्भर है तो माताएं जो हैं वो गर्मी के मौसम में किन बातों का ध्यान दें जिनसे कि उनका जो वो उत्पादन है वो ज्यादा बढ़े और बच्चे की भी प्यास साथ में बुझ सके?
0: बहुत बढ़िया मैम, क्योंकि स्तनपान एक माँ पर अतिरिक्त बोझ है अपनी खुराक के अलावा, तो उसको दो के लिए ही खाना पड़ता है, तभी उसको उसना कर पाएगी। अब जब वो इतना दूध उत्पादन उसका होगा तो उसको भी प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स चाहिएंगे, हाइड्रेशन उसको माँ को भी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी,
1: जी
0: तो उसे ऐसे मामलों में दही, छाछ, दूध, नॉर्मल पानी और शिकंजी, ORS, इनका सेवन भरपूर करना चाहिए। दूसरा, उसको भी गर्मी से अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो उसका इनसेंसिबल लॉस है, जो चमड़ी सोर है, वो कम हो सके। अच्छी खुराक लें और खूब पानी पिएं,
1: जी
0: ताकि वो अपना हाइड्रेशन भी मेंटेन कर पाएं और अपने बच्चे को भी एक स्वस्थ रूप से रख पाएं।
1: बिल्कुल, पानी तो जरूरी है ही, साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं डॉक्टर साहब वो भी बच्चे के लिए और बच्चे की माँ दोनों के लिए जरूरी हैं। तो यदि हम अब बात करते हैं पोषण की, तो विशेषकर कुछ बातें आपने बताई भी, पर उन्हें और विस्तार से अगर बताएं आप हमारे श्रोताओं को कि बच्चों के भोजन में गर्मियों के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या

0: बदलाव करना चाहिए?
1: हमें जो बेसिक हमारा जो पोषण है वो तो हमेशा थ्रू आउट द ईयर सेम ही रहता है. अंडरलाइंग पोषण है कि दाल खिलानी है, हरी सब्जियां, फ्रूट्स खिलाने हैं. अब यहाँ पे हमें एक तो हाइड्रेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स सहित, कई लोग हमारे यहाँ चलन है कि ग्लूकोज पिला दो जी,
0: जी
1: उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ORS है, हमारी शिकंजी है, हमारे यहाँ इमली का पानी है, कैरी का पानी है, दही छाछ, राबड़ी है, इनका सेवन करें. रस वाले फ्रूट हमारे पास हैं जैसे कि तरबूज, खरबूज, इनका हम सेवन करें. जूस गन्ने का रस पी सकते हैं. और बाकी जो हमारा रूटीन भोजन है, तेलीय पदार्थों को, तले फले जो कि डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, जिन्हें हम बोलना चाहिए कि जो पाचन करने में मुश्किल आए,
0: जी
1: वैसा भोजन नहीं करना चाहिए.
0: जंक फूड से
1: जंक
0: बचें।
1: फूड से बचना चाहिए. प्लस हमें अगर बाहर जा रहे हैं तो हमारी पानी की बॉटल साथ रखें, उसको कोई शिकंजे की साथ में रखें, अपने को, अपने आप को उससे धूप से बचाएं. डायरेक्ट कैप लगाना है, मफलर लेना है, साफा
0: जो
1: लेना है, जो
0: कपड़ों की
1: भी
0: आपने
1: उसको
0: बात कही
1: पूरी
0: कि
1: बात करनी
0: सूती
1: है,
0: कपड़े, बच्चों को हल्के कपड़े पहनाएं।
1: हवादार हों
0: जी
1: जी.
0: डॉक्टर साहब, बहुत बखूबी आपने हमें बताया कि किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से बच्चों की एक्स्ट्रा केयर जो है वो गर्मी के मौसम में बेहद ज़रूरी है। एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि हम बात कर रहे थे, आपने कुछ बातें हमें बताई भी सही कि हवादार घर होना चाहिए और वेंटिलेशन का घर में ध्यान रखें, लेकिन इतनी गर्मी में हम लोग AC के बिना नहीं रह पाते, वैसे ही बच्चों के लिए भी आजकल AC एक जैसे कहें कि
1: अनिवार्यता ही हो गई
0: अनिवार्यता
1: है.
0: सी ही हो गई है।
1: बिल्कुल सही कह
0: और
1: रहे हैं
0: कूलर और AC का उपयोग क्या नवजात शिशुओं के लिए सुरक्षित रहता है?
1: मैम. अब इतनी गर्मी के अंदर जो है, हमें उनका उपयोग अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है, उसके अलावा चारा नहीं है. पहली समस्या तो यह है मैम. अगर हम नेचुरली वो टेम्परेचर उनको प्रोवाइड कर पाते तो एक अलग बात होती, जो कि संभव नहीं है. तो हमें कूलर और AC का सहारा लेना ही पड़ता है. अब बहुत सारे अभिभावक ये सवाल करते हैं कि साहब बीमार तो नहीं हो जाएगा, ये तो गड़बड़ तो नहीं, आदत तो नहीं पड़ जाएगी. तो मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि एक तो डायरेक्ट जब जिसके सामने हवा आ रही है उसके सामने न रखें उनको, प्रॉपर क्लोदिंग उनको पहना कर रखें. और बेसिक मेरा टारगेट रहता है कि बच्चे एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो जाए. और
0: जी
1: उनको समझाने के लिए जो, अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 24 से 28 डिग्री तापमान रखें, तो वो
0: जी
1: कैसे मालूम चलेगा? तो उसका जो प्रैक्टिकल वे है कि जब हम बच्चे को छुएं तो वो हमें वार्म लगे, जो हमारी देसी भाषा में जिसको हम न्याया न्याया बोलते हैं, कुएं जैसा बोलते हैं, तो वो
0: जी
1: उस प्रकार का महसूस हो, ना गर्म और ना
0: ना
1: ठंडा.
0: ठंडा,
1: तो वो हमें
0: बिल्कुल।
1: उसको रखना है.
0: डॉक्टर साहब, ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी थी जो आज के पेरेंट्स के जहन में ये सवाल बहुत उठता है, AC को लेकर आपने एक भ्रम दूर किया है। यही हम बात करें, अब हमारे श्रोता ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी का जो है वो भयावह रूप जो है वो देखने को मिलता है, तो ऐसे में जो ग्रामीण परिवार के बच्चे हैं वो गर्मी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए गाँवों में क्या उपाय कर सकते
1: मैम
0: हैं?
1: गाँव में जैसे कि हमारे जो पुराने समय में शहरों में भी जो यूज़ करते थे, वो खसखस के वो लगाया करते थे चाल, उसको भिगो कर रखते थे. बच्चे को सूती कपड़ा हल्का भिगो कर उसको उड़ा सकते हैं. उसके बाद अगर हम थोड़ा पंखे का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उसको शीतल रखता है. ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसको नहलाने की बात हम कर सकते हैं, सुबह शाम उसको नहलाएं,
0: जी
1: हाइड्रेशन मेंटेन रखें. और जो भी हमारे पास संभव तरीके हैं कि हमारा जो जो जिस कमरे में बच्चा रह रहा है, जिस जगह बच्चा रह रहा है, वो तापमान एटलीस्ट वहाँ पर गर्म हवा का सर्कुलेशन सीधा ना हो, सीधा उसको लू के चपेट में ना आए, इन सब बातों का वो ध्यान रख
0: और
1: सकते
0: बच्चे
1: हैं.
0: को बाहर तो बिल्कुल ही ना
1: बाहर तो
0: ले
1: अभी
0: जाएं।
1: हमने जो चर्चा करी थी कि मेरा मतलब उसको तो 8 से 8 बना दिया मैंने, तो कि 8 से 8 नहीं निकलेंगे.
0: अंत में अभिभावकों और पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे गर्मियों में अपने बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकें?
1: इसमें मेरा एक छोटा सा संदेश यही है कि गर्मियां हमारे जीवन का हिस्सा है. हम जहाँ जिस धरती के जिस भाग पर रहते हैं वहाँ पड़ रही है, तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए. अपने को शीतल पेय, आप हमारे जो भी हमने बात करी देशी शीतल पेय लें, उनका मतलब कोल्ड ड्रिंक से नहीं है मेरा तात्पर्य. सुबह शाम नहाएं, उसका आनंद लें. हमारे जो फ्रूट्स हैं जिनकी हमने बात करी, उनका खूब सेवन करें. और इसी प्रकार गर्मियों का भी आनंद लें.
0: बिल्कुल, मौसमी फल खाएं, खूब पानी पिएं और ज़रूरत पड़े तो ही बच्चों को घर से बाहर निकालें, और जब घर में रहें तो एकदम उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर कूलर से या AC से
1: प्रदान
0: दिया जा
1: करने की
0: सकता है।
1: कोशिश करें.
0: तो श्रोताओं, आज की इस उपयोगी चर्चा में हमने जाना कि गर्मी के मौसम में नवजात और छोटे बच्चों की सही देखभाल, संतुलित खान पान, पर्याप्त तरल पदार्थ और साफ सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी बच्चों को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकती है। डॉक्टर गौरव दादीच, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम.
2: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कि गर्मियों के मौसम में सही खान पान, पर्याप्त पानी और जागरूकता बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है। जानकारी दे रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव दादीच और इनसे बातचीत कर रही थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास। श्रोताओं, स्वास्थ्य केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और इसी

0: भागीदारी का सबसे सुंदर उदाहरण है रक्तदान। जी हाँ श्रोताओं, एक यूनिट रक्त भी किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। रक्तदान को महादान माना जाता है। आज के समय में सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक कर सकें। रक्तदान क्यों आवश्यक है, कौन रक्तदान कर सकता है और इससे जुड़ी भ्रम भ्रांतियां कैसे दूर की जाए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि PBM हॉस्पिटल बीकानेर में कार्यरत है। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री रेवंत राम लेघा।
1: श्रोताओं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और प्रत्येक अंग तक पोषण पहुंचाने के लिए रक्त यानी ब्लड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अच्छी बात यह है, हमारा शरीर अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं से रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता रहता है। लेकिन कई बार मानव शरीर को रक्त आधान यानी रक्त चढ़ाने की परिस्थितियां बन जाती है। डेटा पर एक नज़र डालें तो हमारे देश में एक मिनट में 30 व्यक्तियों को रक्त की आवश्यकता होती है और इसके लिए स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करते हैं। रक्त की आवश्यकता और रक्तदान की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रेम परिहार को। आप सहायक आचार्य हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग PBM हॉस्पिटल बीकानेर में। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। जब हमारा शरीर स्वयं से रक्त बनाता है, ब्लड बनाता है, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि रक्तदान की आवश्यकता हमें क्यों है।
2: बहुत सारे केसेस में, इमरजेंसी केसेस में, डिलीवरी केसेस में और बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस में
1: जी,
2: विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्साओं के लिए, ऑपरेशन के लिए हमें रक्त की ज़रूरत होती है। और जिसके लिए अपने रक्त डोनर्स, जो रक्तदाता हैं, वो ब्लड डोनेट करते हैं और वो फिर ज़रूरतमंद को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है।
1: कई बार जब शरीर या तो पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं बना पाए या फिर अलग से रक्त की आवश्यकता हो तो रक्तदाता की आवश्यकता वहाँ रहती है। कोई व्यक्ति अगर ब्लड देना चाहे, स्वयं से रक्तदान करना चाहे, तो उसके लिए स्वास्थ्य संबंधी मानदंड जो है वो कैसे होने चाहिए, यानी जो डोनर है, रक्तदाता है, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होनी चाहिए।
2: हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, महिला हो या पुरुष हो, वो ब्लड डोनेट कर सकता है, बशर्ते उसका हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 से वो हो, वजन 45 kg 45 किलो से ज़्यादा हो। अपने ब्लड डोनेशन के अंतराल की बात करें तो हर पुरुष हर 3 महीने में और महिला हर 4 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
1: इसमें उम्र का कोई क्राइटेरिया रहता है?
2: रूटीन में 18 से 60 साल तक का डोनेशन का रहता है
1: जी,
2: फर्स्ट टाइम डोनर्स के लिए। अगर कोई रिपीटेड डोनर्स है जिसने 60 साल में पहली बार ब्लड डोनेट कर रखा है पहले, तो 65 साल तक भी ब्लड डोनेट किया जा सकता है।
1: रक्तदान से पहले और रक्तदान के बाद किसी व्यक्ति को जो रक्तदाता है उसको क्या क्या सावधानियां या क्या क्या रखरखाव अपनी बॉडी के प्रति या आहार में या खान पान में रखने चाहिए जिससे वो स्वस्थ रूप से रक्तदान कर सके।
2: रक्तदान से पहले रक्तदाताओं को मुख्य रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि खाली पेट नहीं हो, कम से कम कुछ खाया हो, लास्ट नाइट 8 से 10 घंटे की अच्छी नींद ली हो। और रक्तदान करने के बाद, एक सरल प्रक्रिया है, लगभग आधा घंटा लगता है, रक्तदान के बाद हैवी स्ट्रेनस वर्क नहीं करना है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है, शुरू वाले आधे घंटे में घंटे भर में बाइक नहीं चलाना है, लिक्विड डाइट का ध्यान रखना है, अगले 24 घंटे तक 24 आवर तक लिक्विड डाइट पर ध्यान रखना है ताकि रिक्विप हो जाए।
1: शरीर से जुड़ा हुआ कठिन परिश्रम का अगर काम है तो वो ना करें रक्तदान के बाद। हाँ। रक्तदान से पहले कुछ न कुछ खा लिया जाए
2: जी।
1: डॉक्टर साहब, कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें समझा जाता है कि इनमें रक्तदान नहीं करना चाहिए, एक जैसे डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, या कोई व्यक्ति अगर थायराइड की दवाई ले रहा है, तो क्या ऐसे व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं?
2: ब्लड प्रेशर के मामले में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और वो मेडिसिन ले रहे हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका एंटी हाइपरटेंसिव या दवा लेते लेते हीमोग्लोबिन या BP नॉर्मल है
1: जी,
2: और पिछले 6 महीने में कोई दवा की डोज चेंज नहीं हुई है।
1: दवा की डोज में परिवर्तन अगर नहीं हुआ,
2: हाँ, दवा की डोज में अगर परिवर्तन नहीं हुआ है पिछले 6 महीने में, तो वो डोनेट कर सकते हैं। डायबिटीज़ के मामले में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की अगर कोई दवा ले रहा है, मेडिसिन के उसके टेबलेट के रूप में कोई दवा ले रहा है और उसका शुगर कंट्रोल में है दवा लेते रहते, तो डोनेट कर सकता है। अगर कोई इंसुलिन पे है तो वो डोनेट नहीं कर सकता।
1: इंजेक्शन के रूप में अगर ले रहा है,
2: इंजेक्शन के रूप में,
1: थायराइड की दवा अगर चल रही है,
2: थायराइड का पेशेंट को डोनेट नहीं करना सर, परमानेंट डेफरल होता है, उनको कभी भी

0: डोनेट नहीं करना है, ब्लड डोनेट नहीं करना।
1: डॉक्टर साहब, एक भ्रम या भ्रांति या उसको सच्चाई कहें कि जिनके टैटू बनवाए होते हैं, कई युवाओं में आजकल चलन है कि वो हाथ पे या पैर में टैटू बनवा लेते हैं, क्या वो युवा रक्तदान कर सकते हैं?
0: देखो, गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज या जिनको किसी तरह की मेडिसिन चल रही है
1: जी,
0: उनको डोनेशन से पहले एक बार चिकित्सक के सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। टैटू के बारे में ये है कि जिन्होंने अगर टैटू बनवा रखा है तो 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं करना है उनको।
1: जी
0: उनका उसके पीछे का एक कारण यह है कि उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी के चांसेस रहते हैं ट्रांसमिट होने के, टैटू बढ़ने के 6 महीने तक।
1: 6 महीने का वो इंतज़ार करें ताकि अगर कोई बीमारी उनमें ट्रांसमिट हुई है तो उसका पता लगाया जा सके।
0: जी जी।
1: डोनर को कोई विशेष लाभ होता है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, जो उसके स्वास्थ्य को सुधारता हो या उसके ब्लड को सुधारता हो?
0: बहुत अच्छा सवाल है सर। एक्चुअली जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा तो उनको ये है कि एक मिनी हेल्थ चेकअप हो जाता है। ब्लड डोनेट करने से पहले हम हीमोग्लोबिन की जांच, बीपी की जांच, वज़न की जांच आदि जांचें करते हैं, और जो डोनेट यूनिट हुआ है उसी का मुख्य रूप से HIV, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया और सिफिलिस, मुख्य रूप से 5 तरह की जांचें ये हो जाती है। इन सबसे सुरक्षित पाने के बाद भी हम ब्लड पेशेंट के लिए सुरक्षित करते हैं।
1: सारी जांचें जो है वो आवश्यक रूप से पहले हो जाती है ताकि व्यक्ति को खुद का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। उसके देने के उपरांत कोई स्वास्थ्य लाभ होते हैं रक्तदाता को?
0: ब्लड डोनेट करने से शरीर को नई रक्त कोशिकाएं बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है रक्तदान।
1: जी,
0: तो यह है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर को एक नई ऊर्जा का संचार होगा, नई रक्त कोशिकाएं बढ़ाने के लिए शरीर प्रेरित होगा।
1: हृदय से जुड़ा हुआ भी लाभ इसमें विशेषकर रहता है?
0: जी जी सर, ये आयरन लेवल संतुलित रहता है और उससे हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, रक्तदान के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जो ब्लड ले रहा है वहां पर कंपाउंडर या नर्स या डॉक्टर्स जो हैं उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या रक्तदाता को क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि जो रक्तदान के समय संक्रमण की आशंका बनी रहती है उसको रोका जा सके?
0: देखो, रक्तदान का पूरा प्रोसेस एक पूरी सिंगल यूज नीडल काम में ली जाती है
1: जी,
0: संक्रमण की या इस तरह की कोई चांसेज नहीं रहते हैं।
1: कितना समय लगता है रक्त को निकालने में और एक समय में कितना रक्त निकाला जाता है एक व्यक्ति की बॉडी से रक्तदान के समय?
0: रूटीन में ब्लड डोनेशन में 5 से 10 मिनट लगते हैं। पूरी प्रक्रिया फार्म भरने से लेके और ब्लड डोनेशन तक आधे घंटे में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। एक बार में लगभग 350 ml या 450 ml रक्त डोनेट किया जाता है।
1: और इसकी भरपाई कितने समय में हो जाती है बॉडी में?
0: जो लिक्विड पार्ट है तो वो लगभग 24 से 48 घंटे में आपूर्ति कर लेती है बॉडी, और RBCs हैं वो कुछ हफ्तों में RBCs भी आपूर्ति कर लेती है।
1: क्या इससे कोई कमजोरी आती है शरीर में स्थायी रूप से?
0: ये एक मिथक है सर, कोई इस तरह की कमजोरी बिल्कुल नहीं आती है। उल्टा, शरीर को नई रक्त कोशिकाएं बढ़ाने में ब्लड डोनेशन हेल्प करता है और उससे नई ऊर्जा का संचार होता है डोनर्स में। एक दूसरा, एक डोनर को समाज के लिए कुछ करने का एक भावना उसमें
1: वो प्रेरित होता है, इस ओर कि समाज के लिए
0: है, उसको हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं कि हम मैंने कुछ किया है,
1: जितनी सारी चीजें प्रकृति से या समाज से ले रहा हूं तो मुझे कुछ लौटाने का अवसर मिला है। डॉक्टर साहब, भारत की अगर हम बात करें तो हर साल हमें 1.46 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है और हम 1.25 करोड़ ही दान कर पाते हैं, इतने रक्तदाता ही हमारे पास हैं। ये एक गंभीर समस्या है, हर साल 11 लाख यूनिट जो है वो कम रह जाती हैं। अपने यहाँ बीकानेर में भी ब्लड बैंक की स्थिति क्या है, यहाँ कमी रहती है या रक्तदाता पर्याप्त मात्रा में है?
0: ओवरऑल हम देखें तो रक्त की कमी रहती है, पूरे भारतवर्ष की बात करें या विश्व की बात करें, पर बीकानेर में पिछले कुछ सालों से इस तरह का एक रुझान रक्तदाताओं में बना है। स्वैच्छिक रक्तदाताओं की संख्या काफ़ी बढ़ी है, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर काफ़ी लग रहे हैं, काफ़ी सामाजिक संस्थाएं रक्तदान शिविर आयोजित करती है, तो बीकानेर ब्लड बैंक में रक्त की कोई कमी है नहीं।
1: जी,
0: ये जो रेगुलर डोनर्स हैं उनकी बदौलत।
1: आप युवाओं को किस प्रकार प्रेरित करते हैं या समाज में जो कई भ्रांतियां बनी हुई है उनको दूर करते हुए किस प्रकार प्रेरित करते हैं रक्तदान के लिए?
0: रक्तदान महादान, रक्तदान करने से ना कि आपकी शरीर को नई रक्त कोशिकाएं या नया रक्त मिलने से संचार, नई ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि आपका दिया हुआ एक यूनिट ब्लड 3 जिंदगियां बचाता है अलग अलग।
1: सर, इसके क्या मायने हैं कि एक यूनिट अगर आपने ब्लड दिया है तो 3 जिंदगियां वो बचा पाएगा?
0: एक्चुअली सर, हम जो रक्त डोनेट कर रहे हैं या ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं
1: जी।
0: RBC है,

0: लाल रक्त कणिका हैं, प्लेटलेट्स हैं और प्लाज्मा हैं। विज्ञान की तकनीक की सहायता से हम इन तीनों को डोनेशन के बाद अलग अलग कर लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से, जैसे एनीमिया के पेशेंट को लाल रक्त कणिकाएं RBC, डेंगू के पेशेंट को प्लेटलेट्स और बर्न आदि के पेशेंट को हम प्लाज्मा दे के जान बचा सकते हैं।
1: इस साल भी हर वर्ष की भांति हम 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मना रहे हैं, क्या विशेष संदेश आप देना चाहेंगे श्रोताओं को इस अवसर पर?
0: विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून को, कार्ल लैंडस्टीनर नोबेल प्राइज विनर हैं जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप की खोज की
1: जी,
0: उन्हीं के योगदान को याद करते हुए विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिवस पे स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रेरित करने के लिए
1: जी,
0: रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए मुख्य रूप से ये मनाया जाता है और युवाओं में एक रक्तदान के प्रति
1: जागरूकता या कहें कि प्रेरणा इसमें लाई जा रही है। जैसा कि WHO भी कहता है कि आबादी के 1% जो हिस्सा है उसको हर साल ब्लड डोनेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, श्रोताओं को और हमारे समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करे और जो रक्त की आवश्यकता मरीज को पड़ती है उसको पूर्ति किया जा सके?
0: सर, रक्तदान महादान, युवाओं को आगे आके बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, जो प्रचलित भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए ताकि इमरजेंसी में पीड़ित मानवता की
1: सेवा की जा सके
0: और जान बचाई जा सके।
1: जी श्रोताओं, ब्लड डोनेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारी सुरक्षा सावधानियाँ और ब्लड डोनेशन की आवश्यकता पर हमने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है कि आप ब्लड डोनेशन को एक मिथक, एक भ्रम या एक कमजोरी का विषय न मानते हुए आबादी के उस 1% हिस्से में मानेंगे जो गर्व के साथ ये कह सके कि हाँ, मैंने ब्लड डोनेट किया है। डॉक्टर साहब, प्रेम परिहार की चर्चा से निश्चित ही आपको लाभ पहुँचेगा। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी जानकारी कि रक्तदान कितना आवश्यक है। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रेम कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे श्री रेवंत राम लेघा। श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं इस माह में मनाए जाने वाले स्वास्थ्य दिवस के बारे में। जी हां, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, एक दान अनेक जीवन, जो हमें संदेश देता है कि हम लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करें। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जी हाँ, स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन, ये सब है सुखी जीवन का आधार। योग अपनाएं, रोग भगाएं, स्वस्थ और खुशहाल जीवन पाएं। तो श्रोताओं, ये था आज के हेल्दी बिकाना का अंक। आज्ञा दीजिए कविता वर्मा को नमस्कार। आज के हेल्दी बिकाना कार्यक्रम की प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। कार्यक्रम का संयोजन था श्री अमित सिंह का।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेल्दी बिकाना। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं सुबह के 9 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिएगा हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा है कि ये विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है। निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी संदेश को नहीं मानने और किसी तरह का भुगतान नहीं करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा कल जोधपुर रेंज कार्यालय में अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर बैठक कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने इन क्षेत्रों में कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देकर अपराधियों, अवैध गतिविधियों और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। श्री शर्मा नए आपराधिक कानूनों का प्रयोग कर पुलिस के ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय की दिशा में काम करने की बात कही।
1: जो ड्रग माफिया हैं, उनके संपत्तियों को नष्ट करने की, जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। आज की भी बैठक में ड्रग्स के खिलाफ और किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हमें करनी है, इस पे विशेष रूप से चर्चा की। राजस्थान में एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना हो रही है, जिसके लिए भी हम लोग कोशिश में हैं कि वो जल्दी ही क्रियाशील हो। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पे हमारे जो निगरानी है साइबर क्राइम में, उसको हमने बढ़ाया है।
0: बैठक में जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह सहित जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बालोतरा, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और जालौर जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। जैसलमेर के सरहदी गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना 2 के तहत विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। भारत पाक सीमा से सटे 30 गांवों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, पलायन रोकना और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ये योजना का संचालन होता है। इसमें इस बार टोटल 184 विलेजेस लिए गए हैं। इसमें से जैसलमेर जिले के 30 विलेजेस को आइडेंटिफाई करा है। बेसिकली जो सरकार चाह रही है कि उसमें जो हमारे कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, 4G कनेक्टिविटी हो गया, दूरभाष कनेक्शन हो गया, टीवी कनेक्टिविटी हो गया, तो इन पैरामीटर्स में सभी चयनित गांवों का सैचुरेशन हो।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल जयपुर में राजस्व और उपनिवेशन

0: विभाग की बैठक में भूमि आवंटन से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आपसी तालमेल के साथ लंबित मामलों का निराकरण करने और हर प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने भूमि उपलब्धता से जुड़ी बाधाओं को दूर कर बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये दिन हर साल 7 जून को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेने को कहा है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न शहरों, पार्कों, स्टेडियमों और योग संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। व्यास बगीची में लोगों ने अनेक आसनों के जरिए नियमित रूप से योग करने का संदेश दिया। योग दिवस की इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस बीच अहमदाबाद में चल रही विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत के रोहन तायडे ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने ये उपलब्धि लड़कों की सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल प्रतियोगिता में हासिल की। चैंपियनशिप में भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। फिट इंडिया मिशन के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में साइकिल सवारों ने भाग लिया। पाली में पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर लोगों को सेहत के प्रति जागरूक रहने और नियमित व्यायाम और फिटनेस का संदेश दिया। अजमेर में राजस्थान पुलिस और 11 राज यूनिट एनसीसी की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान यूनिट के सीओ कर्नल अजय दाधीच ने दैनिक जीवन में साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
1: साइकिल चलाने से हम सिर्फ पोल्यूशन का ही नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें हैं। हम अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इफ यू वांट टू फिट योरसेल्फ, एक बार संडे को, नहीं तो कभी भी छुट्टी पे, और जैसे बच्चों की तो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, उसमें साइकिल का ग्रुप बना के आराम से कहीं ना कहीं इवेंट रखना चाहिए कि आज यहाँ जा रहे हैं, कभी इस फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, आप फिट रहेंगे।
0: राज्य में सक्रिय परिसंचरण तंत्र के असर से कल कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर सहित करीब 13 शहरों में बारिश हुई। इसके साथ ही बीकानेर के लूणकरणसर में ओले गिरने के भी समाचार हैं। आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच रात का न्यूनतम तापमान भी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। विभाग ने आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में बरसात की संभावना व्यक्त की है। आंधी बारिश की गतिविधियों में कल से कमी आने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। कल से पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। भारत की पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट जीत लिया है। जापान के काकामिगाहारा में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला हॉकी टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टीमों को बधाई देते हुए कहा कि ये खिलाड़ी भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरडीह ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री राम जी भगत, जो कि सरपंच हैं सरडीह ग्राम पंचायत के।

0: विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरडीह ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री राम जी भगत, जो कि सरपंच हैं सरडीह ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
0: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
1: मैं तो सरपंच हूँ, लेकिन मेरे ग्रामवासी और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वो भी खुशी के झूम उठे। और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए, उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
0: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया, तो वहां पर किस तरह की परिस्थितियां थी, और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
1: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर, हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया, और हर मोहल्ला में लोकर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए, और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार, और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग, पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
0: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
1: मेरा सहयोग दिए।
0: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है, तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी?
1: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग लोकर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था, तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे।
0: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
1: जल संरक्षण के लिए केरड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केरड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
0: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं, उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं, इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
1: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है, इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है, और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहे अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
0: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
1: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड कर ही मतलब है कि वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही

0: मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
1: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
0: सर पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं। हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
0: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी आया कुछ पैसा और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग को वृक्षारोपण लगाए।
1: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
0: सर आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
1: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना
0: तैयार कर रहे हैं।
1: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, कहा कि उसको हम लोग बनाते नहीं है, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं, वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
0: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्वर सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
1: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
0: और सप्ते में जैसे हम लोग पूरे गांव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: सर केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
1: जी,
0: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
0: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता,
1: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
0: सर उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
0: सर हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है, एकदम सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं इसमें उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इसमें उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ, मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर से उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्या है वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है जो लगता है सचिवालय, उस दिन अलग है, वो तो

0: कार्यक्रम सफल अच्छा। का काम है मेरा सोमवार मंगल बुध भी फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक हूँ। अपने घरे में बैठता हूँ और तीनों दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ और तीनों दिन मेरा काम हो जाता है। मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
1: यही कारण है कि आपके पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने मिल रहा है, खासतौर पर जब गांवों में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
0: सर, उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
1: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
0: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, ना आदिवासी लोग रहते हैं, ना उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना। जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
1: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए। आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
0: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है। हम बैठे बैठे अपने कार्य को, जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं।
1: जी,
0: चाहे जिसे कहा महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
1: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
0: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं, तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
1: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
0: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को भी पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, प्रशासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
0: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि हैं या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा, उनको और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
1: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। सुबह के 9:25 हो चले हैं। लीजिए अब सुनिए कल्याण राम राणा की आवाज में ये लोक संगीत।
5: अरे केसरिया बनासा।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम मुकुल। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई है अनीता जोशी।

ने मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्ते मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता और आप

रहे हैं आकाशवाणी का आपका अपना चहेता कार्यक्रम मुकुल, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं नई नई कविताएं, रोचक जानकारी और एक ऐसी कहानी जिससे आपको मिलती है एक नई सीख। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी आज की एक सुंदर कविता से। तो बच्चों, अभी हो गया है मौसम बहुत ठंडा, तो हमारी धरती जो है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आज की हमारी कविता का शीर्षक है हमारी सुंदर धरती। हरी भरी ये धरती अपनी जीवन का सुंदर आधार, पेड़ों की ठंडी छाया में छिपा हुआ है सारा प्यार। नदियाँ कलकल बहती है, गीत सुनाती है प्रकृति के, पर्वत ऊंचे खड़े हुए हैं रक्षक बनकर इस धरती के। फूलों की खुशबू कहती है धरती को स्वर्ग बनाओ, पेड़ लगाकर जल बचाकर अपना सुंदर फर्ज निभाओ। धुआं प्रदूषण दूर भगाओ, नीला अंबर फिर मुस्कुराए, पक्षी गाए मीठे स्वर में हरियाली है मन को भाए। आओ मिलकर शपथ ये ले, प्रकृति का सम्मान करेंगे, धरती माँ की रक्षा करके सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता और हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक और अच्छे गीत के साथ, जो आपके और हमारा एक ही भरोसा है, ऊपर वाला।

बच्चों, हम जब भी कोई काम करते हैं, पढ़ने का काम हो या हम कोई कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हमारा दिमाग एकदम शांत होना चाहिए। थोड़ी सी भी कोई आहट होती है तो हमारा ध्यान भटक जाता है। तो अगर हमें इस तरह की कोई कक्षा में या कहीं परेशानी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। हम परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है हमारा, एक कदम शांति की ओर। बच्चों, एक समय की बात है, हरे भरे पेड़ों से घिरे एक छोटे से शहर में एक स्कूल था। इस स्कूल के बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे, लेकिन कुछ समय से एक समस्या उन्हें धीरे धीरे जो थी वो बढ़ रही थी। जैसे कोई गंभीरता से उसे कोई नहीं ले रहा था। वो था ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण की उस स्कूल के पास ही एक बड़ा चौराया था, जहाँ दिन भर गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज़ें और लोगों की चिल्लाहट गूंजती रहती थी। स्कूल के बच्चे पहले तो इस शोर को मतलब बहुत सामान्य समझते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें परेशानी होने लगी। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, सिरदर्द रहने लग गया और कभी कभी तो अध्यापक की बात भी सही सुनाई नहीं देती थी। इस स्कूल में एक बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी, जिसका नाम था ऋचा। उसे सवाल पूछने की बहुत आदत थी और ये आदत बहुत अच्छी थी कि वो हर बात पे सवाल करती थी। एक दिन उसने अपनी विज्ञान की मैडम से पूछा, मैडम, मुझे हर समय ऐसा लगता है जैसे मेरे कानों में लगातार तेज आवाज़ कर रहा हो या कोई मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, क्या ये कोई बीमारी है? तो टीचर मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, ये बीमारी नहीं है ऋचा, ये एक ध्वनि प्रदूषण है। ऋचा ने आश्चर्य से पूछा, ध्वनि प्रदूषण? टीचर ने समझाया, जब हमारे आसपास बहुत अधिक और अनियंत्रित शोर होता है या आवाज़ें होती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये हमारे कानों, मन और स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर डालती है। ऋचा ने ठान लिया कि वो इस समस्या को समझेगी और अपने स्कूल के बच्चों को भी इसके बारे में बताएगी। उसने अपने दोस्तों, अपने जितने भी दोस्त थे, उसके चार पांच, अनमोल, सृष्टि, ऋषभ के साथ मिलकर एक छोटा सा पर्यावरण क्लब बनाया।

क्लब की पहली बैठक ऋचा ने कहा, हमारे स्कूल के पास बहुत शोर होता है जिससे हम सभी परेशान रहते हैं। क्यों ना हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। और उसके दोस्तों ने इसके लिए सहमति भी जताई और उन्होंने ऋचा का साथ दिया। अगले दिन बच्चों ने एक योजना बनाई, उन्होंने पोस्टर बनाए जिस पर लिखा था, हॉर्न कम बजाएं, कृपया शांति बनाए रखें, ध्वनि प्रदूषण रोकें। उन्होंने स्कूल के पास वाले चौराहे पर जाकर लोगों को समझाना शुरू कर दिया। अमन ने एक ऑटो चालक से कहा, भैया कृपया स्कूल के पास हॉर्न कम बजाएं, इससे हमें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, सिर दर्द रहता है, अध्यापक जी जो पढ़ाते हैं वो हमें साफ से सुनाई भी नहीं देता। शुरू में तो कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने अनसुना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे बात का असर होने लगा और दिखाई भी देने लगा। कुछ चालकों ने हॉर्न का उपयोग कम कर दिया। उधर सिस्ट्री ने स्कूल में एक साइलेंट डे रखने का सुझाव दिया जिसमें सभी बच्चे धीरे बोलेंगे, बिना ज़रूरत शोर नहीं करेंगे। शिक्षक और जो अध्यापक थे उन्होंने भी इसकी मंजूरी दी। कुछ ही दिनों में बच्चों ने देखा कि स्कूल का माहौल पहले से बेहतर हो गया और पता है बच्चों, उनका पढ़ाई में ध्यान भी लगने लग गया, सिरदर्द भी कम होने लग गया, अध्यापक जी जो पढ़ाते थे वो भी समझ में आने लग गया और शांति से उनको सुनाई भी देने लग गया। और सभी ने अपने दोस्तों से कहा, देखो अगर हम चाहें तो बदलाव ला सकते हैं, बस हमारी इच्छा होनी चाहिए और हमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण भी हम सब मिलकर कम कर सकते हैं। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गया कि शोर सिर्फ आवाज़ से नहीं, यही हमारी सेहत पर भी बुरा असर डालता है। धीरे धीरे पूरे शहर में बच्चों की यह मुहिम जो है वो फैल गई। लोग समझने लगे कि अनावश्यक शोर करना सही नहीं है। अब उस शहर में पहले जैसी तेज और असहनीय आवाज़ें नहीं होती थी। पक्षियों की चहचहाट, हवा की सरसराहट और बच्चों की हंसी फिर से सुनाई देने लगी थी। ऋचा और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं और इस तरह छोटे से शहर में शांति फिर से लौट आई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोशिश करने से बड़ी परेशानी का हल भी धीरे धीरे छोटी छोटी मेहनत से निकल सकता है। तो आइए बच्चों सुनते हैं ये गीत।

बच्चों अब बारी है हमारी आज की रोचक जानकारी की। क्या बच्चों आप घर में नहाते हो, बाहर घूमने जाते हो तो नदियों में नहाते हो, तो क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि नदियों में सफ़ेद झाग क्यों दिखाई देता है? नहीं ना? और आया भी है तो मैं आज आपको बताती हूँ कि नदियों में सफ़ेद झाग क्यों दिखाई देता है। नदियों में दिखने वाला सफ़ेद झाग प्रदूषण के कारण बनता है। ये झाग खासकर फैक्ट्रियों के कचरे, साबुन और जो हम सरफ यूज़ करते हैं गंदे पानी के जो है नदी में मिलने से पैदा होते हैं, और जो डिटर्जेंट और जो हम साबुन और जो रासायनिक जो चीज़ें होती हैं इन पदार्थों से पानी में झाग होते हैं। जब ये पानी हम ज़्यादा मात्रा में आपस में मिल जाते हैं तो पानी में झाग बनने लग जाता है, और जब ये गंदा पानी तेज़ बहाव या बांध से नीचे गिरता है तब भी बुलबुले बनते हैं जो झाग का रूप ले लेते हैं। कई बार ये झाग इस बात का भी संकेत देता है हमें कि नदी का पानी प्रदूषित है और उसमें गंदी जो गंदगी है वो ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। और आपको पता है बच्चों, भारत की पांच जो प्रमुख नदियाँ हैं हमारी, गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो हमारी है गंगा नदी। और पता है बच्चों, जब हम घूमने करने जाते हैं तो पर आजकल हम क्या करते हैं, आज के समय में तो हम सभी ये भी जानते हैं कि प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नदियों में लोग कपड़े धोते हैं, साबुन लगाकर स्नान करते हैं, जिससे पानी और भी ज़्यादा गंदा और प्रदूषित हो जाता है। इसलिए हम जब भी कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो हमें साबुन और भी जो गंद खाना वगैरह हम खाते हैं वो हमें नदियों में नहीं डालना चाहिए, जिससे ये हमारी जो नदियाँ हैं ये पानी है ये गंदा हो जाता है। और जब यही पानी आगे जाकर दूरी से जब नीचे गिरता है और तेज़ बहाव से आता है तो इसमें झाग उठते हैं।

0: तुम जो हम तुम संग है तो।
1: तो बच्चों, अभी हम इतनी देर से सुन रहे हैं गाने और अच्छी अच्छी कहानी, कविता और रोचक जानकारी। तो बच्चों, गर्मियों में अब हमें रखना है अपना ख्याल। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं अभी कितने ही दिनों से गर्मी का मौसम है। वैसे तो मौसम बदलता जा रहा है, दिन में तेज़ धूप होती है और शाम को वही तेज़ आंधी, तूफान और बरसात। कुछ दिनों से ये मौसम ऐसा ही चल रहा है। तो बच्चों, ऐसे मौसम में आपको अपना रखना है ख्याल और खुद ही रखेंगे। और जून के इस महीने में तो आप जानते हैं कि कितनी तेज़ धूप होती है और कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो आप सबको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा धूप है तो बच्चों घर से बाहर नहीं निकलना। जैसे कि आपको पता है, बार बार पानी पीते रहना चाहिए और डिहाइड्रेशन के लिए पानी में थोड़ा सा ग्लूकोज और नींबू की सिकंजी हर वक्त आपको पीते रहना है। घर से बाहर आपको कम निकलना है और बहुत ही ज़रूरी काम है। तो बाहर जाते समय आप अपने चेहरे को सूती कपड़े से ढके और सूती ही कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े और पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर जाएं। एसी या कूलर के आगे बाहर से जब आप आते हैं तो एकदम सीधा जाकर न बैठें, क्योंकि इससे आपको जुकाम हो जाएगा और लूज मोशन, इससे आपके सिर में दर्द की दिक्कत हो सकती है, बीमार हो सकते हैं और लू भी लग सकती है। और तो और, बाहर तेज़ धूप से आकर सीधा हमें, आपको मैंने पहले भी बताया अभी कि हमें सीधा नहीं बैठना और ना ही ठंडा पानी पीना है। आपको 2 मिनट बैठकर अपने आप को सुस्ताना है और नहीं तो सर्द गर्मी हो जाएगी। आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बाहर से आते ही हमें कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी, ठंडा पानी नहीं पीना। गर्मी में अपना विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गर्मी का मज़ा तो पीने में ही आता है, जैसे कि आम का रस, गन्ने का जूस, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, बील और हमारे तरह तरह के शरबत, जिससे हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे पेट को, गले को बहुत ही ठंडक मिलती है। तो गर्मी में है जो इन चीज़ों का हमें आनंद लेना चाहिए। और बच्चों, नानी के घर जाने की खुशी और ढेर सारा आलस और उत्साह तो अच्छा है बच्चों, मगर हमें साथ में क्या करना है, अपना ध्यान रखना है। गर्मी के दिनों में तो विशेष रूप से अपना ख्याल रखना है। तो आइए सुनते हैं हम ये छोटा सा प्यारा।

तो बच्चों आप अपना रखिए ख्याल, अब समय हो चुका है आपसे विदाई लेने का। अब आपसे हम फिर मिलेंगे आपके अपने चाहते कार्यक्रम मुकुल में। तब तक के लिए जय हिंद।

अभी हमारे नन्हे साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मुकुल। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया अनीता जोशी ने। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के ठीक 10 बजे हैं और समय है फिल्म संगीत का। लीजिए पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली, आशुतोष कौशिक, ऋषिता भट्ट, जाकिर हुसैन और हरीश अरियुद्ध के आवाज़ में। फिल्म का नाम है चल जा बापू। गीत के बोल लिखे हैं राहुल भट्ट ने और संगीत है दीपिका जोशी का।

0: वाह फंसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ।

0: जवानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार।
4: अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
8: संग प्रीत लगाई सजना सजना।
7: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: फिल्म बधाई हो से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को गाया था गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने, बोल लिखे थे मिलोर ने और संगीत था तनिष्क बागची का।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

जुबिन नौटियाल की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बागी 2 से। इस गीत के बोल लिखे थे सईद कादरी ने और संगीत था मिथुन का। अगला गीत फिल्म ब्लैकमेल से। इस गीत को गाया है, बोल लिखे हैं और संगीत दिया है गुरु रंधावा ने।

सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था फन्ने खां। गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने, संगीत था अमित त्रिवेदी का। फिल्म संगीत में लीजिए अगला गीत सुनेगा मीका सिंह और सचिन जिगर की आवाजों में। फिल्म का नाम है स्त्री, बोल हैं वायु के और संगीत है सचिन जिगर का।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाए इस गीत को आपने सुना। फिल्म का नाम था कबीर सिंह, बोल थे इरशाद कामिल के और संगीत था साचेत परंपरा का। नेहा कक्कड़, मीका सिंह और कुमार सानू की आवाज में गाए अगले गीत को लीजिए सुनिए फिल्म सिम्बा से। बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने, संगीत है तनिष्क बागची का।

अरमान मलिक की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था वाई चीट इंडिया। बोल थे मनोज मुंतशिर के और संगीत था रोचक कोहली का। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैक्सिमम से। इस गीत को गाया है रागा बॉयज ने। बोल है नासिर अली नासिर के और संगीत है वादी अली हमीद अली का।

0: इस बेहतरीन सूफियाना कलाम के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 11 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का 6वां संस्करण। आज का विषय है महिला सशक्तिकरण।
1: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक। इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the

0: priorities of this government and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aap se jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aap se discussion karna chahenge, chahe wo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थीं, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए. सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
1: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ. प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता. मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ. और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति. उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता. और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत @2047 है जी. उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है जो दिखाई देती है. मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है. इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके. और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थीं, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया. और ये सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
0: जी,
1: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी. तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज more than 61% women. So, सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वही नहीं रुके क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे. लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं. मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया. देखिए, पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
0: जी.
1: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है. और वो महिला बन जाए
0: जी.
1: तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है. और ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है. हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट. और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी हैं. और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लड़की से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है. ये प्रारंभ है लखपति योजना. नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है. और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन एमएसएमईज को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं. और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है. पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं. वी हैव नॉट क्रॉस

0: 50 पर, पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे लगभग, वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, तो वो काम भी हो जी। और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है, और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं? तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं, और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, तो ये सशक्तिकरण मात्र नहीं है जी, आजीविका के मामले हैं।
1: यस जी अदिति जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड यू नो द वेरियस वेज इन विच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर वुमेन। इन फैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच वुमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशियरीज एंड इंडिया इज लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज। 3 करोड़ प्लस वुमेन लेड एमएसएमई are contributing to the country's progress and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
2: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the 4 pillars of Viksit Bharat. If the country has to attain the developed country status by 2047, it is imperative that women are given conditions and, you know, where women are handheld to achieve their true potential. So what we are seeing today is that driven by several life cycle based approaches through the policy framework of the government, we have schemes now that have targeted interventions through sectors like health, education, housing, there's digital access, sanitation, then you have financial inclusion. What I'm basically trying to say is women are today in a position through the policy framework to lead self-help groups, launch businesses. You know, they're breaking barriers in science, defense and sports. We just saw JEE advanced results come in and how women were leading over, you know, the girls were leading over boys in several of the top positions. So in STEM disciplines, Indian women are leading, not just in India, but across the world also. Right now, as we speak, fresh data has suggested that women and children, you know, they comprise 67.7% of India's population, the data that has come in just before the beginning of the new census. So empowering them is not just a requirement anymore. It is a strategic imperative, because look at the percentage of women and children in the country, literally 70% right now. So that is the basis of the landscape that is being created. What you just mentioned, that you have women leaders across segments these days. And you rightly said that, you know, you have women in startup leadership roles. You have women across mudra loans. You have around 70% mudra loans that have gone to only women. So the gaps that existed in the policy framework to enable women to achieve their financial potential have now been filled through several schemes. And what we also need to remember, Sonu, is that for generations, Indian women have faced systemic barriers. You know, there have been limited access to education and healthcare, to employment, as well as decision making, especially if you look at the rural heartland of the country. But now what you see is, you see a massive movement of around 90 lakh self-help groups. This is basically a rural economic phenomenon. And 10 crore women are already associated with these self-help groups. This is the backbone of the Lakhpati Didi program that the government is mentioning and is powering like never before. And they have also enhanced the targets under this scheme. I think the plan is now to have

0: But they are outnumbering in success. And the STEM, special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए, कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए, और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल,
0: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता, ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहाँ से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुँच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ट. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें बच्चे भी हैं, माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर.
2: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
0: Yes.
2: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek
0: yes.
2: aur jo aapne baat kari matritva support di ja rahi. Ji. So maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain, aur institutional deliveries 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है. जी
0: 98
2: बिल्कुल 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
0: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है.
2: जी
0: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं.
2: जी जी
0: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी. फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ODF फ्री इंडिया. देन जो मातृ मृत्यु दर, मोर्टेलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
2: Yes.
0: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, yes. which will surely lead to healthier generations in coming times.
2: And also when yes. women are healthier, and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know,
0: yeah,
2: due to the
0: yeah.
2: Jal Jeevan mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
0: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Mm-hmm. You can see the women have dreams about their children now, mm-hmm. and especially the daughters. Mm-hmm. I have come across, as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up.
2: Yes.
0: और मोदी जी जो बार बार कहते हैं, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र की जन्मदाता है, और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है. This is the linkage. Between women's health and the empowered or Vikasit Bharat, as we say. Aatmanirbhar Bharat bhi usi mein mila hua hai.
2: Absolutely. Aditya ji, coming to you, agar hum safety ki baat kare, ek dignified life ki baat kare, to jo mission shakti, ek mission wo raha hai, muhim sarkar ka, jiske tahat unhone kai aise initiatives wo laaye hai, jisse ki mahilaye surakshit mehsoos kare, jisme abhi jo latest hai, She Box Portal, jo digital platform hai, sexual harassment complaints ka workplace pe, unko register karne ka, iske baare mein aap thoda sa bata sakti hai, ki iska विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
3: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है RG कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उस

0: बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ, ये
1: हम्म,
0: बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया। निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं। और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजोल्व करने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए। मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती। हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है। जैसे हमने सदियों से देखा जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए। सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है, समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है।
1: बिल्कुल ही पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है, सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हैं। लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था, आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब

0: जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
1: जी
0: महिलाओं के
1: बिल्कुल
0: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक वुमेन लेड एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड हैं और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या
0: जी
1: जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है,
0: जी
1: डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वुमेन एम्पावरमेंट में भी।
0: जी बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है, विच इज इजिएस्ट फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं, वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देर कांट बी बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजली, एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो, लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू ऑल्सो नीड लेटेस्ट स्किल्स, बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग एंड द मार्केट नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, एट टाइम्स दे मे बी डिजिटल स्किल्स इन कमिंग टाइम, एंड यू सी वीमेन आर रियली वेरी गुड एट दैट, बिकॉज दिस इज हार्ट एंड हैंड बोथ गोइंग टूगेदर, एंड देन इफ यू रियली ट्रेन द इन टू द राइट काइंड ऑफ स्किल्स एंड एम्पावरमेंट टेक्निक्स ऑल्सो आई वुड से और फील्ड्स, देन दे आर रेडी फॉर द वर्ल्ड। और ये सरकार चाहती है, वुमेन लेड डेवलपमेंट कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी। और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार होंगे।
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
0: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज, आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न, एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन, तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर, तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे, और जो महिला प्रशासक हैं, वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली

0: अब यंग वंस दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेंगी।
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया, तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, द रोल ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेंट्रल टू दिस जर्नी। अक्रॉस सेक्टर्स वुमेन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स। सुषमा जी, अदिति जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग डिस्कशन।
0: Thank you.
3: In this special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal. महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक, इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के
4: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का 6वां संस्करण। आज का विषय था महिला सशक्तिकरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर दिन के 11:35 हो चुके हैं, अब इंतज़ार होता है ख़त्म और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन फिल्मों के बेहतरीन नगमे, प्यारे मीठे मधुर, आपकी पसंद से जो आप चाहते हैं वही हमारी चॉइस, आपकी चॉइस। तो बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं पहले गीत की ओर।

जैसा कि आप देख रहे हैं कि पन्ना की तमन्ना है, वैसे ही जो तमन्नाएं आज पूरी हो रही है इस गीत के साथ में, यानी कि वो हमारे प्यारे से श्रोता जिन्होंने खत लिखकर इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशें भेजी हैं, पहले जान लेते हैं कि वो हैं कौन। तो आप हैं पवनपुरी बीकानेर से श्री भंवरलाल सोनगरा, प्रेमी गीता रानी, राज मनोहरलाल, बी एल सोनगरा, डॉक्टर सोनू दायमा, सरोज सत्यनारायण दायमा, अखिल मूलचंद सोनगरा, सुनीता प्रथमराज, हंसराज, कृष्ण मुकेश सोनगरा, सावित्री मिस्त्री, सीताराम पंवार, दीपू पंवार, आशीष और जतिन सोनगरा। आप सुनने जा रहे हैं बेहतरीन गीत फिल्म हीरा पन्ना से, आडी बर्मन का संगीत है इसमें और इस गीत को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ें दी हैं मधुर। सुनते हैं हीरा।

श्रोताओं, ये जो ख़त आपके आते हैं, मतलब ये कार्यक्रम को इस तरह से महका देते हैं। ये जो पीले पोस्टकार्ड्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं लगता है विटामिन ए छुपा हुआ है। जानते हैं आप कि पीले फलों में होता है, वैसे ही ये हमारा विटामिन ए है, जो आपका प्यार है आप हमें भेजते रहते हैं और हम तक पहुंचता है, हमारी रगों में दौड़ता है आपकी पसंद बनकर। और कहीं ना कहीं ये हमें वो जोश और जुनून देता है कि हम आपके लिए प्यारे प्यारे गीत जो आप भेजते हैं सुनने के लिए, ख्वाहिशें फरमाइशें, उन्हें हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें। और आपके प्यार के आगे तो शायद दुनिया का हर प्यार फीका पड़ जाता है। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। किशोरदा और लता की आवाज़ में पन्ना की तमन्ना, जो सुनकर आपने यकीनन दिल को बाग बाग कर लिया है। तो पोस्टकार्ड के इस झोले से कुछ और ख़त निकालते हैं और देखते हैं हमारे इस अगले गीत के लिए किन किन श्रोताओं ने फरमाइश भेजी है। और गीत मैं आपको बता देता हूँ कि साल 1981 में आई फिल्म हरजाई के सफ़र पर है ये गीत। सुर कोकिला, लता मंगेशकर जी की उस मखमली आवाज़ और मधुरता में, कह सकते हैं कि आर डी बर्मन के संगीत में ये डूबा है गीत। गुलजार साहब ने इसे बड़े प्यार से लिखा है। संगीत जो है ये कानों में मिश्री घोलने वाला है आपके, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये खूबसूरत तोहफे की तरह आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और वो तोहफा किसके लिए है? जी हाँ, मोमासर बास श्री डूंगरगढ़ से मोहम्मद असगर पंवार, अकबर, राबिया मुन्नी, बरकत हाजन, अजीज़ गुलजार असगर भाई, अमर सिंहपुरा बीकानेर से मोहम्मद अफजल, मुमताज अली, सिकंदर अली, शबनम बानो, मोहम्मद कैफ और उनका परिवार, सुराना मोहल्ला बीकानेर से शरद सुराना, मयंक सुराना, विमल सुराना, विमल अभानी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोशन अली मिस्त्री, और लालगढ़ बीकानेर से असगर अली पंजाबगीर, अनवर अली पंजाबगीर, मुमताज, सोनू, टीना, वाहिदा, साहिदा, ताहिरा, एम ए पंवार और खातून बेगम। आप सब की बेहद खूबसूरत फरमाइश को पूरा हम करने जा रहे हैं, जो एक कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ ही हम इस गीत को आप तक पहुंचाएंगे। निगाहों में मोहब्बत का एक हसीन ख्वाब बुना है, हमने सिर्फ और सिर्फ आपके दिल को चुना है, सजागर अपनी पलकों पर ये खूबसूरत अरमान, आज फिर सुरों का एक बेहद नायाब मोती चुना है।

क्या बात है लता जी की आवाज़ में पलकों की झालर बुनते बुनते अब हम आ पहुँचे हैं आज की महफिल के तीसरे मुकाम पर यानी कि तीसरे गीत की ओर। और सच मानिए तो दोस्तों, आज डाकिया बाबू ने जो पोस्टकार्ड्स हमारे टेबल पर सजाए हैं उनमें मोहब्बत के रंग कुछ ज़्यादा ही गहरे नज़र आ रहे हैं। तो सुनते हैं मोहब्बत से सराबोर एक और गीत, फिल्म का नाम है शक्ति, 1982 की ये फिल्म, आर डी बर्मन का संगीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिर से वह बेहतरीन जोड़ी। और इस बेहतरीन गीत को सुनने के लिए हमारे पास जो फरमाइश आई है आपकी, शीतला गेट बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, शरीफ खींची, शुजैन आजम खींची, अकमल हुसैन, अमजद अली, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। वल्लभ गार्डन बीकानेर से एलसी शहजादा, कमला देवी पंवार, राजकुमार, गीता रानी, मयंक अनन्या, सत्यनारायण पंवार, लालचंद पंवार, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ब्रह्मपुरी चौक बीकानेर से जीपी दवे, सुरेश दवे, गोपाल दवे और उनका परिवार। तो सुनते हैं आपका ये पसंदीदा बेहतरीन गीत, चंद लाइनें। आपकी नज़र, मोहब्बत का कोई तय वक्त या ठिकाना नहीं होता, धड़कने कब बदल जाएं कोई बहाना नहीं होता, ये तो बस हो जाता है चुपके से दिल की किसी कोने में, इश्क इश्क जैसा दुनिया में कोई और फसाना ही नहीं होता।

0: Akashwani at 90.
1: दोस्तों, वक्त की सुइयाँ बड़ी बेरहम होती है। जब अच्छा वक्त चल रहा हो तो ये मानो पंख लगा के उड़ने लग जाती है। तो सुरों के जिस सफ़र को हमने ख़तों की खूबसूरत और खुशबू भरी एक शुरुआत दी थी, अब वो आखिरी मुकाम पर आ गया है। तो आज के इस आखिरी नगमे के लिए क्या बताएं, ये गीत है कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार फिर कब मिलोगी। फिल्म का ये गीत है मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में, आर डी बर्मन का संगीत है और बहुत ही खूबसूरत इंतज़ार का ये गीत।

जो इंतज़ार आपने किया अपने गीतों को सुनने का, उनके नाम भी बता देते हैं हम। ये गीत सुनना चाहते थे जेएनवी कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री गौरव शाही। इसी गीत को सुनना चाहते थे चौतीना कुआं बीकानेर से राजेंद्र कुमार पांडे, उनके परिवारजन। रानी बाजार से रानी झाम और बिट्टू झाम, कमला कॉलोनी बीकानेर से सुभाष खत्री और उनके परिवारजन भी इस गीत को सुनना चाहते थे। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहतरीन नगमा, कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार।

0: फरमा है कोई पास आए पर अब जाने का वक्त हो गया है। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत पर आधारित आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

0: को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 12:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, बात करते हैं पहले हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कर्म विशेष कार्यक्रमों की ओर। रात्रि 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 9:30 से 10 बजे तक आप सुनिएगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा यह कार्यक्रम। हमारे दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित होगा रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। सुनना ना भूलें रात्रि 10 बजे से। रुख करते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र के अनुप्रसारणों की ओर। तो अब से कुछ ही पलों में यानी कि 12:10 पर आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित होगा ये कार्यक्रम। दोपहर 6:42 पर समय रहेगा जिले की चिट्ठी का, जबकि शख्सियत ये कार्यक्रम सुनेंगे आप रात्रि 8 बजे से। ये भी कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब रुख करते हैं हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ओर। पहली बात

करते हैं दोपहर 12:40 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और फिल्म संगीत का लुत्फ आप फिर से उठा पाएंगे इसी सभा में दोपहर 2:30 पर। दोपहर 1:05 पर हमेशा की तरह महिला जगत कार्यक्रम प्रस्तुत होगा, लेकर आएंगी बिंदु शर्मा और किरण शर्मा। चर्चा होगी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, भोजन की शुद्धता पर, बच्चों के टिफिन के लिए पौष्टिक आहार, मिलावटी खाद्य पदार्थों की घर पर पहचान कैसे करें, नियमित योग अपनाएं। और हाँ, हम आपको सुनवाएंगे एक वार्ता, गर्मियों में खान पान। वार्ताकार होंगी श्रीमती पूनम गर्ग और रसोई ब्यूटी से टिप्स तो होंगे ही फिल्म संगीत के साथ। कार्यक्रम महिला जगत में दोपहर 1:05 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में युववाणी कार्यक्रम प्रस्तुत होगा संध्या 5:05 पर, जो लेकर आएंगी सलोनी पारिक और रिपुदमन सिंह। आज की बात का विषय रहेगा योग और स्वस्थ वृद्धावस्था का विज्ञान। लघु जानकारियां होंगी एआई और रोजगार की संभावनाएं। सांध्यकालीन सभा में फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे संध्या 6:05 पर और उसके बाद रात्रि 9:15 पर भी फिल्म संगीत प्रस्तुत होगा। ग्रामीण भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, लेकर आएंगे अनिल सिंह और संदीप कुमार पारिक। विषय चर्चा के रहेंगे समेकित कीट प्रबंधन, खरीफ फसल खरीफ सीजन में काम आने वाले 10 उपयोगी कृषि यंत्र, विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना के साथ किसानों के मित्र पक्षी, तो लोकगीत, मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ लोकगीतों का आनंद तो आप लेंगे संध्या 7:00 से कार्यक्रम ग्रामीण जगत में। सुगम संगीत प्रस्तुत होगा सांध्यकालीन सभा में 7:45 पर, जबकि लोक संगीत 8:30 आप सुन पाएंगे। श्रोताओं, ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:10 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारा अमेर चैनल मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। दिन के 12:10 हुए हैं, आइए सुनवाते हैं आपको सिंधी कार्यक्रम।

0: पेश आयो खणी अवां जो पेंजो सिंधी प्रोग्राम सबनी बुधदणन के सीमा हिरानी जो नमस्कार आज जे प्रोग्राम में असाजा युवा साथी बुधंदा पेंजो प्रोग्राम नई रोशनी नवा विचार तेखा सवाए गीत संगीत युवा साथी सबनी का पहरी बुधंदा ही गाल बोल हिन प्रोग्राम में अज असा सा गद आहिन पत्रकार चित्रेश रिजवानी ए पत्रकार दिलीप पारवानी ऐं अॼु असां सां गॾु हुननि जी ॻाल्हि ॿोल जो विषय आहे युवा ऐं पत्रकारिता जो पेशो जिते सभु डॉक्टर ठहण था चाहिनि इंजीनियर आर्किटेक्ट सी ए फैशन डिज़ाइनिंग ऐं उन जे अलावा बि केतिरा ई पेशा आहिनि जिते युवाउनि जो रुझान वधीक आहे पर अॼु जिते युवा सोशल मीडिया सां सभिनि खां वधीक जुड़ियल आहे ऐं सोशल मीडिया जे ज़रिए हू ॼाण बि वठे थो सॼे देश जी दुनिया जी हुनखे ख़बर बि आहे ऐं अॼु युवा में चङो बदलाव बि आहे ऐं हू पत्रकारिता जी तरफ़ बि मुड़ी रहियो आहे छोकी मीडिया सां सभिनि खां अगरि जुड़ियल केरु आहे त हू युवा शक्ति ई आहे त पत्रकारिता जी तरफ़ बि उन्हनि जो ओतिरो ई रुझान हली रहियो आहे त दिलीप जी सभिनि खां पहिरीं मां तव्हां खां पुछंदसि की पत्रकारिता जो पेशो युवाउनि लाइ केतिरो सही आहे छा युवाउनि खे हिन पेशे में अचणु घुरिजे
1: पत्रकारिता जो जेको पेशो आहे उहो

0: वो जोश भरो ॿियो हिकु काफ़ी साहसिक कमु आहे,
1: जी
0: ॿियो पत्रकारिता जीअं असां ॼाणूं था कि असांजे लोकतंत्र जो चौथो स्तंभ मञियो वेंदो आहे। पत्रकारिता जे माध्यम सां असां पंहिंजी ॻाल्हि खे लाखों माण्हुनि ताईं पहुचाए सघूं था, त हीउ हिकु अभिव्यक्ति जो सशक्त माध्यम आहे।
1: जी
0: त अहिड़े जोश ऐं साहसिक जज़्बो रखण वारे पेशे सां अॼु जो युवा जुड़णु चाहे थो, कि उहो बि हिन पत्रकारिता जी जेकी शक्ति आहे उनजे माध्यम सां पंहिंजी जेकी आवाज़ आहे उहो जनमानस तक पहुचाए सघे। ॿियो अॼुकल्ह जेको पत्रकारिता जा नया नया तरीक़ा चेंज थी विया आहिनि, नई तकनीकूं

0: भी हिन पत्रकारिता जी जेकी शक्ति आए उन जे माध्यम सा पेंजी जेकी आवाज आए वो जनमानस तक पहुंचाए सके बियो आजकल जेको पत्रकारिता जा नया नया तरीका चेंज थी वे नई तकनीकू डिजिटलाइजेशन जो पत्रकारिता जे क्षेत्र में काफी बदलाव कयो है त अज जो सोशल मीडिया जो असा जेको ताकत दिसू था डिजिटल मीडिया है अज जा नया जेके न्यूज पोर्टल्स एंड चैनल्स एंड इन अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए त इनन जे माध्यम सा युवा वधिक में वधिक इनन सा प्रभावित थे तो बियो हिन में कैरियर ठाण लाए नई टई वो वधिक रुझान वठे थी
1: जी दिलीप जी तां बुधायो कि युवाओं जो रुझान हिन तरफ आही अगर युवा पत्रकारिता जी तरफ अचन तो चाहे केड़ी उनन में विशेषता होनी खपे केड़ा गुण हु अपनाइन या केड़ी योग्यता उनन जे लाए जरूरी आए
0: पत्रकारिता जे क्षेत्र में अचण लाए सबिन का पहरी त एक शैक्षणिक योग्यता जी जेकी सीमा आए त उन में जेके 12 12वीं पास हैं वे पंजे स्नातक स्तर जो पत्रकारिता जो कोर्स करे सकन था शहरन में कॉलेज बियो यूनिवर्सिटीज हैं त वे बीजेएमसी स्नातक स्तर ते बियो पोस्ट ग्रेजुएट स्तर ते एमजेएमसी जो कोर्स कराइना है इने अलावा बैचलर ऑफ जर्नलिज्म बियो डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा कई तरह जा इन में पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं त इनन शैक्षणिक योग्यताओं के द्वारा वो इन लाइ एलिजिबल थी सकन था बो इन में उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कॉलेज बो यूनिवर्सिटीज में मिले थी इन अलावा वो जेके समाचार पत्र चैनल्स हैं उन्हें में इंटर्नशिप भी करे सकन था तो उन जे माध्यम से वो इन पत्रकारिता के क्षेत्र में शामिल थी सकन था
1: सुठी जान दिनी दिलीप जी तमा चित्रेश जी मां तमा का पुछ चाहिंदस की असाजा युवा अगर पत्रकारिता से जुड़े तो देश ए समाज जी खुशहाली तरक्की बेहतरी ए सुजागी जे लाए पत्रकारिता जा छा रोल आहिन जिन जी जान युवा शक्ति के हुजन खपे
2: हन सवाल जो जवाब में मा यो चोंदम मुजी जेका सोच आहे वा यो आहे कि जेको पत्रकार आहे ता हन के एक डॉक्टर जे बरक्स रखी सको ता
1: जी बिल्कुल
2: मा यो छो तो चवा छो कि एक जे डॉक्टर हुंदो आ वो के मरीज जी जांच कंदो आ हन जी बीमारियन जो इलाज कंदो आ हन के दवा देंदो आ अगर जरूरत पए त हुन जी सर्जरी कंदो आहे
1: जी
2: हिकड़ो पत्रकार हुई एक जेको पंजो समाज आ पंजे आसे पासे जो हाने चाहे वो शहर हुजे चाहे राज्य हुजे या चाहे ता जो नंडड़ो सो वार्ड ही छो न हुजे
1: जी
2: हुन जी समस्याओं जी पहचान करे हुन जो निदान कंदो आ हुन समस्या के सामू आणिंदो आ एक वडे स्तर ते
1: जी
2: जेका भी विभिन्न माध्यम आहिन ता जो टीवी थियो ता जो अखबार थियो त आजकल सोशल मीडिया जी आहे कें भी शय में तांके सुधार करणो आहे त तां छा कंदव सभिनी खां पहिरियों समस्या जी पहचान कंदव हिन सभिनी खां पहिरें कदम में जेको पत्रकार जो भूमिका आहे उहा ॾाढी महत्वपूर्ण आहे हिन खां पोइ हुन समस्या जो इलाज जेका माण्हू आहिनि या वरी तव्हांजा जनप्रतिनिधि आहिनि उहा सभु मिली करे करे सघनि था पर हुन समस्या खे साम्हूं आणण जो सभिनी खां वॾो पहिरियों कदम जेको आहे उहो हिकु पत्रकार कंदो आहे ऐं इन करे मां हुनखे हिकु डॉक्टर जे बराबरि मञंदो आहियां बसि हू समाज जो डॉक्टर थींदो आहे छो की अॼुकल्ह सोशल मीडिया प्रसार वधी वियो आहे त तव्हां ॾिसंदव की आम माण्हू बि हिकु पत्रकार जी भूमिका खे ॾाढे सुठे तरीक़े सां निभाए सघे थो अलाई घणा दुनिया में उदाहरण आहिनि की ॾाढी वॾी वॾी घटनाऊं थियूं ऐं उहा आम माण्हुनि सोशल मीडिया जे ज़रिए सभिनी खां पहिरीं हुन जी ॼाण पूरी दुनिया खे ॾिनी की असांजे पासे में इहो थिए थो ऐं हू हिकिड़ी पूरे वैश्विक स्तर जी ख़बरूं ठहियूं इन करे मां इहो चवंदमि की अॼु जी तारीख़ में त इहो ॾाढो सुठो थियो आहे की पत्रकार त को बि आम माण्हू ठही सघे थो अगरि तव्हां वटि संचार जो माध्यम आहे तव्हां पत्रकार ठही सघो था
1: जी
2: बसि थोरो सो क़दम खणण जी ज़रूरत आहे
1: जी दिलीप जी जीअं चित्रेश जी ॿुधायो की हर हिकु ॼणो पत्रकार ठही थो सघे त तव्हांजे नज़रिए सां हिकु पत्रकार में कहिड़ी कहिड़ी विशेषता हुजणी खपे कहिड़ा गुण हुनखे पंहिंजे में अपनाइणा खपनि ताकी हू सुठो पत्रकार ठही सघे
0: बिल्कुल बा चित्रेश जेकी ॻाल्हि चई की अॼु जे दौर में जेकी पत्रकारिता आहे उहो कोई प्रोफेशनल उहो व्यक्ति ई पत्रकार हुजे की भई कंहिं संस्थान सां जुड़ियल आहे उहो ई हिन शइ खे अॻियां वधाए सघे थो अॼुकल्ह छा आहे छो की हिकु त सोशल मीडिया जो ज़मानो आहे इंटरनेट ते असांजो जेको संसाधन आहिनि उहे काफ़ी वधी विया आहिनि नई तकनीकूं अची वियूं आहिनि अॼु जेको असांजो मोबाइल आहे उहो ई अॼु कैमरे जो कमु करे थो उहो रिकॉर्डिंग जो कमु करे थो उहो असांखे पूरी दुनिया सां जोड़े रखे थो त इन में छा आहे हिकु सिटीज़न जर्नल जेके चवंदा आहिनि की हर हिकु नागरिक अॼु जंहिं वटि मोबाइल आहे उहो स्वयं खे पत्रकार जे रूप में उहो कमु करे सघे थो बाक़ी अॼु अगरि असां ॾिसूं की हिकु नई टई पत्रकारिता जे क्षेत्र में अचे थी त उन में कहिड़ा गुण हुजणु खपनि जंहिंसां हू पत्रकारिता जे क्षेत्र में ॿियो वधीक सुठो कमु करे सघे थो त इन में कुझु ॻाल्हियूं चर्चा करे सघूं था पत्रकारिता लाइ सभिनि खां पहिरियों जेको गुण आहे उहो आहे असांजी भाषा ते पकड़ असांजी जेकी भाषा ते पकड़ सुठी हूंदी असां हिंदी अंग्रेजी या जंहिं बि क्षेत्रीय भाषा में कमु कयूं था त उन भाषा जो असांखे ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु सुठी तरीक़े सां अचे

0: असां हिकु फ़ाइदो ॿियो थींदो आहे, रोज़गार जे खेत्र में बि असांजी वृद्धि थींदी आहे.
1: जी जी थींदी
0: कीअं की जीअं असां अॼु राजस्थान में रहंदा आहियूं,
1: जी
0: त अगरि असां हिंदी अंग्रेजी सां गॾु राजस्थानी भाषा जो बि कंहिंखे सुठो ज्ञान आहे
1: हाँ
0: त उहो आकाशवाणी दूरदर्शन में बि राजस्थान भाषा जो सेक्शन आहे, ॿियो बि संस्थाऊं आहिनि, उन हिसाब सां हिन में रोज़गार जा बि अवसर खुलनि था. उन खां पोइ अगरि असां ॿिया गुण ॾिसूं त हिकु खोजी दिमाग़ हुजणु खपे, जेको किथे बि कहिड़ो बि घटना थी सघे थी त उन लाइ पत्रकार अहिड़ी शख्सियत आहे जेको हर टाइम दिमाग़ में उहा घटनाक्रम छा थिए पियो उनखे सभु जानकारी हुजणु खपे, ॿियो बिल्कुलु सक्रिय हुजणु खपे. इन अलावा अॼु जी नई टहीअ खे हिकु आत्मविश्वास बि धैर्य इनजी बि ॾाढी ज़रूरत आहे. पत्रकारिता अहिड़ो पेशो आहे की जंहिंमें जेतिरो तव्हां में आत्मविश्वास हूंदो ओतिरी सुठी तरीक़े सां तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि खे समाज जे साम्हूं रखी सघो था, तव्हां ओतिरी सच्चाई सां पंहिंजी ॻाल्हि खे साम्हूं रखी सघो था. धैर्य हुजणु इन लाइ ज़रूरी आहे की कई बार असांखे ईअं लॻंदो आहे की कंहिं ख़बर जी सच्चाई साम्हूं अचण में, ॿियो विशेषकर अॼु जो जेको सोशल मीडिया जो दौरु आहे त उन में जेकी फेक न्यूज जी जेकी समस्या आहे, उन लाइ नई टहीअ में धैर्य हुजणु खपे की उहो उन समाचार के क्रॉस चेक कन, उनमें वास्तविकता केतरी आए, सच समाज जे सामू खणी अचण लाइ उहे प्रयास कनि. इन अलावा उन्हनि खे 24 कलाक अलर्ट रहण जी आदत विझणु खपे. काफ़ी सारा कुझु अहिड़ा गुण आहिनि जेके पत्रकारिता जे खेत्र में अचण लाइ आवश्यक आहिनि.
1: बिल्कुलु सुठी ॼाण ॾिनी दिलीप जी तव्हां. चित्रेश जी, पत्रकारिता त हर जॻह हले ई पई, जीअं सोशल मीडिया जो बि ज़मानो आहे, पूरो देश छा पूरी दुनिया ई गॾु अची वई आहे. पत्रकारिता में तव्हां कम बि करे रहिया आहियो त अञा बि कहिड़े सुधार ऐं सुझाव जी ज़रूरत आहे?
2: सभिनी खां वॾो सुधार ऐं सुझाव जेको थी सघे थो उहो आहे हिकु जॻह बीह करे थोरो दिमाग़ थधो करे इहो सोचणु की जेका ख़बर असां हाणे अॻिते ॾियणु वञूं था उहा ख़बर केतिरी महत्वपूर्ण आहे, हुनखे कीअं तरह सां अॻिते वधाइणो आहे, केतिरी हुनखे स्पेस ॾियणी आहे, यानी की कीअं हुनखे केतिरी महत्ता ॾियणी आहे पंहिंजे संचार माध्यम में. ऐं ॿी ॻाल्हि, छा उहा ख़बर जीअं दिलीप साहब चयो की बिल्कुलु सही आहे या न, हुनजो फैक्ट चेकिंग जंहिंखे चइबो आहे, छोकी अॼुकल्ह इहा ॻाल्हि थी वई आहे तव्हांखे सभिनी खां पहिरियों ख़बर पहुचाइणी आहे. हिकु जॻह बीह करे तव्हांखे इहो सोचणो खपे की जेका ख़बर तव्हांजे स्रोत सां आई आहे उहो स्रोत सही आहे बि या न.
1: जी,
2: छोकी ॾाढा दफ़ा अहिड़े स्रोतनि सां बि ख़बर ईंदियूं आहिनि जंहिंजो नालो तव्हां कॾहिं पहिरियों ॿुधियो कोन्हे. जेका नामचीन स्रोत आहिनि उहा बि कॾहिं कॾहिं फिसलजी वेंदा आहिनि ऐं हिकु ॿ ख़बरूं एॾी ॾेई छॾंदा आहिनि, हुनजी माफ़ी घुरणी पवंदी आहे. त मूंखे लॻे थो जंहिंखे चूहा दौड़ थी वई आहे अॼुकल्ह, हुन सां परते हिकु दफ़ो हटिजी ऐं थोरो दिमाग़ खे थधो करे तव्हां सोचियो की भई इहो ख़बर छा ॾियण लाइक़ु आहे ऐं हिन रूप में ॾियण लाइक़ु आहे या न, ऐं छा हिन में का बदिलाउ जी ज़रूरत आहे या न.
1: जी बिल्कुलु दिलीप जी, जीअं चित्रेश जी बि चयो त युवा जेके अचनि था हिन अगरि पेशे में त हुननि खे केतिरो ध्यानु रखणु खपे हिन शइ जो ऐं इन लाइ उहो तयारु रहनि, अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हियूं आहिनि?
0: बिल्कुलु, जेके भाउ चित्रेश ॻाल्हि कई की अॼुकल्ह जेकी ब्रेकिंग न्यूज़ जी संस्कृति आहे त इन जे कारण छा समाचार जेके आहिनि उन्हनि जी विश्वसनीयता ते प्रश्न चिन्ह लॻी वियो आहे. अॼुकल्ह इन लाइ फैक्ट चेकिंग टूल्स अची विया आहिनि, एप्स अची विया आहिनि, कुझु सरकारी स्तर ते गैर सरकारी स्तर ते फैक्ट चेकिंग सिस्टम डेवलप कया आहिनि. इन लाइ छोकी सोशल मीडिया ते जेकी बि ग़लति ख़बरूं आहिनि या इहो हिकु प्रोपेगेंडा जेके चवंदा आहिनि उहो काफ़ी हावी थी वियो, त इन लाइ मां चाहींदमि की जेकी हिकु त नई टही आहे उनखे वधीक में वधीक अलॻि अलॻि विषयनि ते गहन अध्ययन करणु खपे. चवंदा आहिनि की भई हिकु पत्रकार वटि हिकु IAS जेतिरो ज्ञान, ॿियो हिकु IPS अधिकारी जेतिरो ताक़त हुजणु खपे. त जेकी नई टही आहे उहो अगरि पत्रकारिता में पंहिंजो कैरियर ठाहिणु चाहे थी त उन्हनि खे पॉलिटिक्स, कल्चर, रिलीजन, सामाजिक जेके मुद्दा आहिनि उन्हनि सभिनि ते उन्हनि खे गहन जानकारी हुजणु खपे, उन्हनि जो उन्हनि खे अध्ययन सुठो हुजणु खपे, गॾो गॾु उन्हनि खे जेकी अॼु जी नई तकनीक आहे की कीअं हू पंहिंजे स्त्रोत खे क्रॉस चेक करे सघनि था, ख़बर किथां अचे पई, उहा केतिरी विश्वसनीय आहे, उनखे हू अगरि अॻियां वधाइणु चाहिनि था, सच्चाई आहे उहो समाज जे साम्हूं रखनि, इहो पत्रकारिता जो बिल्कुलु हिकु नैतिक कर्तव्य बि आहे, ॿियो इहो असांजो हाणे उद्देश्य बि आहे.
1: बिल्कुलु दिलीप जी, केरु बि युवा पत्रकारिता जे पेशे में अचणु थो चाहे त हुन खे शैक्षणिक योग्यता किथां वठणी खपे?
0: अगरि असां शैक्षणिक योग्यता जी ॻाल्हि कयूं तर ते जेके प्रमुख रूप सां कोर्स आहे उहो BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन. इहो कोर्स लॻभॻि पूरे देश में, विदेश में, ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटीज़ में हर जॻह करायो वेंदो आहे, त हिन सां हू पत्रकारिता जी शिक्षा ग्रहण करे सघनि था. ॿियो अगरि कोई ग्रेजुएट आहे त हू पोस्ट ग्रेजुएट स्तर ते उनमें MJMC कोर्स थींदो आहे, मास्टर ऑफ जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन, त उनजे माध्यम सां हू पत्रकारिता जी पढ़ाई करे सघनि था. इन अलावा काफ़ी

0: ग्रेजुएशन कोर्स बि थींदा आहिनि, तव्हांजा डिप्लोमा कोर्स बि थींदा आहिनि, एडवांस डिप्लोमा कोर्स थींदा आहिनि. त पत्रकारिता जेको आहे अॼु शैक्षणिक रूप सां ॾाढो वॾो अकादमिक क्षेत्र थी वियो आहे. ॿियो हिन में रोज़गार जी बि अपार संभावना आहिनि. सरकारी स्तर ते बि काफ़ी सुठा संस्थान, ॿियो जेके बि महानगर आहिनि उते बि आहिनि. इन अलावा अनेक असांजा कॉलेज, ॿियो यूनिवर्सिटी आहिनि जंहिंमें पत्रकारिता जी पढ़ाई कराई वेंदी आहे. इन सां नई टई पत्रकारिता जे क्षेत्र में कदम रखी सघे.
1: जी दिलीप जी, तव्हां इहा ॼाण त असांखे ॾिनी की शैक्षणिक योग्यता केतिरी खपे युवाउनि खे. जेको युवा अगरि पत्रकारिता करे वरिती आहे त हू कीअं हिन में अॻियां वधी थो सघे ऐं हुनखे छा करणु घुरिजे?
0: बिल्कुलु, पत्रकारिता जा जेके असां हींअर कोर्स जी चर्चा कई त केर नई टई इहे कोर्स करण खां पोइ ई जेके युवा आहिनि उहे समाचार पत्र, पत्रिकाउनि, न्यूज़ चैनल, ॿियो घणेई मीडिया संस्थाऊं आहिनि उन्हनि में रोज़गार जा उन्हनि खे अवसर मिलंदा आहिनि. फील्ड में हू रिपोर्टर जे रूप में, प्रेस फोटोग्राफर जे रूप में, एंकर जे रूप में, अगरि असां संपादकीय में ॾिसूं त संपादक, उप संपादक, कॉपी एडिटर, ॿियो कॉपी राइटर, एंकर, उद्घोषक, गॾो गॾु अॼुकल्ह जेके प्रोडक्शन आहिनि, जेके ऑडियो वीडियो, ॿियो सोशल मीडिया ते जेको प्रोडक्शन जो वर्क आहे उन में बि हू कमु करे सघनि था, जंहिंसां उन्हनि जे रोज़गार जो हिकु नयो आईंदो ठहींदो. गॾो गॾु हिन में असां ॾिसूं था की हिकु जनसंपर्क यानी की पी आर जो क्षेत्र बि काफ़ी वॾो थींदो आहे, जंहिंमें सरकारी विभाग आहिनि, निगम आहिनि, कॉर्पोरेशन्स आहिनि, अनेक प्राइवेट संस्थाऊं आहिनि, उन में बि जनसंपर्क अधिकारी आहे, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी आहे, त इन तौर ते बि हू नौकरी करे सघनि था. गॾो गॾु हिकु वॾी हिन में अवसर ॿियो आहे की अॼुकल्ह जेके CBSE स्कूल आहिनि उन में बि मास मीडिया हिकु विषय जे रूप में पढ़ाईंदा आहिनि. त तव्हां शिक्षा जे क्षेत्र में बि हिन में काफ़ी अवसर आहिनि. इन अलावा सरकारी स्तर ते बि PRO वग़ैरह जी वैकेंसी निकिरे थी, उन लाइ बि तव्हां प्रयास करे सघो था. जेकी नई टई आहे उहो इन जे माध्यम सां सरकारी नौकरी बि प्राप्त करे सघनि था.
1: जी बिल्कुलु दिलीप जी, तव्हां चङी सुठी ॼाण ॾिनी ऐं ज़रूरु असांजा युवा इन अवसर जो लाभ खणंदा ऐं अॻियां वधंदा ई. त दिलीप जी, चित्रेश जी, तव्हां अॼु असां सां गॾु स्टूडियो में आया ऐं तव्हां एतिरी सुठी ॼाण असांजे युवाउनि खे ॾिनी, त तव्हांजो ख़ूब धन्यवाद आहे.
2: तव्हांजो शुक्राणो.
0: तव्हांजो शुक्रो.
3: नई रोशनी, नवा वीचार. युवा साथियुनि जे हिन प्रोग्राम में तव्हीं ॿुधी रहिया हुआ ही ॻाल्हि ॿोल. हाणे तव्हीं ॿुधंदा फिल्म अम्मी या मम्मीअ जो ही गीत, ॻाईंदड़ कलाकार आशा भोसले.

0: तमि बुधी रहा वा आशा भोसले जो गातल फिल्म अम्मीया मम्मीय जो ही गीत
1: सिंध जी सुरहान ए हिंद जी नवान सिंधियन जी शान बुधंदा रहो आकाशवाणी ता सिंधी प्रोग्राम
2: जी हां श्रोताओं हमारे केंद्र से सिंधी कार्यक्रम आप सुनते हैं मंगलवार
3: गुरुवार
4: और रविवार जी
1: पहंजे माजी सागर हे न वक्त खेब सराहिंदासी पहंजी पहचान मुजिब कणमा मन ठाहिंदासी सबनी सिंधियन जे दिल जी आवाज बुधाइंदासी बुधंदा रहो पहंजो सिंधी प्रोग्राम
2: सुनना न भूलिए मंगलवार
3: गुरुवार
4: और रविवार जे
1: सिंधी प्रोग्राम
0: हाणे प्रोग्राम में चर्चा करी रहा हूं आज जी डीएं ते आज माना 7 जून ते मल्हायो वेंदो आहे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ही डी मल्हायो वेंदो आहे असां जी जाण के वधाइण लाइ ताकि सुरक्षित भोजन जे महत्व के आई खाद्य जनित रोगन जी रोकथाम जे बारे में असा जान वठी सकूं खाद्य सुरक्षा ही सुनिश्चित कंदो आहे खाद्य श्रृंखला जे हर चरण में भोजन सुरक्षित रहे उत्पादन खां वठी कटाई ताणी भंडारण विरायण ऐं इस्तेमाल करण ताई भोजन जी सुरक्षा ठही पई हुजे छा कारण कि असुरक्षित भोजन मानव स्वास्थ्य ऐं अर्थव्यवस्थाउनि जे लाइ हिकु खतरो आहे हिन करे हिन ॾींहं जे पारां खाद्य में थियण वारे जोखिमनि जी रोकथाम पहचान ऐं प्रबंधन में सहायता मिलंदी आहे मानव स्वास्थ्य आर्थिक समृद्धि कृषि बाजार पर्यटन ऐं विकास में योगदान मिलंदो आहे छा कारण कि खाद्य जनित बीमारियूं अक्सर जीवाणु विषाणु परजीवी या रासायनिक पदार्थन जे कारण थींदियूं आहिनि ऐं ही मानव जे स्वास्थ्य जे लाइ अदृश्य खतरा आहिनि ऐं असुरक्षित भोजन जो सभिनि खां वधीक प्रभाव पवंदो आहे नंढे ॿारनि ते हर साल 5 सालनि जी उमिरि खां घटि जा 1.5 लख ॿार मौत जा शिकार थी वेंदा आहिनि त सरकार सां गॾोगॾु असां सभिनी जी बि हीअ ज़िमेवारी आहे कि असां खाद्य

सुरक्षा जो ध्यान रखूं ताकि असा भी आई असा जी अचण वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे छाकरण की स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन जो वास हुंदो आहे आई देश जे विकास में भी एक स्वस्थ आबादी ही पांजो सुठो योगदान दई थी सगे आई देश के अग्या वधाए थी सगे त अचो ही संकल्प वठूं कि असा पंहिंजे खाइण में कम अचण वारी हर शइ जी सुरक्षा जो ध्यान रखूं इन करे ये विशेष ॾींहं मल्हाया वेंदा आहिनि हिन ॾींहुं विशेष ॾींहं में हिकु ॾींहुं आहे विश्व महासागर दिवस जेको 8 जून ते पूरी दुनिया में मल्हायो वेंदो आहे महासागर जे महत्व खे समुझण लाइ हुननि खां मिलण वारे संसाधन जलवायु संतुलन महासागर जे तंत्र खे प्लास्टिक ऐं प्रदूषण सां बचाइण जे प्रति सॼी दुनिया में ॼाण वधाई वेंदी आहे संयुक्त राष्ट्र महासभा 2008 में हिन खे आधिकारिक मान्यता प्रदान कई ऐं पहिरियों आधिकारिक विश्व महासागर ॾींहुं 8 जून 2009 ते मल्हायो वियो हिन धरतीअ जी लॻभॻि अधु ऑक्सीजन जो उत्पादन महासागर ई कंदा आहिनि भोजन ऐं दवाउनि जा प्रमुख स्त्रोत आहिनि जलवायु खे नियंत्रित करण में ही पंहिंजी अहम भूमिका निभाईंदा आहिनि इन करे ही जीवन जा आधार आहिनि महासागरनि में धरतीअ जी विशाल काय ऐं सभिनि खां नंढी प्रजातियूं रहंदियूं आहिनि महासागर ऐं समुद्री तटनि खे बचाइण में ही ॾींहुं पंहिंजो योगदान ॾींदो आहे तंहिंखां सवाइ ॼाण बि वधाईंदो आहे असांजे युवा साथियुनि जे लाइ हिकु पैगाम आहे कि असां पंहिंजे हिन धरती ते ॾिनल हिननि सागरनि जी धरती जी पर्यावरण जी रखिया कयूं 8 जून ते ही मल्हायो वेंदो आहे विश्व मस्तिष्क ट्यूमर ॾींहुं हिन ॾींहं जो बि उद्देश्य आहे ब्रेन ट्यूमर जे लक्षणनि जोखिमनि ऐं हुन जे चिकित्सा महत्व जे बारे में सभिनी खे शिक्षित करणु ऐं ॼाण ॾियणु जीअं कि बार बार मथे जो सूर थियणु हानि रहित लॻंदो आहे पाण हुन ते ध्यानु न ॾींदा आहियूं हिन खे पाण तनाव कमज़ोरी निंड जी कमी या माइग्रेन समुझंदा आहियूं पर कई बार हीअ लापरवाही असांखे भारी पइजी वेंदी आहे मथे में सूर थियणु सुबुह जो उल्टी अचणु अचानक दौरा पाइणु या याददाश्त घटि थियणु ब्रेन ट्यूमर जा लक्षण थी था सघनि पर हिन जी ॼाण अगरि जल्दी मिली वञे त हिन जो शीघ्र निदान थी थो सघे ऐं हिन जो पुख़्तो इलाज बि आहे त अगरि ही लक्षण हुजनि त हिननि खे मामूली न समुझजे जल्दी ही हिन जी जांच कराइणी खपे ऐं इलाज वठणो खपे त प्रोग्राम में हाणे असांजा युवा साथी ॿुधंदा राति हिकु तूफ़ान जी फिल्म जो ही गीत

तमी बुधी रहा हुआ रात हिक तूफान जी फिल्म जो ही गीत हिन गीत सा गदी असा जो अज जो नई रोशनी नवा विचार प्रोग्राम सा गडोगड सिंधी प्रोग्राम जो वक्त भी थी रहा है पूरो ईंदड़ मंगल ते वरी हाजिर थींदासी तेसी ताई सीमा हिरानिया के दींदा इजाजत नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के ठीक 12:40 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुराने सदाबहार गीतों का एक बेहतरीन गुलदस्ता, और शुरुआत करते हैं एक अलग ही फ्रिक्वेंसी की आवाज़, यानी कि तलत महमूद साहब की आवाज़ के साथ। फिल्म का नाम है जहां आरा, और इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत मदन मोहन का है। मैं तेरी नज़र का सुरूर हूँ।

सदाबहार गीतों के सुहाने सफ़र में अब वक्त हो चला है हमारी आज की दूसरी सुरीली पेशकश का। वक्त की धूल के पीछे छुपे ये नगमे जब भी कानों में पड़ते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून तो देते ही हैं। श्रोताओं, सुरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहले चंद लाइनें, वो मुलाकातें, वो बातें और वो बीते हुए कल, यादों के झरोकों से बहते हैं उनके सुनहरे पल। वक्त भले ही बदल जाए इस दुनिया का, मगर पुराने तरानों का जादू रहता है हमेशा अचल अचल। तो आइए दोस्तों, सीधे ले चलते हैं आपको साल 1963 के उस दौर में और सुनते हैं फिल्म अकेली मत जाइयो का ये बेहद मुकम्मल नगमा। संगीत के बादशाह मदन मोहन साहब की तैयार की हुई एक बेहतरीन लाजवाब धुन, जिसे स्वर को की लता मंगेशकर ने अपने पावन और मखमली आवाज़ से हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है इस गीत को। तो सुनते हैं बेहतरीन गीत, वो जो मिलते थे कभी।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: धीर गंभीर गीतों के बाद अब थोड़ा सा चंचल गीत सुना देते हैं आपको, माहौल बदल देते हैं। दोस्तों सीधे चलते हैं साल 1956 की उस कल्ट क्लासिक और ब्लॉकबस्टर फिल्म CID के सफर पर। हिंदी सिनेमा के सबसे चुलबुले और रोमांटिक गीतों में शुमार इस नगमे को संगीत से सजाया है ओपी नैयर साहब ने। जानिसार अख्तर साहब के लिखे इस गीत को अपनी जादुई आवाज़ों से अमर बना दिया मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की सदाबहार जोड़ी ने, और देवानंद शकीला पर फिल्माया बेहद खुशनुमा बहुत ही एवरग्रीन गीत आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, पहले चंद लाइनें हमारी ओर से भी कि दिल की बात छुपाए नहीं छुपती, आंखों से बयां हो ही जाती है। मोहब्बत की वो पहली धड़कन हर धड़कन को महका जाती है, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने। जब दो दिल आपस में मिलते हैं तो खामोशी भी सुरों का एक नया साज सजा जाती है। तो सुनते हैं आँखों ही आँखों में इशारा हो गया।

तो दोस्तों आप रुख करते हैं 1965 साल की फिल्म तीन देवियाँ की ओर। ये सदाबहार सफर जारी है पर आखिरी पड़ाव पर है, कोई बात नहीं। एवरग्रीन स्टार देवानंद और नंदा पर फिल्माई इस बेहतरीन जिंदा दिल नगमे को संगीत से सजाया RSD बर्मन ने और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे बहुत ही खूबसूरत शब्दों में पिरोया है, अपनी मखमली आवाज़ और मस्ती भरे अंदाज में इसे गाया है किशोर कुमार और सुरों की मल्लिक आशा भोंसले ने। तो सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत, पर चंद लाइनें हमारी ओर से भी। दिल की महफिल में जब कोई गज़ब ढाता है तो धड़कनों का लताराना जो है वो और भी सुहाना हो जाता है। तो प्यार की इस तकरार में छुपा है जो गहरा इकरार, वही तो ज़िंदगी को जीने का असली मजा सिखाता है। तो सुनते हैं, अरे यार मेरी तुम भी हो गज़ब, घूंघट तो ज़रा उड़िए।

0: मशहूर हो।
1: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये सुहाना सफर यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के बजने को हैं एक और अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया संदेश में सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेने को कहा है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान समुद्री यातायात में गंभीर व्यवधान के बावजूद भारत होर्मुज जलडमरू मध्य से ऊर्जा माल की आवाजाही जारी रखने में सफल रहा। मंत्रालय के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और एलपीजी की बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। इस बीच घरेलू रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख है। बोर्ड के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इस बीच सरकार की

0: से नीट यूजी परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही प्रश्न पत्र लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी तरह के संदेश पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख करते हुए श्री मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कोटपुतली में पुलिस कर्मियों ने साइकिल रैली निकाली। इसके बाद पुलिस लाइन मैदान में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। सवाई माधोपुर में दशहरा मैदान से सर्किट हाउस तक साइकिल रैली में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौसम विभाग ने आज राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राजधानी जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में तेज हवा के साथ बरसात हो सकती है। इस बीच पश्चिमी जिले एक बार फिर तेज गर्मी की चपेट में हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर सहित कई अन्य स्थानों पर दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक तापमान बढ़ने और गर्मी का असर बने रहने की संभावना जताई है। बीकानेर में होने वाले खेलो बीकानेर यूथ गेम्स 3.0 के लिए खिलाड़ियों के पंजीयन शुरू हो गए हैं। इसके लिए 25 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। गेम्स में 15 से अधिक खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें टीम और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की स्पर्धाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति है बिंदु शर्मा और किरण शर्मा की।

0: नमस्कार सखियों। सखियों आज आपके साथ है आपकी अपनी दो सखियां, मैं किरण शर्मा और
1: मैं बिंदु शर्मा।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: सखियों कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी। और आप अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी, खुश, प्रसन्न होंगी और लुत्फ उठा रही होंगी माँ के हाथ के खाने का क्योंकि एक साल के इंतजार के बाद फिर से आ चुकी है गर्मी की छुट्टियाँ और इन छुट्टियों में इंतजार कर रहा होता है आपके पीहर का वो प्यारा सांगना और माँ पिताजी की प्यारी सी बाहें और पलक बिछाए नेत्र, जिस सुकर क्षणों को मन में संजोए रखती हुई फिर से पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाती है अपने ससुराल के आंगन को संभालने के लिए। क्यों है ना सही बिंदु?
1: बिल्कुल सही कहा, पीहर में

0: धूम मचाना, खेलना, खाना, सखी सहेलियों के साथ मिलना, साथ ही चाची ताई का प्यार दुलार सब कुछ हमने इतनी एनर्जी भर देता है। और इसके साथ ही बहुत सारी सखियां गई होंगी अपने सपनों की सैर के लिए, घूमने के लिए पहाड़ों में, वादियों में, झरनों में, नदियों में आनंद लेने के लिए और किसी बीच पर, है ना? यही तो है छुट्टियां।
1: ये दिन होते ही सुहाने हैं बिंदु जी, पर हाँ इन घूमने में आप अपने खान पान की तो जो स्वच्छता है, पौष्टिकता है, उसका ख्याल रख रही हैं या नहीं? क्योंकि बाहर का खाना कहीं आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसके लिए ख्याल रखें अपने खान पान का। और हाँ, खान पान से संबंधित और भी बहुत सी बातें करेंगे हम कार्यक्रम में,
0: क्योंकि कहते हैं ना, संगठन गढ़े चले, सुपथ पर बढ़े चले, भला हो जिसमें मानव का वो काम सब किए चले, युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख ले, कारवा चलता रहे, मसालियों जलती रहे। सखियों, हमारा भी तो एक संगठन है ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी बहनें जो सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करने वाली हैं, जज्बा और हिम्मत उसकी शक्ति को प्रणाम है वास्तव में। किरण जी,
1: बिल्कुल सच कहा बिंदु जी आपने। और हाँ बिंदु जी, जब हमने बात की पीहर की, तो पीहर में हमारा रंग कुछ अलग ही होता है नहीं, तो क्यों नहीं ऐसा ही कोई गीत सुना दिया जाए अपनी सखियों को।
0: बिल्कुल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बिंदु जी, जब हमने बात की पीहर में बिताए जाने वाले यादगार पलों की और माँ के हाथ के स्वादिष्ट खाने की, तो उसकी तो बात ही निराली है। माँ के हाथ से बने व्यंजनों में माँ के स्नेह की मिठास तो घुली होती ही है, साथ ही भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता का ख्याल भी तो माँ कितने अच्छे से रखती है ना?
1: बिल्कुल, माँ तो ख्याल रखती ही है, पर हमने बुजुर्गों से कहते हुए भी ये भी सुना है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूंगी कि सिर्फ मन ही नहीं होता, जैसा खाए अन्न वैसा होता है तन।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हाँ,
0: क्योंकि पौष्टिक आहार हमें फिट रखता है, नहीं?
1: ये तो है ही। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब आप अन्न जैसा खाओगे पोषण भी वैसा ही होगा, और पोषण जैसा होगा उसी के हिसाब से आपके मन की स्थिति बनेगी। तो स्वस्थ रहोगे तब ही मन की स्थिति ठीक रहेगी, बीमार होगी तो मन भी ठीक नहीं रहेगा।
0: बिल्कुल, तभी तो बिंदु जी हमारी जो माँ है ना, वो हमेशा हमें ताजी रोटी और ताजे व्यंजन ही परोसती है, ताकि हम हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहें। माँ भले ही कितनी ही थकी हुई हो, पर कभी भी भोजन के मामले में लापरवाही नहीं बरतती है ना?
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भोजन ही तो है जिससे हमारी कार्य क्षमता को सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। अर्थात खाने की शुद्धता बहुत जरूरी है, सारा काम तो उसी पर टिका है। और शायद हमारे बुजुर्ग तभी तो हर जगह खाना नहीं खाते थे, अपने साथ अपने घर का बना हुआ खाना लेकर जाते थे। खाने के तो छोड़ो, वो कहीं पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि वो शुद्धता का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, है ना? उन्हें कहीं दूर बाहर का खाना ही पसंद नहीं आता था, घर का भले ही रूखा सूखा ही हो।
0: बिल्कुल, और मैं बिंदु जी फिर से माँ पर आऊंगी क्योंकि माँ खुद हाथ से पूरी शुद्धता के साथ तो परोसती ही थी। साथ ही कभी बचपन में जब हमें कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती और हम खाने में आनाकानी करते या फिर ठंडा बासी खाने की जिद करते, तो कभी नहीं खाने देती, बल्कि झटपट हमारी पसंद की सब्जी, रायता, हलवा आदि बहुत कुछ बनाकर परोस देती है ना।
1: लेकिन आजकल तो इससे एकदम उल्टा हो गया है, क्योंकि ये ना बाहर का लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और बहनें सोचती है कि बाहर खाना खा लेते हैं तो घर भी बनाना नहीं पड़ेगा, इसके बहाने घूम भी आएंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, है ना? आजकल हर गली मोहल्ले के बाहर एक फास्ट फूड की दुकानें मिल जाएगी, आराम से देर रात तक खुली रहती है, और अब तो हमारा शेड्यूल ही ऐसा हो गया है ना।
0: बिल्कुल, पहले के समय में माएँ आहार की शुद्धता को बरकरार रखने में पूरा समय देती, ना कि अभी की तरह डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ काम में लिए जाते सिर्फ झटपट कार्य पूर्ण करने के लिए, है ना? और पहले के समय में खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता था, पर सिर्फ प्राकृतिक तरीकों से, बिना रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के, जैसे धूप में सुखाकर, नमक का प्रयोग करके, अचार बनाकर, चीनी गुड़ का प्रयोग करके या राख का प्रयोग करके, मिट्टी और धातु के बर्तनों में बंद करके या फिर ठंडी हवादार जगहों में रखकर, टाट आदि को भिगोकर उसमें रखा जाता था, नहीं?
1: बिल्कुल सही कह रही हो किरण, पहले लोग ऐसे करते थे, लेकिन आजकल तो खाने का तो शेड्यूल जो बदला वो बदल ही गया, रखने का शेड्यूल बदल गया। अब ताज़ा और हर जगह उपलब्ध भी हो जाता है, लेकिन आपको पता है हम जैसे शादियों में जाते हैं, कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं, एक बार तो हम किसी शादी में गए थे और वहाँ पर मतलब 3-4 शादियाँ थी परिवार में, हम वहाँ गए और जो मतलब हमने भोजन वहाँ नहीं किया, लेकिन सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा तो पता चला कि उस परिवार में जो शादी थी वो सब के सब हॉस्पिटल एडमिट है, क्योंकि उनका जो खाना था वो मतलब वो ऐसे हो गया था।

0: खराब था, इस वजह से उनको फूड पॉइजन हो गया और वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए। तो मतलब इतना ध्यान रखने के बाद भी आजकल इस तरह की स्थिति है, जो खाना है वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कि शादियों में बहुत से व्यंजन बनते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि कौन से व्यंजन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि जो एक साथ खाने से अवगुण भी कर सकते हैं।
0: वहीं खड़े हम आइसक्रीम खा रहे हैं, वहीं हम जूस पी रहे हैं, वहीं
1: तो ये दो एंड जो अपोजिट चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फूड पॉइजन का कार्य करती है। इसीलिए तो बिंदु जी, आज का जो दिवस है ना, वो हमें ऐसे तरीकों को अपनाने और पौष्टिक भोजन के महत्व की ओर जागरूक करने के उद्देश्य के लिए ही मनाया जाता है।
0: जी हाँ, आज है 7 जून यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो हमें बताता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, जीभ का और मुंह का कोई ऐसा स्वाद का माध्यम नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। ये हमारा आज का ये जो दिन है वो यही कहता है, अगर भोजन दूषित है, असुरक्षित है, तो इससे अनेक बीमारियाँ फैल सकती है। तो हमें खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और गुणवत्ता का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिंदु जी, इसके लिए भोजन या अन्य उत्पादन से लेकर किसान, खाद्य उद्योग, दुकानदार और उपभोक्ताओं सभी की जिम्मेदारी है कि भोजन सुरक्षित रहे। इसके लिए कम से कम छोटी छोटी बातों का तो हम ख्याल रख सकते हैं, जैसे भोजन बनाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोएं, फल और सब्जियों को साफ पानी में धोकर उपयोग करें, भोजन को ढककर रखें, बासी और खराब भोजन का सेवन न करें। नहीं,
0: बिल्कुल, पानी भी की भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि बहनों अगर हम इन सब चीज़ों को ठीक है, खाना कैसा स्वस्थ ढंग से बनाए, सामान अच्छा हो, ये सब बातें ठीक है, लेकिन अगर पानी दूषित है तो सारा हमारा करा धरा वैसा का वैसा रह गया, है ना?
1: बिल्कुल बिंदु जी। और हाँ, जब हमने बात की खाद्य पदार्थों की, खाने की, तो इस पर तो गाने भी बहुत से बने हुए हैं और व्यंग्य भी, तो क्यों नहीं ऐसा ही गाना हम अपनी सखियों को सुना दें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में। आकाश

0: आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: सखियों, हमने बात की खान पान की, तो अभी चल रहा है गर्मी का मौसम, और इस गर्मी के मौसम में हमें कौन कौन सी बातें खान पान से संबंधित ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो इस विषय पर हम सुनते हैं वार्ता, जिसका विषय है गर्मियों में खान पान। वार्ताकार है पूनम गर्ग।
3: आजकल गर्मियों का मौसम है, इस मौसम में सेहत का अच्छी तरह ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो गर्मी के मौसम में लू लगना, उल्टी, दस्त, चक्कर आना जैसी समस्याएं आम होती हैं। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए कई सावधानियां अपनानी पड़ती हैं, जैसे धूप में सर ढककर निकलना, पसीने में ठंडा पानी ना पीना आदि। लेकिन इन सब सावधानियों के साथ खान पान में सावधानी बरतना भी बहुत आवश्यक है। हमारा खान पान भी हमारे स्वास्थ्य पर अच्छे बुरे कई तरह के प्रभाव डालता है। गर्मियों में हमारा खान पान बहुत ही सादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाना चाहिए। इसके खाने से सीने में जलन होने लगती है और इस खाने को पचाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तेज मिर्च मसाले वाले खाने को पचाने के लिए शरीर को बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, और यह खाना पाचन तंत्र को भी बहुत ख़राब करता है। गर्मियों में ज़्यादा तेल वाले और तले हुए खाने से भी परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा तेल वाला और ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना शरीर में अपच की समस्या को बढ़ाता है। गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे में शरीर से पानी निकलता रहता है और शरीर दुर्बल महसूस करता है। तले भुने और तेल वाले खाने से शरीर को पौष्टिक तत्व कम मिलते हैं, परंतु इस खाने को पचाने के लिए शरीर को ऊर्जा ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, अतः शरीर कमज़ोर महसूस करता है। गर्मियों में सबसे उत्तम और जीवनदायी पदार्थ है पानी। पानी गर्मियों में अमृत के समान है, इस मौसम में अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर का 70% भाग पानी है। गर्मियों में पसीने द्वारा पानी शरीर का पानी निकलता रहता है, इससे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं। इस समस्या का सबसे आसान समाधान है पानी पीना। हमें दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे हमारे शरीर की पानी की कमी पूरी होती है और हमारे शरीर में ज़रूरी खनिजों का संतुलन बना रहता है। किंतु कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी पीने से पानी की पूर्ति नहीं होती। इन पेय पदार्थों को शरीर में पचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये हमारे शरीर को ज़रूरी तरल नहीं देते, बल्कि उसमें से पानी लेकर उसे और ज़्यादा डिहाइड्रेट करते हैं। अतः तरल पेय में छाछ, लस्सी, जूस आदि तो शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक नहीं किए जा सकते। पानी भी फ्रिज का इस्तेमाल करने की बजाय मटके का ही पानी पीना चाहिए। मटके में पानी भरकर इसके नीचे खस की घास रख दें और मटके पर मलमल का कपड़ा लपेट दें। इससे पानी अच्छा ठंडा तो होता ही है, यह शरीर के लिए भी उत्तम है। मनुष्य द्वारा अपनाया गया यह पानी ठंडा करने का प्राचीन तरीका है। हमने तो फ्रिज की खोज से बहुत पहले ही पानी ठंडा करना सीख लिया था। मटके में बारीक छेद होते हैं जो पानी को ठंडा करने में सहायता करते हैं, और साथ ही मटके के पानी में खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जब हम अधिक मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकलती रहती है और शरीर के अंदर के विषैले तत्व कम होते रहते हैं। शरीर से विषैले तत्व और अनावश्यक अम्लों का निकलना शरीर के स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। घड़े के नीचे खस की घास रखने से पानी में हल्की खुशबू आ जाती है। खस में ताजगी देने का गुण होता है। इस पानी को पीने से हमें ताजगी का एहसास होता है और हम तृप्त महसूस करते हैं। दूसरा, गर्मियों के आहार में जो पदार्थ अमृत समान है वह है दही। यदि गर्मियों में किसी को कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या हो तो उसे दही ज़रूर हर रोज़ अपने खाने में शामिल करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि दही घर पर ही ताज़े दूध से जमाया जाए। घर पर जमे ताज़े दही में पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन बी 12 अधिक मात्रा में

होते हैं। जब हम दूध से दही बनाते हैं तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दही खाने से हमारी आंतें मजबूत बनती हैं और शरीर में एसिडिटी और कब्ज नहीं होते। शरीर के लिए दही और चावल इकट्ठे खाना उत्तम माना गया है। गर्मियों में गुलकंद खाना भी बहुत लाभदायक होता है। यह गुलाब की पत्तियों और चीनी से बनाया जाता है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। गुलकंद खाने से चेहरा साफ रहता है और त्वचा भी ताजगी भरी और चमकदार रहती है। गुलकंद सुबह सुबह एक चम्मच खाना बहुत लाभदायक होता है, अथवा दोपहर और रात के खाने के साथ आधा आधा चम्मच भी खा सकते हैं। गुलकंद भी हमारे रसोई घर का एक रत्न है, जो कि गर्मियों में बहुत उपयोगी है। एक और चीज़ है कोकुम। यह अधिकतर पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, जैसे सब्जी में करी की तरह, शरबत की तरह, अथवा एक फल की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। इसे इन क्षेत्रों में अमृत फल का नाम दिया गया है। यह गर्मियों में हमारे मुंह और पेट में अल्सर नहीं होने देता। इसके अतिरिक्त यह मोटापे को कम करता है और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी कारगर है। यह गर्मियों के लिए बहुत ही उपयोगी खाद्य पदार्थ है। गर्मियों में हम सब्जा को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। यह हमारे शरीर को ठंडक और ताजगी देता है। हमारे घरों में सब्जा के बीजों को फलूदा, छाछ, खीर आदि के ऊपर डाला जाता है। यह तुरंत ताजगी देने वाले होते हैं तथा हमारे शरीर से अतिरिक्त अम्लों और गंदगी को बाहर निकाल देते हैं, अर्थात हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में सहायक हैं और कब्ज भी नहीं होने देते। तथा सब्जा वजन कम करने में भी मदद करते हैं। हम भीगे हुए सब्जा के बीजों को पानी के साथ भी ले सकते हैं। आम फलों का राजा होता है। यह गर्मियों के मौसम में मिलता है। आम बहुत ही उपयोगी फल है। यह हमारे पाचन तंत्र की सफाई कर देता है और ताजगी देता है। किंतु आम खाने से पहले उसे 20 से 30 मिनट तक पानी में अवश्य ही भिगो लेना चाहिए। आम को दूध में मिलाकर आमरस की तरह भी लिया जा सकता है। यह शरीर को ठंडक देता है। नारियल पानी भी बहुत पौष्टिक होता है। यह गर्मियों में अमृत के समान है। यह न केवल हमारी प्यास बुझाने के काम आता है, बल्कि इसमें पोटेशियम और सोडियम का सही संतुलन होता है, जिससे कि हमारी त्वचा चमकदार बनती है। यह हमारे शरीर की पानी की कमी पूरी करता है, जरूरी पौष्टिक तत्व देता है तथा सिरदर्द आदि की स्थिति में भी बहुत फायदेमंद है। गर्मियों के लिए एक और उत्तम पदार्थ है, जो कि हर रसोई घर में पाया जाता है, और वह है जीरा। इसे हम अपनी खाद्य सामग्री के साथ उपयोग कर सकते हैं। यह हमारे पाचन तंत्र की सफाई करता है। जीरे को थोड़ा सा भूनकर उसका पाउडर बना लें और इसमें कुछ मात्रा में काला नमक और काली मिर्च पाउडर मिला लें। इस मिश्रण को आप अपने छाछ, दही आदि चीज़ों में मिलाकर ले सकते हैं। यह हमारे शरीर को ठंडक देता है। पुदीना भी ठंडक देता है। हम पुदीने को पीसकर इसमें पानी और काला नमक मिलाकर शरबत की तरह पी सकते हैं, या फिर पुदीने को सुखाकर जीरे के पाउडर में मिलाकर रख लें और जिस भी चीज़ में मिलाकर खाना चाहें उसमें उपयोग करें। गर्मियों में नींबू भी बहुत फ़ायदेमंद है। हो सके तो रोज़ एक नींबू का रस पानी में मिलाकर अवश्य लें। यह हमारे शरीर को विटामिन सी देता है, साथ ही पानी की कमी भी नहीं होने देता। रोज़ एक नींबू लेने से गर्मियों में गर्मी के कारण चक्कर आने की समस्या परेशान नहीं करती। पेय पदार्थों में बील भी गर्मियों के लिए उत्तम है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। बील के गूदे को पानी में भिगोकर 2 घंटे के लिए रख दें, फिर हाथों से मसलकर इसके धागे अलग कर दें। अब बील के एक घोल, गाढ़े घोल को चाहें तो शरबत बनाकर उपयोग कर सकते हैं और चाहें तो दूध में मिलाकर बील का शेक भी बना सकते हैं। बील के शरबत में यदि थोड़ा नींबू और जीरे वाला पाउडर मिला दिया जाए तो इसकी पौष्टिकता और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। इस मौसम में कैरी का पन्ना, इमली का पन्ना आदि भी उपयोग किया जा सकता है। यह शरीर को बहुत ठंडक देता है। एक ऐसा अनाज है जो कि पुराने समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वह है ज्वार। गर्मियों में यह भी अमृत के समान है। यह अनाज शरीर को ठंडक देता है। ज्वार में विटामिन बी, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह अनाज वजन कम करने में बहुत उपयोगी है तथा दिमाग को भी तेज करता है, इसलिए इसे ब्रेन फूड भी कहते हैं। ज्वार को रोटी के रूप में और भाकरी बनाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। गर्मियों में बहुत से खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ताजगी और ठंडक देते हैं, परंतु इन सब के बाद भी सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हम इस मौसम में जो भी खाएं वह ताज़ा हो। बासी खाना गर्मी में बहुत जल्दी खराब हो जाता है और उसमें जल्दी ही बैक्टीरिया पनपने लग जाते। देर का बना हुआ खाना खाने लायक

0: नहीं रहता, अतः खाना ताज़ा बनाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। मौसमी फल और सब्जियों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। ज़रूरी नहीं कि महंगे फल ही शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आजकल मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि की भरमार है। ये फल मौसमी हैं, इसलिए ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं और ताज़े होते हैं। बेमौसमी फल और सब्जियां उपयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन्हें दवाइयों से पकाया जाता है। अंत में यही कहूँगी कि गर्मियों में स्वस्थ रहने का राज केवल इतना ही है कि पानी खूब पिए, मौसमी फल सब्जियां उपयोग करें और ताज़ा खाना खाएं।
1: सखियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, वार्ताकार थी पूनम गर्ग। विषय था गर्मियों में खान पान, और अब समय हो चला है आपके लिए प्यारे से गीत का।
2: ये रातें, ये मौसम।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है।

0: रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: बिंदु जी, जब हमने बात की आहार की तो पौष्टिक आहार को लेकर हमारी रणनीति शुरू हो जाती है सुबह की पहली किरण के साथ, क्योंकि वो वक्त होता है बच्चों के स्कूल टिफिन तैयार करने का और बच्चों की फरमाइश होती है कि टिफिन में कुछ अच्छा होना चाहिए, है ना। और हमारी चिंता ये होती है कि ऐसा क्या बनाए जो शुद्ध पौष्टिक हो और हेल्दी भी हो और बच्चों को भी पसंद आ जाए, नहीं?
1: हाँ किरण, ये बात तो सही है। हमारी सखियों को भी ये बात तो बहुत अच्छी लगती होगी कि खाना तो संतुलित होना ही चाहिए, साथ में जल्दी बनने वाला चाहिए ताकि हम भी स्वस्थ रहें, बच्चे भी स्वस्थ रहें। और सबसे ज़्यादा चिंता तब होती है जब बात बुजुर्गों की और बच्चों की आती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो बहुत पावरफुल नहीं होता है। बुजुर्ग घर में होते हैं तो हम संभाल भी लेते हैं, कुछ भी कभी भी कुछ भी कहे तो हम बना कर दे सकते हैं, पर बच्चे जो बाहर जाते हैं टिफिन ले जाना होता है उनको, तो फिर अब ऐसा क्या डालें।

0: क्योंकि स्कूल भी अब खुलने वाले ही हैं, है ना, तो टिफिन की प्रॉब्लम तो शुरू हो ही जाती है। पर हमारी बहनों के लिए दिक्कत ही क्या है भाई, वो भारतीय महिलाएं हैं, परफेक्ट है रसोई में, क्योंकि रोज रोज सुबह नया बनाकर डालना उनकी आदत हो गई है। जैसे पालक पराठा, मेथी पराठा, ओट्स, बेसन के चीले, सूजी के चीले, इडली, चावल पुलाव, उपमा, पोहा, प्याज पराठा, आलू पराठा, न जाने कितने और व्यंजन। पहले रात को ही तैयारी में लग जाती है कि सुबह क्या बनाकर डालना है बच्चों को, है ना। वैसे किरण, हमारी मम्मी जो थी ना, वो तो ऐसे मतलब चावल में ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर मीठे वो भी बना के देती थी, और मीठे में सूजी का हलवा, कभी बेसन के लड्डू, बेसन के चक्की, ये सब भी बना कर रखती थी, और ये जो अपने खोआ होता है ना, उसका, उसकी भी वो बनाकर रख, मिठाई बनाकर रखती थी, ताकि हमारी उसमें टिफिन में एक एक पीस वो भी डाल दिया करती थी, है ना। और जो दूध होता है उसका पनीर बनाकर, संदेश बनाकर भी मम्मी डालती थी टिफिन में। इस तरह हमारी मम्मी बहुत अच्छा टिफिन डालती थी, और जब मैं बच्चों का टिफिन डालती हूँ तो मुझे भी ये ध्यान रहता है कि मम्मी क्या डालती थी।
1: अच्छा सखियो, सुना आपने, बिंदु जी ने बहुत से व्यंजनों की लिस्ट आपको बता दी है, तो शायद आपकी चिंता बहुत कम हो गई होगी, कुछ तो कम हुई है, लेकिन हाँ और भी व्यंजन हम बता सकते हैं, ताकि जो स्कूल खुले तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, और जो बच्चे हैं उनको विविधता भी मिल जाए व्यंजनों में। और इसके लिए बहनों, बेसन का चीला जैसे बिंदु जी ने बताया, तो वो आप बना सकती हैं, या वेजिटेबल सैंडविच और पनीर या सोया रोल बनाकर भी आप बच्चों को दे सकती हैं। और बस हमें ध्यान रखना है कि हम आटा ब्रेड का सैंडविच न बनाएं, और जो रोटी है उसका सैंडविच भी हम बना सकते हैं, जिसमें हम वेजिटेबल डालकर, पनीर डालकर बनाएं, ताकि स्वाद चार गुना हो जाए और पौष्टिक भी हो। इसके साथ अंकुरित मूंग चना सलाद बनाकर टिफिन में डाल सकती हैं, बस उसको चटपटा बनाने के लिए टमाटर, मिर्च, खीरा डालें, और चाट मसाला, नमक, मिर्च, नींबू भी डाल दें, ताकि और अधिक स्वादिष्ट बन जाए।
0: बिल्कुल, इसके साथ वेजिटेबल पुलाव, बाजरा, ज्वार या रागी से भी बने पराठे या थेपले भी टिफिन में डाल सकते हैं। मौसमी फल जैसे सेब है, केला है, अमरूद है, पपीता, संतरा, अंगूर आदि भी हम वक्त पर, जैसे जैसे मौसम है उसके अकॉर्डिंग, हम अपने बच्चों के टिफिन में डाल सकते हैं।
1: बिल्कुल सखियो, भुने मखाने या सूखे मेवे, और जो भुना चना है वो, घर के बने तिल या मूंगफली के लड्डू भी पौष्टिक होते हैं, वो भी टिफिन में डाल सकती हैं। इसके साथ पेय पदार्थों में दही, छाछ, लस्सी या नींबू पानी भी जरूर डालें, क्योंकि गर्मी के मौसम में बच्चों की एनर्जी बूस्ट करने के लिए पेय पदार्थ बहुत जरूरी हैं।
0: बिल्कुल, बस ध्यान में ये रखना है कि तला भुना और जंक फूड ना हो। बच्चे रंग बिरंगा आकर्षक खाना पसंद करते हैं, और आप वैसा खाना बनाएं ताकि वो खुशी खुशी से खाएं और रहे स्वस्थ।
1: बिल्कुल, रंग बिरंगा टिफिन हो तैयार, स्वस्थ रहेगा हर बाल हर बार, है ना। और इसके साथ अब कीजिए आप अपना मनोरंजन इस गीत के साथ।

0: बिल्कुल सखियों, चलते चलते हम भी रुक कर आ जाते हैं अपने विषय पर, और विषय हमारा वही है भोजन की शुद्धता। ठीक है कि हम भोजन की शुद्धता व स्वच्छता का पूरा ख्याल रखेंगे, साथ ही बच्चों के टिफिन में भी विभिन्नता और पौष्टिकता बरकरार रखेंगे, लेकिन हमारी चिंता यहीं समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि हमारी चिंता ये भी है कि क्या बाजार से जो सूखी खाद्य सामग्री या मसाले जो लाते हैं वो बिना मिलावट के होते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हो किरण, मैं भी इसी चिंता में हूँ कि आजकल जो अधिकतर सामान है मिलावटी मिलता है। खबर सुनते ही मन बेचैन हो उठता है कि हम शुद्ध वस्तु प्राप्त करें तो कैसे करें, है ना, क्योंकि हर जगह कुछ भी मिलता है तो मिलावटी मिलता है। कैसे घर वालों को किस प्रकार स्वास्थ्य प्रदान करें अच्छा खाना, शुद्ध खाना देकर।
0: बिल्कुल सही कहा बिंदु जी आपने, अब तो बस हम इतना कर सकते हैं कि सामान शुद्ध है या नहीं इसकी जांच घर पर करना सीख लें, ताकि मिलावटखोरों की शिकायत भी दर्ज कर सकें और घर वालों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रह जाए। जैसे दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए दूध की एक बूंद चिकनी सतह पर डालें, शुद्ध दूध धीरे धीरे बहता है और सफ़ेद निशान छोड़ता है, और अगर पानी मिला है तो बूंद तेज़ी से बह जाती है।
1: हाँ किरण, एक बात और है कि अगर नमक की मिलावट है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। नमक को पानी में घोलने पर मिट्टी आदि नीचे रह जाती है और शुद्ध नमक घुल जाता है। इसी प्रकार जो लाल मिर्च का पाउडर है वो भी गिलास में पानी डाल देते हैं तो तुरंत फैल जाएगा और नीचे रेत जैसी चीज़ें बैठ जाएगी, मिलावट है तो बैठ ही जाएगी। इसी तरह काली मिर्च को भी हम पानी में डाल दें तो पपीते के बीज अगर उसमें मिले हैं तो फिर वो तैरने लगेगी, और जबकि असली जो काली मिर्च होगी वो सामान्यतः नीचे बैठ जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा बिंदु जी आपने, और शहद को अगर हमें पहचानना है कि शुद्ध है या नहीं तो उसके लिए शहद की बूंद पानी में डालें, शुद्ध शहद है वो देरी से घुलेगा जबकि मिलावटी जल्दी से घुल जाएगा। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता बहनों आप घर पर लगा सकती हैं कि वो शुद्ध है या नहीं, लेकिन अभी समय हो चला है मनोरंजन का, तो क्यों नहीं सुन लिया जाए एक प्यारा सा गीत।

0: सखियों, खान पान तो अच्छा करना ही करना है, इसके साथ ही कीजिए योग व्यायाम, पैदल चलिए। बातें तो बहुत सारी साझा करनी थी आपके साथ, पर समय इजाजत नहीं दे रहा। फिर मिलने के वादे के साथ आप आज्ञा दीजिए, आपकी अपनी रेडियो सखी बिंदु शर्मा और
1: किरण शर्मा को
0: नमस्कार।

0: congratulated the Indian women's football team on winning the SAF Women's Championship 2026. In a social media post, he said that the team played excellently through the tournament. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New Delhi. Comprehensive strategic partnership and ways to further deepen bilateral cooperation under review. Home Minister Amit Shah calls for close watch on financial and property transactions along international borders. CBSE to close Class 12 re-evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Saleem Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564/8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला

0: अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका

0: और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इजराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है।

0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 2:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर फिल्म संगीत के इस बेहद खूबसूरत सफ़र में आप सभी का दिल से स्वागत है। और शुरुआत करते हैं महफिल की एक मस्ती, एक दीवानगी और एक इंतज़ार के साथ। ठीक है, ये गीत है फिल्म कभी हाँ कभी ना फिल्म का, और इस बेहद जिंदा दिल और एनर्जेटिक गाने को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने, लिखा है इसे बेहतरीन अंदाज से और गाया है अमित कुमार और उदित नारायण की लाजवाब जोड़ी ने। तो धड़कनें जब मचलती हैं तो एक नया तराना बनता है, मोहब्बत के सफ़र में ही दिल को सबसे ज़्यादा दीवाना बनता है। शुरू करने जा रहे हैं आज सुरों का ये सुहाना सफ़र, जिसकी एक हर एक धुन को हर कोई दीवाना बनाता है। तो सुनते हैं दीवाना दिल दीवाना।

सुनो के इस हसीन सफ़र में अब वक्त है आज के कार्यक्रम की बेहद खूबसूरत दूसरी पेशकश के लिए। जहां हमारे पहले गाने में दीवानगी की एक गज़ब की रफ्तार थी, वहीं अब हमारी यह अगली धुन माहौल में एक बेहद रूहानी और रूमानी एहसास को घोलने वाली है। प्यार की इस पहली और मासूम दस्तक को बयां करने वाला ये गीत है। साल 1992 में फिल्म माशूक का संगीत बेहद सुरीला और सदाबहार संगीत के रूप में जाना जाता है। इस खूबसूरत गीत को संगीत की सुरीली कड़ियों में पिरोया है संगीतकार जोड़ी श्याम सुरेंद्र ने और गौहर कानपुरी साहब ने इसे बेहद ही प्यारे अल्फाज दिए हैं। और इस दिलकश धुन को अपनी मखमली

और जादुई आवाजों से सजाया है कविता कृष्णमूर्ति ने और अभिजीत ने। तो सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत फिल्म माशूक से, और चलते हैं।

फिर तेरी कहानी याद आई। इस फिल्म का गीत सुनते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में, बेहद खूबसूरत गीत, अनु मलिक की बेहतरीन रचना है संगीत की और ज़मीर काज़मी ने इसे बहुत प्यार से लिखा है।

तुम्हें देखने से पहले कोई और हसीन ख्वाब न था, इस नादान दिल के पास चाहत का कोई जवाब न था। जब से आए हो तुम जिंदगी में बन के धड़कन हमारी, उससे पहले तो मोहब्बत का ये मौसम इतना लाजवाब न था। सुनते हैं प्यार इश्क और मोहब्बत का ये बेहतरीन गीत। उदित नारायण और साधना सरगम के स्वर में विजू शाह ने इसे बेहद खूबसूरत संगीत से सजाया और लिखा है इसे आनंद बख्शी ने।

0: Akashwadi at 90.
1: कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म मैंने प्यार किया टाइटल सॉन्ग लता मंगेशकर, सुनते हैं।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। हमारी मीडियम वेव पर अगली सभा संध्या 5 बजे पुनः आरंभ होगी। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी सभा जारी रहेगी।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। इस सभा में लीजिए सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुग्यानो ने की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, पोत परिवहन, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण और उर्वरक जैसी द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्ष के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारियों तथा वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा के बारे में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन आज पूरे हो गए। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले शनिवार को ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट गोस्वामी का अंतिम संस्कार किया गया। लेफ्टिनेंट गोस्वामी का राजौरी जिले में अभियान के दौरान गहरी खाई में गिरने से निधन हो गया था। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। न्यू चंडीगढ़ में भारत के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 5 विकेट पर 113 रन

0: बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रिपुदमन,
1: और मैं हूं आपकी साथी सलोनी पारेख। और हमारे सुनने वाले को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बीकानेर की इस शानदार शाम की तरह आपका भी मिजाज उतना ही कड़क और बेहतरीन होगा।
0: अरे मिजाज कड़क होना भी चाहिए सलोनी, क्योंकि आखिर अपना शहर इतना प्यारा है। लेकिन सलोनी एक बात बताऊं, आज सुबह सुबह मेरे साथ एक वाकया हुआ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मतलब मुझे मेरी ही फिटनेस पर शर्म आने लगी।
1: अरे बापरे, ऐसा क्या हो गया रिपुदमन तुम्हारे साथ में? कहीं तुमने बीकानेरी भुजिया का पूरा पैकेट एक साथ तो नहीं खा लिया?
0: ऐसा बिल्कुल नहीं है, भुजिया अपनी जगह है। बात दरअसल, आज सुबह मैं पब्लिक पार्क गया था, सोचा थोड़ी ताजी हवा खा लूं और घूम फिर आऊं। वहां मैंने देखा एक दादाजी जिनकी उम्र करीबन रही होगी 75 से 80 साल के बीच, वो एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथों को आसमान की तरफ खींचते हुए जैसे कोई बादलों को छूने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके चेहरे पर एक गजब का सुकून था।
1: 80 साल की उम्र और एक पैर पर संतुलन, ये तो सच में कमाल की बात है।
0: अरे कमाल तो सलोनी उसके बाद हुआ। मतलब वो इतना सब कुछ कर रहे थे और मैं भी वहां गया था, तभी मेरे जूते के फीते खुल गए, तो मैंने सोचा जूते के फीते बांध लेता हूँ। और उन्हें बांधने के लिए मैं जब नीचे झुका तो मेरी कमर में से कड़कड़ की आवाज आने लगी। मतलब मैं सोच में पड़ गया कि वो मेरी उम्र 25-26 साल की है, और वो मेरी मशीन में से अभी इतनी ज्यादा आवाजें आने लग गई, और वो दादाजी कैसे मतलब वो मेंटेन किए हुए हैं।
1: अरे रिपुदमन, तुम्हारी इस कड़क वाली आवाज से तो मुझे भी डर लग गया है, लेकिन सच कहूं तो तुम्हें एक बहुत ही गहरी बात छेड़ दी है। हम अक्सर देखते हैं कि कोर्ट गेट या सादुल सिंह सर्किल के पास जो हमारे पुराने बीकानेरी लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, वो आज भी साइकिल चलाकर बहुत दूर तक चले जाते हैं। उनकी जो फुर्ती है ना, वो हम आज के युवाओं में कहीं गायब सी हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा सलोनी तुमने, मैं यही सोच रहा था कि आखिर हमारे शरीर की मशीन में क्या बदलाव आ गया है कि जो वो समय से पहले ढीली पड़ने लग गई है। मतलब 80 साल के दादाजी ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं? वो ऐसा क्या जादू है कि वो इंसान उस उम्र में उस पड़ाव पर भी वो लोहे की तरह मजबूत और एकदम सही है?
1: इसमें कोई जादू नहीं है, ये तो पूरी दुनिया या पूरी तरह से सब दुनिया में जो पुराने लोग हैं उन्होंने एक प्रक्रिया अपना रखी थी, ये वो है। चलो मैं तुम्हें सरल शब्दों में समझाती हूँ। देखो, हमारे शरीर में छोटी छोटी अनगिनत ईंटों से मिलकर बना है, जिन्हें हम आम भाषा में कोशिकाएं कहते हैं।
0: अच्छा।
1: या सेल्स कह सकते हैं। अब जैसे जैसे हमारे कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, ये शरीर की ईंटें भी थकने लग जाती हैं।
0: अच्छा, मतलब हमारे घर की वो पुरानी दीवारें होती है वैसे ही कुछ?
1: बिल्कुल। और तुम्हें पता है इन ईंटों के अंदर एक बहुत ही कमाल की चीज होती है।
0: वो क्या?
1: इसे ऐसे समझो जैसे हमारे जूते के फीते के आखिरी सिरे पर एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा लगा होता है ना, जो फीते को उखड़ने से बचाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, लगा होता है। वो प्लास्टिक का फीता ना हो तो पूरा धागा धागा हो जाता है वो।
1: एकदम सही बात है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर भी जो धागे जैसी चीजें हमें जवान बनाए रखती है, उनके सिरों पर ऐसा ही एक ढक्कन या कैप लगा होता है। जब हम पैदा होते हैं तो ये कैप बहुत लंबा और मजबूत होता है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, हम तनाव लेते हैं, भाग दौड़ करते हैं, गलत गलत खाना खाते हैं, और वो कैप धीरे

0: धीरे छोटा होने लगता है, और जब वो कैप बहुत छोटा हो जाता है तब हमारी कमर से कड़क की आवाज आती है जैसे रिपुदमन के पैरों से आई थी।
1: अरे बाप रे, मतलब तुम बिल्कुल एकदम सही बात बोल रही हो। मतलब जो अंदर जूते के फीते वाला जो ढक्कन की तुम बात कर रही हो, जिससे हमारे शरीर में, मैं तो समझता था कि सिर्फ बाल सफ़ेद होना या झुर्रियाँ आना यही होता होगा जो दांत गिर जाते हैं, लेकिन अब जो तुमने बताया कि अपने अंदर का सिस्टम बदल रहा है, बदलता है समय के साथ, वो चीज़ें हट जाती है जिससे, और ऐसा कुछ बताओ जिससे अपन उस प्लास्टिक के ढक्कन जो अपना वो है उसको अपन उसकी रफ्तार को कम कर सकें, उसको घिसने को अपन रोक सकें।
0: तरीके बहुत हैं। चलो मैं एक बात तुम्हें बताती हूँ कि जो तरीका हमारे दादा या परदादा या ऋषि मुनि अपनाते थे, वो जो असली साल वाले दादाजी जिन्हें तुमने पब्लिक पार्क में देखा था, वो उसी तरीके का एक हिस्सा है।
1: अच्छा, जरा हमारे श्रोताओं को भी बताओ और मुझे भी बताओ कि आखिर वैसा तरीका क्या है, क्या सुबह में मुझे भी सुबह सुबह एक पैर पर खड़ा होना पड़ेगा?
0: शुरुआत वहां से नहीं करनी है दोस्तों, शुरुआत करनी है बहुत ही आसान चीजों से, और वो है सही तरीके से सांस लेने से।
1: अरे सांस तो मैं अभी भी ले रहा हूँ, और नहीं लेता तो तुमसे बात कैसे कर पाता?
0: बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन सांस भी हमें सही तरीके से लेनी होती है। छोटी छोटी और उतली सांसें हम लेते हैं। जब हम आजकल इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि हमारी सांसें हमारे सीने तक ही जाती हैं और वापस आ जाती है, लेकिन जब तुम इत्मीनान से बैठकर अपनी आंखें बंद कर एक गहरी लंबी सांस लेते हो, इतनी गहरी कि वो तुम्हारे पेट तक महसूस हो।
1: अच्छा।
0: और फिर उसे बहुत धीरे धीरे छोड़ते हो, तो पता है अंदर क्या होता है?
1: क्या होता है? कोई अलग महसूस होता है या कोई अलार्म बजता है या पेट बड़ा हो जाता है?
0: बिल्कुल नहीं दोस्तों, जब हम गहरी सांस खींचते हैं तो ढेर सारी शुद्ध ऑक्सीजन हमारे खून में घुल जाती है, और जब हम सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं तो हमारे शरीर का सारा तनाव, सारी थकावट और सारे जहरीले तत्व उस हवा के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये जो गहरी सांसों की रिदम है ना, ये सीधे उन थकी हुई ईंटों को तक पहुंचती है और उनसे कहती है कि अरे भाई अभी थकना नहीं है, अभी तो बहुत लंबा चलना है।
1: वाह, मतलब सांसों का इतना गहरा असर हमारे शरीर की उम्र बढ़ने की पूरी प्रक्रिया पर पड़ता है। मैं तो सोचता था कि सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन ये तो शरीर के अंदर की रिपेयरिंग का भी काम करता है।
0: बिल्कुल, और दूसरी सबसे जरूरी चीज है कि शरीर को सही तरीके से खींचना और मोड़ना आना चाहिए। तुमने देखा होगा कि बिल्ली जब सोकर उठती है तो कैसे अपने पूरे शरीर को एक लंबा सा खिंचाव देती है। वो खिंचाव हमारे जोड़ों और मांसपेशियों में जमा हुआ आलस और कड़कपन को दूर कर देता है।
1: हाँ, जैसे कभी कभी सुबह उठकर अपन अंगड़ाई लेते हैं, कुछ उसी तरीके से?
0: ठीक वही तरीका दोस्तों, बस उसी अंगड़ाई को अगर हम एक नियम बना ले, रोज सुबह उठकर अपने हाथों को आसमान की तरफ खींचे, धीरे धीरे आगे की तरफ झुककर अपने पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करें, और जमीन पर बैठकर अपने दोनों पैरों को मोड़कर तितली की तरह हिलाएं, ये सारी चीजें हमारे जोड़ों के बीच एक तरह का ग्रीस या तेल पैदा करती है जिससे हड्डियां आपस में रगड़ नहीं खाती।
1: वाकई में तुमने कितनी आसान भाषा में ये सारी चीज़ें सिखा दी, मुझे इसके लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ती और तुमने इतनी आसानी से मेरी आंखें खोल दी। मतलब लंबी गहरी सांस लेना है और अपनी सांसों की डोर को पकड़ के रखना है, और दूसरा अपने शरीर को जकड़ने नहीं देना है, और रोज थोड़ा थोड़ा खिंचाव करना है।
0: चलो इसी के साथ एक तीसरी बात भी तुम्हें बता दूं।
1: अच्छा,
0: जो हमारे बीकानेर के लोग बड़े अच्छी तरह से जानते हैं।
1: कहीं तुम भुजिया पापड़ नमकीन या कुछ चटपटे की बात तो नहीं करने वाली?
0: अरे नहीं, वो है चोक या थड़े पर बैठकर ठहाके मारना।
1: अच्छा,
0: तुम्हें पता है रिपुदमन, जब हम दोस्तों के साथ बैठकर बिना किसी फिक्र के हंसते हैं तो हमारे दिमाग से एक बहुत ही जादुई केमिकल निकलता है।
1: अच्छा?
0: ये केमिकल हमारे शरीर के उस फीते के ढक्कन को टूटने से बचाता है। जो लोग खुश रहते हैं, मानसिक रूप से शांत रहते हैं, उनकी मशीनरी ज्यादा लंबे समय तक नई जैसी बनी रहती है।
1: क्या बात कर रही हो तुम, मतलब वो पब्लिक पार्क में जो लाफिंग अंकल्स का वो क्लब चलता है, वो कोई टाइम पास नहीं है, दरअसल वो जीवन रोकने का, जवानी रोकने का एक अलग फॉर्मूला है।
0: बिल्कुल
1: सलोनी, आज के बाद पक्का प्रॉमिस है मेरा, तो मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मेरा रूटीन बना लूंगा, रोज सुबह उठकर खुली हवा में जाऊंगा, अपने शरीर को पुरानी मशीनरी को जंग नहीं लगने दूंगा, और 80 साल के वो दादाजी की तरह अपनी मशीनरी को भी एकदम फिट रखूंगा।
0: लगता है कि तुम अपना प्रॉमिस निभाने वाले हो और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे युवानी सुन रहे हमारे सारे दोस्त भी आज इस बात को समझ गए होंगे। उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक सच्चाई है दोस्तों, उसे कोई रोक नहीं सकता।

0: लेकिन उस उम्र के असर को हम किसी तरह अपने शरीर पर हावी नहीं होने देते, ये पूरी तरह हमारे हाथों में है।
1: सही कहा सलो ने। चलो दोस्तों, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, वक्त हो चला है एक छोटे से संगीतमय ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवानी।

पर आकाशवाणी, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

0: वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: होता है।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे और आपके फेवरेट सेगमेंट क्विज टाइम का, जिसमें हम आपसे पूछते हैं दो सवाल और जिसके सही उत्तर हम देते हैं आपको कार्यक्रम के अंत में। तो चलिए बिना किसी देर के पेश है आज के पहला सवाल। हाल ही में राजस्थान के किस गांव में पुरानी संसद भवन जैसा विद्यालय बनाया गया है? मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ। हाल ही में राजस्थान के किस गाँव में पुरानी संसद भवन जैसा विद्यालय बनाया गया है?
3: और दोस्तों दूसरा सवाल है कि राजस्थान में जैन जी थीम पर आधारित पहला नवीनीकृत डाकघर कहां पर शुरू किया गया है? मैं अपने सवाल को फिर से दोहराता हूं कि राजस्थान में जैन जी थीम पर आधारित पहला नवीनीकृत डाकघर कहां शुरू किया गया है? अब हम लौटे हैं तो लेकर कुछ नई बातें हैं, और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम उसकी बात कर रहे थे, फिटनेस की बात कर रहे थे, उस पर तुम कुछ कहना चाहोगी सलोनी?
2: मुझे इस बात पे पक्का यकीन है कि तुम्हारी तरह ही हमारे दोस्त भी कल सुबह अपना अलार्म सेट कर चुके होंगे अपने योगा क्लासेस के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए।
3: अलार्म तो सेट होना ही है सलोनी, लेकिन आजकल एक वो नई चीज जो युवाओं की नींद उड़ा रही है, मतलब एक ऐसा अलार्म बज रहा है पूरी दुनिया में जिसने सबके दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी है।
2: ये कौन से अलार्म की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें कहीं फिर से कोई डरावनी कहानी सुनाने का मन तो नहीं हो गया?
3: अरे नहीं, डरावनी नहीं पर हैरान करने वाली जरूर है। कल मैंने अपने एक दोस्त से मिलने के लिए डूंगर कॉलेज की तरफ गया था। वहां अच्छा? मैंने देखा कि वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने बस कंप्यूटर में अपनी भाषा में एक लाइन लिखी कि भाई

0: तब मुझे एक फलां फलां विषय पर एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट तैयार करना है, और मुझे यकीन नहीं हुआ और तुम्हें भी नहीं होगा कि सलोनी कुछ ही पलों में उस स्क्रीन पर पन्नों के पन्ने लिखे हुए आने लगे, और वो भी सटीक और शानदार तरीके से।
1: मतलब तुम AI की बात कर रहे हो?
0: हाँ, बिल्कुल, तुमने एकदम सही पकड़ा। एक नए अंदाज वाला, जो दिमागी भूत मैं जिसको बोलता हूँ, मतलब मशीन कविताएं लिख रही है, तस्वीरें बना रही है, भाषाओं का अनुवाद सेकंडों में कर रही है। अब देखकर एक पल तो बड़ा मजा आया, पर दूसरे पल मुझे घबराहट भी होने लगी।
1: घबराहट? वो किस बात की? मुफ्त में काम हो रहा है, इसमें तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए।
0: अरे खुशी कैसी सलोनी, मैं ये सोचने लगा कि अगर AI इतने सारे काम खुद ही कर देगी तो हम इंसानों का क्या होगा? वो इतने सटीक तरीके से काम कर रही, फिर हमारे युवा जो दिन रात पढ़ाई करके डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? क्या स्मार्ट कंप्यूटर आने के बाद वो हमारी कुर्सियां भी छीन लेगा?
1: तुम्हारा डर बहुत स्वाभाविक है रिपुदमन। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो शुरुआत में उससे ऐसे ही डर लगता है। आज हर युवा, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो या कला के क्षेत्र में हो, सब ने अपने मन में यही सवाल है कि क्या AI उन्हें बेरोजगार बना देगी।
0: यही सवाल है तो हमें अपना बोरिया बिस्तर उठा के लपेट लेना पड़ेगा।
1: बिल्कुल नहीं, जरा इतिहास के पन्ने पलटकर अगर हम देखें तो पहली बार जब बीकानेर में या इंडिया में कंप्यूटर आया था तो बैंकों में बड़ी बड़ी मशीन्स आई थी, तो लोगों को ये लगा कि अब तो सारा काम मशीनें करने लगेगी, मतलब बाबू लोगों की तो छुट्टी हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ?
0: हुआ तो नहीं था, उल्टा कंप्यूटर आने के बाद भर्तियां थोड़ी और ज्यादा हो गई थी कंप्यूटर चलाने वाले लोगों के
1: लिए। बस एकदम सही जगह पहुंचे हो तुम। दोस्तों, ये जो AI है, ये इंसान की जगह नहीं ले रही है, बल्कि ये इंसान के काम करने के तरीके को बदल रही है। इसे ऐसे समझो जैसे मशीन चाहे कितनी भी अक्लमंद क्यों ना हो, लेकिन उसे ये बताना तो पड़ेगा ही ना कि आखिर उसे करना क्या है।
0: मतलब तुम कह रही हो कि आदेश देना ही पड़ेगा आखिरकार।
1: एकदम सही बात है दोस्तों। अब सोचो तुम्हारे पास एक अलादीन का जिन आ जाए, शानदार चिराग आ जाए तुम्हारे पास में, लेकिन अगर तुम्हें उस जिन से सही तरीके से मांगना ही नहीं आता तो क्या वो तुम्हारा सारा काम कर देगा?
0: नहीं, वो बिल्कुल भी सही नहीं कर पाएगा, वो उल्टा सीधा कुछ भी काम कर देगा।
1: ठीक यही बात AI के पे लागू होती है। आगे आने वाले समय में नौकरियां खत्म नहीं होंगी बल्कि नए रूप से सामने आएंगी। बाजार में उन युवाओं की सबसे ज्यादा मांग होगी जो इन AI से सही तरीके से बात करना जानते हो, उनको सही प्रॉम्प्ट देना जानते हो और कम समय में बेहतरीन काम करवाना जानते हो।
0: बात तो तुम्हारे पते की है, और एक बात और कि मशीन चाहे कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन उसमें इंसानों वाली भावनाएं तो नहीं हो सकती ना।
1: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें AI से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस समय के साथ खुद को बदलने की। इस नई तकनीक से दूर भागने के बजाय हमें इसके हाथ मिलाकर इसके साथ चलना चाहिए। जो युवा इस मशीन को अपना हथियार बना लेगा, AI को सीख लेगा, वो आगे के समय में सिकंदर बनेगा।
0: तो दोस्तों, अपनी सारी चिंताओं को, जैसा कि सलोनी ने बताया, उड़ी उड़ी कर दो और इस AI के लिए तैयार रहो। इसे सीखो, मशीन लर्निंग सीख लो।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक पुरानी साइकिल है,
2: मान लिया
6: बैलगाड़ी है, और जेब में बहुत ही कम पैसे, और कोई आपके पास आकर कह दे कि जरा चांद और मंगल ग्रह पर चक्कर लगा के आना, आप क्या कहेंगे?
2: मैं मना कर दूंगा,
6: क्योंकि इन साधनों के साथ हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश के जिद्दी वैज्ञानिकों ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड।
2: बिल्कुल सलोनी, और उसी जिद का नाम है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दोस्तों आज हम जिस भारतीय स्पेस एजेंसी पर गर्व करते हैं ना, उसकी कहानी किसी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर और इंस्पायरिंग फिल्म से कम नहीं है। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां अरबों डॉलर खर्च करके जो काम नहीं कर पाती है, हमारे इसरो ने बेहद कम बजट में एकदम देसी जुगाड़ के साथ और परफेक्शन के साथ वो कर दिखाया है।
6: बिल्कुल सच कहा रिपुदमन ने। आज हमारे युवा दोस्तों को इसरो का वो सबसे बड़ा फन फैक्ट जानना चाहिए जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। दोस्तों हॉलीवुड

0: की एक मशहूर फिल्म आई थी ग्रेविटी नाम की, जिसे बनाने का बजट लगभग 650 करोड़ रुपए था। लेकिन रिपुदमन, क्या तुम्हें पता है कि इसरो ने उससे भी कम बजट में, यानी सिर्फ 450 करोड़ रुपए में, एक असली का मंगलयान मंगल ग्रह पर पहुंचा कर दिखा दिया। मतलब बॉलीवुड की फिल्म से भी सस्ता हमारा स्पेस मिशन।
1: तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1969 को महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के विजन के साथ। शुरुआत इतनी साधारण थी कि भारत के पहले रॉकेट्स के पार्ट साइकिल बैलगाड़ी पर लादकर थुम्बा लॉन्च पैड तक ले जाए गए थे। और आज जहां हम 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं।
0: और रिपुदमन, सबसे गर्व की बात तो ये है कि इसरो दुनिया की पहली ऐसी स्पेस एजेंसी बनी जिसने चांद के उस हिस्से पर कदम रखा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था, यानी चांद का साउथ पोल। हमारा चंद्रयान 3 मिशन आज इसरो सिर्फ भारत के सैटेलाइट नहीं भेजता है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे बड़े बड़े देश भी अपने सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए इसरो के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसरो सबसे भरोसेमंद और किफायती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, इसरो की कहानी हमें सिखाती है कि साधारण चाहे कितनी भी सीमित क्यों ना हो, साधन चाहे कितने भी सीमित क्यों ना हो, अगर आपके हौसले बुलंद है, आपके पास सही विजन है, तो आप आसमान की ऊंचाइयों को भी छोटा साबित कर सकते हो। सलाम है इसरो के इन सभी वैज्ञानिकों के जाबाज और हौसलों को।
0: सच में इतिहास वही रचते हैं जो दुनिया की परवाह किए बिना अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप में भी अपनी लाइफ में कोई मुकाम हासिल करने की ठान ली है, तो अपने सपनों को उड़ान देते रहिए,

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: सुनोने, जब इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो वो चांद तारे, क्या तारे, चांद भी तोड़ ला सकता है, अब पूरी कायनात को फतह कर सकता है, जैसे हमारे इसरो के जाबाज साइंटिस्ट ने करके दिखाया है।
3: बिल्कुल रिपुदमन, लेकिन पता है जब इंसान कुछ बड़ा करने की ठान लेता है और तरक्की की दौड़ में अंधाधुन भागने लगता है तो वो अक्सर अपने पैरों के नीचे की जमीन को भूल जाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष को फतेह करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसे भी तो बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है।
2: अरे वाह सलोनी, तुमने तो अंतरिक्ष से सीधा जमीन पर लैंड करवा दिया, पर बात तुम्हारी बिल्कुल पते की है। दोस्तों, आज हम जिस तरक्की और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। हम मॉल बना रहे हैं, हम हाईवे बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या हो रहा है, नदियां सूख रही है, पेड़ काट रहे हैं। इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए दुनिया में एक शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहा है, सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
3: बिल्कुल रिपुदमन, अब हमारे कई दोस्त सोच रहे होंगे कि शाम को रेडियो पे ये कौन से भारी भरकम शब्द लेकर बैठ गए हम। तो दोस्तों, इसे बहुत ही सिंपल भाषा में समझाते हैं। सतत विकास का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम आज अपनी जरूरतों को इस तरह पूरा करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, साफ हवा और हरियाली बचे ही नहीं। वैसे रिपुदमन, पानी की बात चल ही रही है तो मुझे अपना एक हालिया अनुभव याद आ गया।
2: अच्छा, कौन सा अनुभव है, बताओ, जरूर शेयर करो हमारे साथ।
3: रिपुदमन, पिछले कुछ समय से मैं जोधपुर में रह रही हूँ और अभी हाल ही में मैं वहाँ थी तब वहाँ पे नहरबंदी का काम चल रहा था, जिस चक्कर में पानी की बहुत कमी होने लगी, नल में पानी आना बंद हो गया। हालत ये हो गई कि हमें और हमारे पड़ोसियों को घर के बाहर लगे पुराने हैंडपंप से पानी भर भर कर काम चलाना पड़ा।
2: अरे बाप रे, इतनी बड़ी मुश्किल हो गई आज के जमाने में, हैंडपंप से पानी खींचना बहुत बड़ा टास्क है यार ये तो।
3: सच में मुश्किल तो बहुत हुई थी, लेकिन उस अनुभव से मुझे एक चीज और अपने आसपास के लोगों ने भी एक चीज जरूर सीखी कि जब एक एक बाल्टी खुद हाथ से भरनी पड़ी तब पानी की एक एक बूंद की कीमत समझ आई। जो पानी हम अक्सर नल खुला छोड़कर यूं ही बहा देते हैं उसकी असली अहमियत हमें समझ आई। तो दोस्तों, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे अभी के रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करना कि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके।
2: शत प्रतिशत तुमने सही कहा है सलोनी, कि हम जब तक खुद खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिनके नाम से सरहदें महफूज रहती है और दुश्मन खौफजदा होते हैं, उनके शौर्य को अल्फाज नहीं जज्बात चाहिए। देश के उन असली नायकों को नमन करते हुए पद्मश्री कैलाश खेर की बुलंद आवाज में सुनिए हर हिंदुस्तान की सीने की धड़कन, पेश है भारतीय सेना।
4: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है।

0: रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सलोनी, जिंदगी तो बड़े मजे में चल रही है, पर एक चीज इसके लिए बहुत जरूरी है जिसके बिना खर्चे नहीं चलते।
1: समझ गई रिपुदमन, तुम्हारा इशारा किस ओर है, वो है पैसों की तरफ। क्यों, सही कहा। और जब बात पूरे देश के पैसे और खर्चे की हो तो हमारे संविधान का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना खुलता है, वो है अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112। हमारे जितने भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आर्टिकल बेहद इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पूरे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। जी हाँ, जिसे हम और आप आम भाषा में बजट कहते हैं उसे अनुच्छेद 112 में बहुत ही भारी भरकम शब्द से संजोया गया है, उसे नाम दिया गया है।

0: उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
1: कितनी मजेदार बात है ना कि बजट शब्द हम आमतौर पर सुनते हैं और उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र ही नहीं है। ये आर्टिकल बहुत सिंपल बात बताता है कि जैसे हमारे घरों में मम्मी पापा पूरे साल की कमाई और खर्चों का हिसाब किताब एक डायरी में लिखते हैं, ठीक वैसे ही इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति हर साल सरकार की कमाई और खर्चों का पूरा ब्यौरा संसद के सामने रखवाते हैं।
0: यानी सरकार पूरे देश के सामने ये साफ करती है कि जनता की जेब से जो टैक्स के रूप में पैसा आ रहा है उसे देश की तरक्की, सड़कों, अस्पताल और हमारे युवा के एजुकेशन, रोजगार में कैसे कैसे खर्च किया जा रहा है और कितना कितना कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है।
1: बिल्कुल रिपुदमन। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप टीवी पर बजट की खबरें सुने तो हमारे युवा दोस्त तुरंत समझ जाएंगे कि ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 का लाइव एक्शन चल रहा है।
0: बिल्कुल। और हमारे दोस्तों के पास बजट आएगा कैसे, उसके लिए हम लेकर आते हैं क्विज सेगमेंट ताकि हमारे दोस्त सीखे और नए नए क्वेश्चंस को बारे में जाने। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है। तो आज के क्विज सेगमेंट के दो क्वेश्चन जो हम आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, उनका पहला क्वेश्चन है,
1: हाल ही में राजस्थान के किस गांव में पुरानी संसद भवन जैसा विद्यालय बनाया गया था? और दोस्तों, इसका सही उत्तर है दादाल गांव जालौर।
0: और दोस्तों, दूसरा प्रश्न था कि राजस्थान में जैन जी थीम पर आधारित पहला नवीनीकरण डाकघर कहां पर शुरू किया गया है? तो इसका जवाब है IIT जोधपुर। ये बड़ा ही दिलचस्प है दोस्तों कि युवा पीढ़ी की पसंद और डिजिटल आवश्यकताओं और आधुनिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाकघर विभाग ने राजस्थान का पहला जैन जी थीम आधारित आधुनिक व डिजिटल सुविधाओं से लैस डाकघर भारतीय औद्योगिक संस्थान IIT जोधपुर परिसर में शुरू किया है। वाकई में सुनने में बड़ा ही मज़ेदार लगता है। पर अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक विशेष जानकारी जो कि रोजगार समाचार के जरिए हम आपको देते हैं आगामी भर्तियों की। तो पहली भर्ती है,
1: तो दोस्तों आज हम रोजगार समाचार में आपके लिए लाए हैं एक बम्पर वैकेंसी नोटिफिकेशन की डिटेल्स जो है SSC की CGL 2026 परीक्षा से रिलेटेड। SSC ने 12,256 पदों पर भर्तियां निकाली हैं
0: और इसका एलिजिबल क्राइटेरिया है कि आपके पास न्यूनतम यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 साल से बड़ी और 32 साल के बीच में आपकी कहीं एज लिमिट होनी चाहिए और कुछ आरक्षित वर्गों को इसमें छूट भी दी गई है
1: और इसकी अंतिम तारीख है 22 जून 2026। तो आप देर ना करें और फॉर्म जल्दी से आप भर सकते हैं SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है www.ssc.gov.in।
0: और घबराइए नहीं अगर कहीं गलती हो जाए तो 29 जून से 1 जुलाई के बीच में आपको करेक्शन विंडो खुलेगी, उसमें आप इस सुविधा का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज कितनी सारी ढेर सारी जानकारियां जानी और मजेदार बातें की, क्यों सलोनी?
1: बिल्कुल। और इसी के साथ दोस्तों, हम जाते जाते आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख।
0: तो जीतने की वो उम्मीद, वो हमारे इशारों इरादों को मजबूत रखिए और मुश्किलों से मत डरिए क्योंकि चमक से दुनिया चमकेगी और आपकी चमक ये रोशनी पैदा करेगी कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं।
1: आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी। नमस्कार।

युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। रात 9:30 पर सुनिएगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। दोनों ही कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

शख्सियत कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे रात 8 बजे। संध्या 7:45 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत।

ग्रामीण श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण जगत होगा संध्या 7 बजे। आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चाएं समेकित कीट प्रबंधन, खरीफ सीजन में काम आने वाले 10 उपयोगी कृषि यंत्र, विश्वकर्मा योजना और किसानों के मित्र पक्षी। इन सब के साथ ग्रामीण जगत कार्यक्रम में लोकगीत और लोक भजन तो होंगे ही,

और अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, उसके अंतर्गत सुनेंगे एक ही कलाकार कार्यक्रम। आज की कलाकार होंगी सुमन कल्याणपुर।

ये तो था हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार

0: और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जाँच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेरिंग 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज की कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर और मैं हूं आपका अपना मित्र डॉक्टर अशोक प्रेम। हमारे विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार में आपका हार्दिक

स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह भारतीय संगीत जगत के एक ऐसे कलाकार से आपको रूबरू करवाते हैं जिसने अपनी प्रतिभा, समर्पण और कला के माध्यम से लाखों दिलों में स्थायी स्थान बनाया है। आज का यह विशेष अंक समर्पित है एक ऐसी गायिका को जिनकी आवाज की मिठास, सुरों की कोमलता और गायन की गरिमा ने उन्हें भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की सबसे सम्मानित गायिकाओं में शामिल कर दिया। वह गायिका जिनकी आवाज सुनकर लोग अक्सर सोच में पड़ जाते थे कि यह लता मंगेशकर जी हैं या कोई और, लेकिन समय ने यह सिद्ध किया कि वे किसी की छाया नहीं थी बल्कि स्वयं एक संपूर्ण पहचान थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय सिने जगत की महान पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर की। तो आइए उनके जीवन और संगीत की इस खूबसूरत यात्रा पर निकलते हैं।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के ढाका शहर में हुआ था, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। उनका मूल नाम था सुमन हेममाड़ी। उनका परिवार मूल रूप से कर्नाटक से संबंध रखता था। पिता श्री शंकर राव हेममाड़ी एक शिक्षित और सांस्कृतिक विचारों वाले व्यक्ति थे।

0: परिवार में संगीत और कला का वातावरण था जिसने बचपन से ही सुमन जी के व्यक्तित्व को आकार दिया। देश के विभाजन से पहले ही उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुमन जी केवल संगीत में ही नहीं बल्कि चित्रकला में भी अत्यंत रुचि रखती थी। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन किया, लेकिन नीति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। संगीत के प्रति लगाव बढ़ता गया और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। उनकी मधुर आवाज, सुरों की शुद्धता और स्वाभाविक भावाभिव्यक्ति ने जल्द ही संगीत प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सुमन जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब प्रसिद्ध गायक तलत महमूद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। तलत साहब उनकी गायकी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें फिल्मी दुनिया में अवसर दिलाने में मदद की। 1950 के दशक में उन्होंने फिल्मों के लिए गाना शुरू किया। उस समय फिल्म संगीत जगत में लता मंगेशकर, आशा भोंसले, गीता दत्त और शमशाद बेगम जैसी दिग्गज गायिकों को दबदबा था। ऐसे दौर में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन सुमन जी ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर स्वयं को स्थापित किया। धीरे धीरे संगीतकारों का विश्वास उन पर बढ़ने लगा और उन्हें लगातार महत्वपूर्ण अवसर मिलने लगे।

आसान नहीं था, लेकिन सुमन जी ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर स्वयं को स्थापित किया। धीरे धीरे संगीतकारों का विश्वास उन पर बढ़ने लगा और उन्हें लगातार महत्वपूर्ण अवसर मिलने लगे।

0: सुमन कल्याणपुर का नाम आते ही एक चर्चा अक्सर सामने आती है, लता मंगेशकर जी से उनकी तुलना। दोनों की आवाज़ों में अद्भुत समानता महसूस की जाती थी। रेडियो पर जब उनके गीत बजते थे तो अनेक श्रोता ये पहचान ही नहीं पाते थे कि गीत लता जी ने गाया है या सुमन जी ने, लेकिन यह तुलना कभी भी सुमन जी की पहचान को कम नहीं कर सकी। उनकी गायकी में अलग कोमलता, अलग मिठास और अलग भाव प्रवणता थी। संगीत विशेषज्ञ ये मानते हैं कि सुमन कल्याणपुर भारतीय फिल्म संगीत की सबसे कम आंकी गई महान गायिकाओं में से एक है। उनकी आवाज़ में एक दिव्य शांति और सहजता थी जो श्रोताओं के मन को सीधे छू जाती थी।
1: लेके अंगड़ाई सरे बजन बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बढ़ी रुसवाई, आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्माई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई,
2: गिर गई।

यदि सुमन कल्याणपुर के संगीत सफर का सबसे चमकदार अध्याय देखा जाए तो वो है महान गायक मोहम्मद रफ़ी के साथ उनकी जोड़ी। रफ़ी साहब और सुमन जी ने मिलकर अनेक ऐसे गीत गाए जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। दोनों की आवाज़ों का मेल इतना सुंदर था कि हर गीत एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, ठहरिए होश में आलूं, ये सारे गीत ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। सुमन कल्याणपुर ने भारतीय फिल्म संगीत के लगभग सभी प्रमुख संगीतकारों के साथ जैसे नौशाद, रोशन, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी, एस डी बर्मन, मदन मोहन, इन सब के साथ काम किया। हर संगीतकार उनकी सुरों पर पकड़ और गीत की भावना को समझने की क्षमता से प्रभावित था। वे केवल गीत नहीं गाती थी बल्कि शब्दों में भावनाएं भर देती थी।

उन्होंने मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, भोजपुरी, असमिया, उड़िया और नेपाली सहित अनेक भाषाओं में गीत गाए। कुल करियर में उन्होंने लगभग 3,500 से अधिक गीतों को अपनी आवाज़ दी। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गीत जिसके बिना भारत का ये त्यौहार पूरा ही नहीं होता।

0: सुमन कल्याणपुर को पद्म भूषण, लता मंगेशकर पुरस्कार, मिर्ची म्यूजिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और अनेक राज्यों और सांस्कृतिक संस्थाओं के विशेष सम्मान मिले। लेकिन 31 मई 2025 यानी अब से कुछ ही दिन पहले भारतीय संगीत के लिए यह दिन अत्यंत दुखद था। 89 वर्ष की आयु में सुमन कल्याणपुर जी ने मुंबई में अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग का एक और उज्ज्वल अध्याय इतिहास बन गया। देश भर के संगीत प्रेमियों, कलाकारों और गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लेकिन कलाकार कभी मरते नहीं, वे अपने गीतों में, अपनी कला में और अपने चाहने वालों के दिलों में सदैव जीवित रहते हैं। और सुमन कल्याणपुर जी भी अपने मधुर सुरों के माध्यम से हमेशा हमारे बीच रहेगी। ये था कार्यक्रम एक ही कलाकार। अब अनुमति दें अपने साथी डॉक्टर अशोक प्रेम को। नमस्कार। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख। पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई।

0: इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इससे पहले अपने उद्घाटन भाषण में डॉ जयशंकर ने कहा कि 4 साल के अंतराल के बाद दोनों देशों के संयुक्त आयोग की ये बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान समुद्री यातायात में गंभीर व्यवधान के बावजूद भारत होर्मुज जल डमरू मध्य से ऊर्जा माल की आवाजाही जारी रखने में सफल रहा। मंत्रालय के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और एलपीजी की बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूप से जारी है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लेने की अपील की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख किया। श्री मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: इधर प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर में फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइक्लोथॉन आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में साइक्लिस्ट, फिटनेस प्रेमी, विद्यार्थी, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और नागरिकों ने भाग लिया। इस आयोजन ने स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया। इसके साथ ही सप्ताह भर चले जागरूकता अभियान का भी समापन हुआ। वहीं विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, सवाईमाधोपुर, कोटपुतली सहित कई स्थानों पर आम नागरिकों सहित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने साइकिल चलाकर और योगाभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख है। बोर्ड के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इस बीच सरकार की ओर से नीट UG परीक्षा को निष्पक्ष

0: और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही प्रश्न पत्र लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी तरह के संदेश पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि अच्छी शिक्षा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान का पूरे समाज में प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा से होता है, इसीलिए इसे उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री बागड़े आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के 23वें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गंग नहर निर्माण शताब्दी वर्ष पर जल संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। वहीं केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति से जुड़े मूल्यों पर कार्य करने की आवश्यकता जताई। प्रदेश में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरी काम करवाए जा रहे हैं। लगभग 2500 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना से 300 से ज्यादा गांवों की लगभग 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि आगामी वर्षों में ये परियोजना बांसवाड़ा जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में शामिल होगी। इसके पूरा होने के बाद क्षेत्र के किसानों को साल भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे भूजल स्तर सुधार, जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही ये परियोजना वागड़ क्षेत्र के जनजाति बहुल इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। शहरी क्षेत्र के सूली डूंगर सनसेट पॉइंट को नगर परिषद ने मॉल रोड की तर्ज पर विकसित करने की खास योजना शुरू की है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से नगर परिषद को हर साल करीब 38.5 लाख रुपए का राजस्व भी मिलेगा।
1: सूली डूंगर पर अभी जो विकास कार्य जारी है वो उसका पूरा सनसेट पॉइंट का रिनोवेशन का है। चूंकि तैयार हो जाएगा उसके बाद उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना होगा। उसके लिए हमने एक नया पीपीपी मॉडल तैयार किया जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक बिडर को एक जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई है वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा। और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी क्योंकि हमने इसकी बिड प्राइस 20 लाख रखी थी। जो इन्वेस्टर आया है उसने बिडर ने रेट डाली 38 लाख के आसपास। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे वो। एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में जब पहले सूली डूंगर जाना जाता था, काफी लोग जाते थे और काफी सालों से ये बिल्कुल ही ऐसा खंडर सा पड़ा था, तो इसको एक रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पे सूली डूंगर को हम डेवलप।
0: प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं कई क्षेत्रों में तेज गर्मी का दौर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में जहां एक और तेज धूप और गर्म हवाओं से आमजन बेहाल रहा, वहीं घड़साना क्षेत्र में तेज बरसात हुई और 3 GD इलाके में ओले गिरे। बालोतरा में दिन भर लू चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। जैसलमेर में तेज गर्मी के चलते दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया। पाली में भी लू और उमस के चलते लोग बेहाल रहे। यहां चिकित्सा विभाग ने आमजन को ORS, नींबू पानी और छाछ जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने और जरूरी होने पर घर से बाहर निकलते वक्त सिर ढककर निकलने की सलाह दी है। इधर मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कल 7 जिलों में बारिश और 2 जिलों में हीटवेव की चेतावनी है। पाली में 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। फाइनल मुकाबला अलवर और जयपुर के बीच हुआ। इसमें जयपुर की टीम ने 3-1 से जीत हासिल की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने विजेता और उप विजेता टीमों सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।

0: के और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख। पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख विशारद जोशी ने तैयार किया है। पाली जिले की अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुजरात के भुज से सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी। बीते दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाली रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे विकास कार्य प्रगति पर हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने बताया कि पाली, मारवाड़, सोजत रोड, फालना, सोमेसर और मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशनों का काम भी प्रगति पर है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 25 मई से 5 जून तक पानी बचाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने लाखोटिया उद्यान से इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान दीपदान के कार्यक्रम हुए, जल चौपाल लगाई गई, पानी को बचाने की शपथ ली गई। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, बावड़ियों, जल स्रोतों की साफ सफाई सहित जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत के काम किए गए। अभियान के दौरान जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस अभियान का समापन विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ और इसी दिन से हरियालो राजस्थान 2026 की शुरुआत हुई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां रखी गईं, वहीं जगह जगह पौधरोपण कार्यक्रम भी हुए। नगर निगम कार्यालय और जिले की सभी नगर पालिकाओं में इन दिनों लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 30 जून तक लगने वाले इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ने, ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। सुगम, सरल और सुरक्षित परिवहन के उद्देश्य से वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन और काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही चालान काटा जा रहा है। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। जनगणना 2027 के तहत चल रहे मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम जोरों पर है। प्रगणक घर घर जाकर 33 प्रश्नों के जरिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसे HLO ऐप में दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 14 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। लोगों ने स्वयं ऑनलाइन जानकारी पोर्टल पर दर्ज की। इस काम में देसूरी ब्लॉक का तिखी गांव जिले में पहले स्थान पर रहा, जहां सभी ग्रामीणों ने खुद अपनी जानकारियां दर्ज कर मिसाल कायम की। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इसमें पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली का उद्देश्य नियमित व्यायाम और फिटनेस के प्रति लोगों को प्रेरित करना रहा। इस दौरान साइकिलिंग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों खांडी गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। पाली कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने किसानों को संतुलित और मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग के महत्व की जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के बारे में बताकर उनका अधिक से अधिक फायदा उठाने को कहा। अभियान का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की

0: उम्र से इन दिनों 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि ये दवा 29 जून तक दी जाएगी। जिले के सभी उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पतालों में ये दवा उपलब्ध है। इसके साथ ही पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोगरी बैठक नई दिल्ली में पूरी हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रिकानी सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा पुनर्मूल्यांकन खातर ऑनलाइन आवेदन जमा करबारी आज आखिरी तारीख। पोर्टल आधी रात तक खुलेला। और मौसम महकमो प्रदेश रा 12 जिला में आंधी और मेह बरसबारो येलो अलर्ट जारी करियो। समाचार आ रहे सागे, मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोगरी बैठक आज नई दिल्ली में पूरी हुई। इन बैठक री सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया रा विदेश मंत्री सुगियोनो करी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर कया के हाल रा बरसा माए दोनों देशों रे बीच गहरी रणनीतिक भागीदारी हुई। वणा कया के बैठक माए राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महताऊ खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक समेत द्विपक्षीय इमदाद रा सगला पहलवा माथे गहरी चर्चा वी। दोनों मंत्री बहुपक्षीय समन्वय ने आगे बढ़ावा और भारत आसियान संबंधा ने मजबूत करबा माथे चर्चा करी। इनसु पहली आपरा उद्घाटन भाषण में डॉक्टर जयशंकर कया के 4 बरस रा अंतराल रे पछे दोनों देशा रा संयुक्त आयोगरी आ बैठक वी है। केंद्र सरकार कयो के अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी रे बावजूद भारत में एलपीजी गैस अब कम कीमत में मुहैया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक बयान में कयो के भारतीय सिलेंडर किनी भी पड़ोसी देश रे मुकाबले सस्तो है। सरकार कयो के पश्चिमी एशिया संकट रे दौरान समुद्री यातायात में देरी रे बावजूद होमोर्ज जल डमरू मध्य सु ऊर्जा माल री आवाजाही जारी राखबा में सफल रहो। मंत्रालय मुजब देश में पेट्रोलियम उत्पादारी कोई कमी नहीं है और एलपीजी री बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूपों चाल रही है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इन बरसों विषय समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन है। ओ दिन खाद्य सुरक्षा ने एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी रा रूप में मजबूत बनावारो मौको देवे है। इन मौके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रेकानी सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में वणा नागरिकों स्वस्थ खान पान री आदतां डालबा और स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बनावा माए योगदान दे बारी अरज करी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी सोशल मीडिया संदेश माए सगलाऊं सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ कानियू जाग जगाबा और स्वस्थ जीवन शैली ने अपना बारो संकल्प ले बारी अरज करी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल रा 77वां कार्यक्रम में भाग लेना। इन मौके केंद्रीय मंत्री कया के साइकिल चलाबासू पर्यावरण ने साख राखबा माए इमदाद मिले है। वणा साइकिल चलाबासू स्वास्थ्य में होबा वाला फायदा रो जिक्र करता थका कया के लोगा ने इन पहल में शामिल होर फिट इंडिया रा सपना ने साकार करनो चाहिए।
2: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों ना हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
1: वठीने प्रदेश में संडे

0: ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम भी राजधानी जयपुर माए फिटनेस पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन ने बढ़ावो दीवारा लगासू साइक्लोथॉन राखी गई इनमें बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट फिटनेस प्रेमी पढ़निया कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और नागरिक भाग लीना इन आयोजन में स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक सहभागिता रो संदेश दियो गयो इनरे सागे ही सप्ताह भर ऊं चाल रियो जागरूकता अभियान भी पूरो वियो बठिने विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली काढ़ी गई श्रीगंगानगर बाड़मेर पाली अजमेर सवाईमाधोपुर कोटपुतली समेत कई ठोड़ा माथे लोगा समेत पुलिस अहलकार और कर्मचारी साइकिल चला लोगा ने फिट रह बारो संदेश दिया ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई री 12वीं कक्षारा परीक्षारा नतीजा जारी हो बारे पछे इनसु जुड़िया मुद्दारी जांच और उत्तर पुस्तिकावा ने फेरों जांच मा खातर ऑनलाइन आवेदन जमा कर बारी आज आखिरी तारीख है बोर्ड रा सोशल मीडिया पोस्टर मुजब ये पोर्टल आधी रात तक खुलिया रहवेला इन भी सरकारी कानियों नीट यूजी परीक्षा ने साफ कोई तरीकाओं कराबा खातर सगला सुरक्षा उपाय पक्का करिया जा रिया है ये परीक्षा 21 जून ने वेला एनटीए सोशल मीडिया माथे चाल री पेपर लीक और उनरी बिक्री सु जुड़ी बाता नकार दियो है वणा पढ़ानी और उनरा घराला सु इन बेबुनियाद माथा माते भरोसा नी कर बारी सलाह दी है राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े कया के चोखी शिक्षा डीणो मां की सबू पहली प्राथमिकता वेणी चाहिए वे कया के ज्ञान रो पूरा समाज में प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा सु होवे है इन खातर सगला ने मिलर उन्ने चोखो बनानो चाहिए श्री बागड़े आज लोक भवन सु महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर 23वां स्थापना दिवस माथे संबोधित करिया हा इन मौके वणा गंग नहर निर्माण शताब्दी बरस माथे पानी बचाबारो संकल्प ले बारी आरज करी केंद्रीय विधि और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विश्वविद्यालय रा स्थापना दिवस री शुभकामनावा देता थका विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति सु जुड़िया मूल्यां माथे काम कर बारी जरूरत जताई प्रदेश में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना ने सर्वोच्च प्राथमिकता देता था कहां जरूरी काम करवाया जा रहा है करीब 2500 करोड़ रुपया की लागत इन परियोजनाओं 332 गांवारी करीब 42000 हेक्टेयर कृषि भूमि ने लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों पानी मुहैया वेला जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कया के आवता बरसा माए आ परियोजना बांसवाड़ा जिला री खेतीरी माली व्यवस्था ने नई दिशा देबा वाली खास सिंचाई परियोजना माए भेली वेला इनरो पूरो हो बारे पछे किसाना ने साल भर खेती खातर पानी मिल सकेला कया के इनसू जमी माए पानी रो स्तर सुधरेला पानी री बचत वेला और गांवाई हलकारा विकास ने मजबूती मिलेला सागई आ परियोजना बागड़ हलका रा जनजाति बहुल इलाका रा सामाजिक और माली विकास माए मील रो पत्थर साबित वेला जैसलमेर माए पर्यटन ने बढ़ावो दे बारी तैयारी शुरू हो चुकी है सहरी हलकारा सूली डूंगर सनसेट पॉइंट ने नगर परिषद मॉल रोड री तर्ज माए बना बारी खास योजना शुरू की है नगर परिषद आयुक्त लजपत लाल सिंह सोढ़ा बतायो कि इन प्रोजेक्ट सु नगर परिषद ने हर बरस करीब 38,50,000 रुपया रो राजस्व मिलेला
1: सुली डूंगर में अभी जो विकास कार्य जारी है वो उसका पूरा सनसेट पॉइंट का रिनोवेशन का है जो कि तैयार हो जाएगा उसके बाद उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना होगा उसके लिए हमने एक नया पीपीपी मॉडल तैयार किया जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक बिडर को एक जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी क्योंकि हमने इसकी बिड प्राइस 20 लाख रखी थी जो इन्वेस्टर आया है उसने बिडर ने रेट डाली 38 लाख के आसपास तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे वो एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में जब पहले सूली डूंगर जाना जाता था काफी लोग जाते थे और काफी सालों से ये बिल्कुल ही ऐसा खंडर सा पड़ा था तो इसको एक रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पर सूली डूंगर को हम डेवलप
0: प्रदेश में मौसम रो मिजाज लगातार बदल रही है एक और कई जिला में आंधी चालबा और मेह बरस बसु लोगा ने गर्मी और उमस राहत मिली तो वठी ने कई हल्का में तेज गर्मी आप रो कहर बरसारी है प्रदेश रा श्रीगंगानगर बालूतरा जैसलमेर पाली माए तेज धूप और गर्म हवा चालबासु आम जीवन बेहाल है वठी ने घड़सामाना माए तेज बरसात रे सागे ओला पड़ बारा समाचार है चिकित्सा महकमो तेज गर्मी रे चालता आमजनू ORS नींबू पानी छाछ सेवन करवा

0: और घरासों से ढाकर 12 आबारी सलाह दी है मौसम महकमो आज 12 जिला में आंधी और बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है इंडरे इतर काल 7 जिला में बरसबा और 2 जिला में हीट वेव री चेतावनी दी गई है पाली माए 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी होड़ आज पूरी हुई फाइनल मुकाबलों अलवर और जयपुर के बीच हुयो इनमाए जयपुर की टीम 3-1 से जीत दर्ज करी समापन जलसा माए मुख्य अतिथि राजस्थान हॉकी संग्रह अध्यक्ष अरुण कुमार सारसत विजेता और उपविजेता टीम समेत चोखो प्रदर्शन करबा वाला खिलाड़ियों ने इनाम दीना उपभोक्ता मामलात महकमारा ई जागृति मंच ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिलियो है ओ सम्मान तकनीक रे जरिए सरकारी प्रक्रिया में सुधार और डिजिटल काम खातर दियो गयो है उपभोक्ता मामला खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कयो के ई जागृति उपभोक्ता शिकायतारा तुरंत निपटारा माए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रियो है इन बरस 1 जनवरी ने शुरू कराया गया ईआई आधारित मंच माथे हाल ताई 229,032 उपभोक्ता मामला रो पंजीकरण करियो गयो जतके 207,032 मामला रो निपटारो करियो गयो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 28 जून ने विचार बतावेला आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी वेला ए सारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून तई राय दे सको हो नरेंद्र मोदी ऐप माए और माय जीओवी ओपन फोरम रे जरिए भी आपरा विचार भेजा जा सके है और अबे आखिर माए खास खबरें एकर फेरू भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में पूरी हुई दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रिकानी सरकार री प्रतिबद्धता दोहराई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा मूल्यांकन खातर ऑनलाइन आवेदन जमा कराबारी आज आखिरी तारीख पोर्टल आधी रात तक खुलेला और मौसम महकमो प्रदेश रा 12 जिला माए आंधी और मे बरस बारो येलो अलर्ट जारी करियो इस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो महाको आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला नमस्कार
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 7 बजने को हैं ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण जगत

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनना सगला किसान भाई बहन ने अनिल सिंह खिचड़ और
1: संदीप पारिग्रह घना घना राम राम
0: राम राम संदीप भाई
1: रामी राम रामी राम।
0: देखो आप चौपाल में बैठे हैं और आज तारे से घनी बातें जकी हम सीख से हैं और अपना किसान भाई बहन भी अपनी खेती बाड़ी में काम ले सी और देखो अपनी जकी बिरखा होने लग रही है आज और ऐसा भी जका किसान भाई बहन है वो खुश है और जकी बिजाई है सावनी री फसल री खरीफ री फसल री बेरी उड़ीक में है कभी चौकी बिरखा हो जानी तो ढंग सो जेठ री जकी बाजरी है वह बिजान कर दे।
1: बात तो आपकी ठीक है किसान ने की चाहिए बिरखा और कह करे कि बिरखा बीननी आवे लूम झूम मधमाती तो आप बिरखा आ तो रही है पर अनिल भाई एक चीज है आपने देखा बुढ़िया बुजुर्ग नी वह कह गया कि जब तक थोड़ा सो ज्यादा नहीं तपे नी अरे बीच में जे बिरखा वगैरह आन लाग जे तो कई बार थोड़ा सो या मन में या संकोच हो कि आगे बढ़ सको कौन बरस है।
0: देखो थे बात साची करे और एरा जका प्रभाव है ये तो नजर आवे ही है और एरा जिम्मेवार कटे न कटे संदीप भाई आपा लोग यहाँ कभी जका पेड़ पौधा है आपा वो काटता जान लाग रहे हैं और जकी आपा कह सका कभी अपनी जकी कोई प्रकृति रो संतुलन बना रही कोई पहाड़ी है और है बना रहो आपा खनन करता जान लाग रहे हैं तो वह सु बचन खतरा आपा की है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगावा और अपनी प्रकृति रो

0: संतुलन बनाए रखा जैसू टेम सरू थे बतायो जबकि सगली ऋतु आवे पर उन सगली ऋतु रो आप फायदा उठा
1: सका। बिल्कुल फायदा उठा सका। और एक चीज और है, देखो आप जो भी वैज्ञानिक लोग आना बुलावा बासू बातचीत भी करा तो एक चीज तो बता रहा है और आप छापे में भी बांचा कई शाणा लोगों के बीच में जाके बैठा बातचीत करा तो भी ठाप है कि अबार जो को बिरखा गो वो कह रहे पैटर्न जो को है नहीं वो बदल रहे है। जगह वगत आनी चाहिए बी टाइम को नहीं आ रही बिंगो वगत चुको है वो थोड़ा सो खिसक गयो। अब आप देखा कि इन मौसम में भी यहाँ बरसात को नहीं हुआ पर बरसात होने लग रही है तो थोड़ी सी एक आस आ भी बंद है कि भी धीरे धीरे थोड़ो सो मौसम में परिवर्तन आयो है खेती तो भी हिसाब हूँ आपने थोड़ा सो खेती बाड़ी में परिवर्तन है भापता थका थोड़ा सो सावचेत रहना चाहिए और हो सके कि जिकी आप उड़ीक जुलाई में रखा बाप धीरे धीरे थोड़ी नेड़े आ जाए और फिर वही एक ढर्रो जो को है वो बन जाए है। हाँ एक संभावना की बात है बाकी आप बातचीत सही कह रहे हो जिकी बात आप बताए कि आपने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा जका है वह लगाना चाहिए और इन चीज की दरकार है क्योंकि आज जका भी पेड़ पौधा आप चारों मेर कटी हरियाली देख रहे हैं तो आप पहली कोई भला लोग है जका लगा गया जका के नीचे आप बैठा या पशु पक्षी जका है वह आपरो आसरो ले रहा है लेकिन आसरो ले वे तो आसरा के नीचे बैठे आस भी रखनी चाहिए कि मालिक जको है वो अपना की दाना चोखाई देसी
0: चोखाई देसी। और संदीप भाई बहन सागे सागे आप यह भी चीज देखा कभी अपनी जकी थे थोड़ी देर पहला कहो कभी आपने जका पूर्व झाया वो अच्छा काम कर गया तो आप यह भी देखा कभी आपने बचपन रे मई भी आप जो खानो पीनो करता नहीं तो मैं खाने पीने रे बाद में करने गए आपने नींद रो गहरा तो यानी कि मैं नाज रे मई आप कह सका कभी एक तरीके की ताकत ही और मैं ताकत सु अपनो शरीर जो है वो सुन रो कानी जाए कर दो
1: बिल्कुल।
0: और अब बार आप जो अनाज खावा वे में जकी वह गुणवत्ता है वह देखने ने कौन मिले नहीं तो आप वह गुणवत्ता ने बनाए रखा और आपने अनाज ने आप बाजार रमाई ऊंची कीमत बेचा और अच्छो मुनाफो भी कमावा और भाई बंधुआ स्वास्थ्य रो भी ध्यान रखा ए खतर की है कि आपने जकी छोटी छोटी बातें हैं उन्हें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।
1: जी हाँ बताओ कौन सी छोटी छोटी बात।
0: जी हाँ देखो आप वैज्ञानिक तरीके से कमा तो समय के कीट प्रबंधन नहीं वो कर लेवा और यह जकी आप
1: कीड़ा मकोड़ा फसल ने बचाओ
0: बिल्कुल बचावा और यह की है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपना पूर्वज भी करता है जी थे थोड़ी देर पहला चर्चा करी कि भी जको तावड़ो तपनो चाहिए और तावड़े तपेड़े रो अपना पूर्वज हमेशा ही फायदा उठाता रहा और वह जेठरी जकी खेत में गहरी जुताई है वह कर वह सुपेला की है कि जका खेत में हानिकारक कीट तत्व हा उन्होंने खत्म कर देता गहरी जुताई सु जका कीड़ा है या कोई आप कह सका लट है वह एंडो है वह धूप में बिल्कुल नष्ट हो जाता और अपनी खेत की मिट्टी है वह तप्र करो सोना हो जाती तो आप वह सु अपने जकी आना री टेम में फसल रमाई कम व्याधियां होए करती और अपनी फसल यानी रासायनिक पदार्थों रो छिड़काव नहीं रहे बराबर हो तो अपनी फसल में उच्च गुणवत्ता होई करती और आपने वो अपने शरीर पर खान पान रो उल्टो असर को नहीं होए करतो सुल्टो असर ज्यादा होए करतो ताकत मिलती है।
1: बिल्कुल सही बात है। देखो आ तो ही एक इन प्रकार की प्रक्रिया जका आप बरसात से पहले कर सका लेकिन अपनी फसल जद लागेड़ी होवे और बी में कीड़ा मकोड़ों को प्रकोप भी हो जाए तो कई चीज़ें हैं जिका मैं आप शामिल कर सका। एक तो है कि जैविक नियंत्रण करना जैविक नियंत्रण की जे आप बात करें तो जैविक नियंत्रण जो है वो बहुत ही सरल हो इनमें क्या है कि जो प्राकृतिक शत्रु जका है परभक्षी कीट जका है परजीवी कीट जका है सूक्ष्म जीव जका है बंग उपयोग करो जाए जी वैज्ञानिक लोग यहाँ बतावे कि लेडी बर्ड बीटल जी हुए बिंगो इस्तेमाल जो है वो चेपा ने ख़त्म करने में बहुत सहायक हुए और इन विधि से पर्यावरण ने कोई नुकसान भी कौन नहीं हुए। जी आप देखा कि रासायनिक जगह आप केमिकल जगह काम में लेवा बी सू ठीक है कीड़ा मकोड़ा जगह ने आप मानो चो बात नष्ट हुए लेकिन बिंग सागे सागे लाभदायक कीट पतंगा जगह है नहीं अनिल भाई वे भी खत्म हो जाया करे लेकिन जब आप जैविक नियंत्रण करा तो इन प्रकार कोई भी नुकसान जो है वो आपने पर्यावरण ने को नहीं होया करे। ये जी आप बात करा कि जैव विविधता जिकी है वह भी आपने सुरक्षित रहा करे
0: और मेरे सागे सागे संदीप भाई आप यह भी देखा कभी मैं बचपन में जो खेत में जाते नहीं तो काको ताऊ जो है शाम रे टाइम जो खेत रो काम समाप्त कर खत्म कर घर चलने की तैयारी करतो नहीं मैं टाइम में फसल रो जो अवशेष बचेड़ो ही करतो वो खेत रे चारों तरफ बचतो अवशेष बचेड़ो जो कोई भी है जड़ है पत्ता है तो उन्होंने इकट्ठो कर एक तो वो अलसीडो खत्म हो जाता

0: और दूसरी वेब में यानी आग लगा देते हैं, तो वह आग लगाने सूखे है कि कई देर तो वह धुआं रहेगा तो धुएं सूं जगह ये कीट व्याधियां वह खत्म हो जाती है। दूसरी जगह वह थोड़ी बहुत आग पकड़ती नहीं हल्की, तो वह में जगह कीट पतंग है वह आकर्षित और वह में आर जल जाते हैं। आजकल वह ने विकास प्रकाश प्रपंच रूप में काम ले।
1: हाँ बिल्कुल जी, आप कोई प्रकाश प्रपंच के जी सांगोपांग व्यवस्था करानी तो कोई बड़ी परात है तासड़ो जो है बेम पानी भर गए और कोई प्रकाश व्यवस्था कर दें ताकि जगह कीट पतंगा जो है प्रकाश का नहीं आवे और नीचे पानी में पड़ के मर जाए।
0: या तो देखो हाँ, की तकनीक होगी और आपने जगह पूर्वज वो खेतरो जो बचेड़ो अवशेष भी काम लेता और जकी प्रकाश प्रपचरी जकी प्रचलित तकनीकी मैंने हाँ, काम में भी
1: बिल्कुल। देखो एक चीज है, आपने जगह बड़ा बुजुर्ग है वह वास्तव में बहुत शाना है समझदार है, और एक चीज और भी है कि धीरे धीरे थोड़ा सो चेतो जो है वो हो रही है कि थोड़ा सो लारे मुड़ के देखने का मन करे कि आपने जगह बुजुर्ग करता भी में की खोटो की कमी क्यों आप इन्हें चीजा ने भुला दियो।
0: देखो थे पाचन मुड़ने की बात करो नी तुम्हारे एक और बात याद आवे संदीप भाई कि भाई जकी आप देखा कि भाई आजकल आधुनिक तरीके से जकी खेती बाड़ी करानी तो अपना जगह किसान भाई बहन है वे मूंगरी बिजाई कर देवे, ग्वार री बिजाई कर देवे, बाजरे री बिजाई कर देवे, कपास री बिजाई कर ले, पर अपना जगह माइत बिजाई करता नहीं तो वो सगड़ो अनाज एक साथ मिलार फिर बीजता और वे में किए जकी मूंगरी पैदावार ना हुई तो बाजरे री हो जाती, बाजरे री ना हुई तो मोटरी हो जाती, मोटरी ना हुई तो ग्वार री हो जाती, यानी सगड़ी पैदावार मिश्रण हो करते तो वे में जको खाली कौन जाता। और वे में वो बड़ी बात यह है कि जकी गहरी उथली जटारी जकी फसलों रो बीजान होए करतो तो ज्यादा बारिश होए करती तो अपने जकी गहरी जटारो भी पैदावार हो जाती, नहीं उथली जटारी पैदावार ज्यादा हो जाती।
1: बिल्कुल देखो दूसरे शब्द में आप कह सका कि मिलवा खेती जकी है जका आजकल वैज्ञानिक लोग कह कि आपने जो कोई भी शुष्क प्रधान जो प्रदेश है बट है मिलवा खेती करनी चाहिए ताकि रिस्क जो है नहीं किसान को वो कम हो। तो आ चीज तो देखो अपना बुजुर्ग पहली करता। दूसरी चीज जकी है अनजाना में सही अनिल भाई जी आप अबार एक जिक्र करियो कि भी उथली जड़ारी फसल भी लेता और गहरी जड़ारी तो अनजाने में इससे ही फसल चक्र का सिद्धांत जिकानी बंग पालन कर लेता।
0: और अबार अपन देखा कि भी जिका आधुनिक तरीके से खेती बाड़ी करे वे में फसल चक्र अपनानो बहुत ही जरूरी हो है, पर आप लालच रहे माई यहाँ देखा कभी अब की बार ए फसल रो लगातार भाव ऊंचो रहने लग रही है तो आप वही फसल रो ज्यादा भी जान करा या कौन देखा कभी अपनी खेत रह माई मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व तो है और कौन सी पैदावार अब की बार आपने लेनी चाहिए और कौन सी फसल री पैदावार आप पिछली बार ली तो आप ए गलत फहमी में नहीं रहा कभी बाजार में भाव कौन सो ऊंचो रहे सी अपनी मिट्टी री भी जानकारी लेवा और यह भी ध्यान देवा कभी अपनी मिट्टी में पैदावार कौन सी फसल रही ज्यादा लेस कहा।
1: बिल्कुल तो सगली चीजों को अपन ध्यान रखना है, जब कार्यक्रम में बैठे हैं तो ध्यान अपन अनिल भाई वो भी रखना है कि गीत संगीत की दुनिया जो की है बिंग काने भी आप थोड़ा सा मुड़ा तो अब बताओ आज पहलो गीत जो को है मैंने और भाई ने कौन सा सुना रहे हो।
0: देखो कालू राम प्रजापति आवाज रमाई यू मीठो सो सुना लोग
1: सुनाओ सो।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: भाई अनिल भाई देखो तो हाँ संदेश हो संदेश हो, पहले आप गीत बहुत फूटो सुनवायो तो बिंगले तो थान देखो धन्यवाद है।
1: देखो धन्यवाद तो आपने श्रोता होना चाहिए जका आपने सुन लाग रहा है और चौपाल रे मैं बैठा अपनी चौपाल री रौनक बढ़ावे
0: साची
1: बात। और जकी बात करा कि भाई कालू राम प्रजापति रा जका गितड़ला है वह तो अपनी थकान दूर करी देवे क्योंकि वह में संदेश भी हो है और आपने सागे सागे आपने सुन में मनोरंजन भी करे। तो देखो बाता तो अपनी चल रही खेती बाड़ी से सरू और किसान भाई बहन उड़ीक भी रखा है कि भाई आप खेती बाड़ी में इसी इसी बात ले रहा हूँ कि जैसू अपने किसान भाई बहन ने फायदो है और जकी फायदा की बात करा संदीप भाई तो किसान भाई बहन ने आप जकी बात बतावा नहीं वे लगभग वे जाने पर उन्होंने याद दिलानी जरूरी हो जाए।
0: हाँ चेतो कराना पड़े। देखो बालाजी ने भी चेतो कराना पड़े भी थारा में कितनी बल शक्ति है।

0: क्योंकि वह में संदेश भी हो है और आपने सागे सागे आपने सुनने में मनोरंजन भी करे। तो देखो बाता तो अपने चल रही खेती बाड़ी से शुरू और किसान भाई बहन उड़ीक भी रखा है कि भी आप खेती बाड़ी में इसी इसी बातें ले रहा कि जैसे अपने किसान भाई बहन ने फायदा हुआ है और जकी फायदा ही बात करा संदीप भाई तो किसान भाई बहन ने आप जकी बातें बतावा नहीं वे लगभग वे जाने पर उन्होंने याद दिलानी जरूरी हो जाए।
1: हाँ, चेतो कराना पड़े। देखो बालाजी ने भी चेतो कराना पड़े भी थारा में कितनी बल शक्ति है।
0: तो वही बात है, चीज़ है। तो जबकि किसान भाई बहन अब अपना बात करा जी मान लो आधुनिक युग है मशीनरी रो युग है तो मशीनरी इनकी सार संभाल रखनी है किया देखभाल रखनी है और खासकर अपना जगह खरीफ सीजन आ रहा जगह आप कह कभी औजार है मशीनरी है कृषि यंत्र है तो उन्होंने किया देखभाल रखा छोटी छोटी बातें हैं उन्होंने ध्यान रखकर तरीके से कर सके है। तो देखो मारे तो गांव रे मई इतनी ध्यान रखा करा संदीप भाई कभी जो खेत सू आप काम धंधो कर लेवा ट्रैक्टर ने तो बेने आप ढाड़ रे मई खड़ो करा ताकि अपनो कृषि यंत्र है पानी इकट्ठो और पानी नहीं बढ़े तो ताकि वो जंग नहीं लागे और पानी सू बचो रहे तो मेरी उम्र बढ़ जाए। बाकी जो छोटी मोटी बातें हैं वे थे ज्यादा ध्यान रखो कभी
1: भाई। देखो ये है कि जे थे ट्रैक्टर को जिक्र कर लियो देखो पहले तो देखो ट्रैक्टर होता को नहीं अब घर घर में होने लग गया तो आ एक जकी इन प्रकार की मशीनरी है जिकी आपने बहुत काम आवे। तो ट्रैक्टर में देखो एक साधारण सी बात है कि आप एक तो भी मैं जो ऑयल बदला भी को ध्यान रखा कि ऑयल वगत पर समय पर आप बदला बोड़ो कालो हो जाए तो अपने नुओ भरा लेना चाहिए
0: अपनी मशीनरी।
1: हाँ बिल्कुल। और ऑयल फिल्टर जो है अभी किसान आम लोग जाना कि ऑयल फिल्टर कौन सो है ध्यान रखा कि ज्यादा पुराना हो जावे तो बिना आप बदलवा लिया। और इन अलावा टायर की कंडीशन पर नजर रखा सागे सागे बैटरी जकी है वो अपनी दुरुस्त होनी चाहिए ब्रेक वगैरह है सही होना चाहिए।
0: बैटरी के बारे में एक बात और है संदीप भाई मैं सुनी कि भी जो को आप मशीनरी काम लेवा नहीं जती तो ठीक है मशीनरी ने अपन लंबे टाइम तक काम नहीं लेनी होनी तो बैटरी उतार रख देवा।
1: हाँ कनेक्शन जो है हटा देना चाहिए
0: हटा देवा या फिर उतार रख देवा तो बाकी बैटरी उम्र बढ़ जाए
1: उम्र बढ़ जाए बात बिल्कुल सच्ची है। इन अलावा चाहे आप कल्टीवेटर काम में ले रहा या थ्रेशर काम में ले रहा तो आम में जिठ भी घूमण आरा पुर्जा है बट ऑयल या ग्रीस की है बापा ने लगातार लगाए रखनी चाहिए
0: और या भी जंग नहीं लग या भी अपन ध्यान रख लेवा कभी जो कि जंग लगने की बात है कही हो भैंसु कभी कल्टीवेटर और रोटावेटर जो है वेरी ब्लेडांग ऊपर जो कि कोई जंग लाग गया तो घिसावट कर लेवा जरूरत है तो उन्होंने बदल भी लेवा और अपन यहाँ लगे कभी नट कोई ढिल्लो हो रहा है या कोई पेच ढिल्लो है तो बहन आप कसर टाइट कर लेवा।
1: अब देखो एक चीज और है आधुनिक खेती में तो कोई उपकरण जो है वो खराब हो जाए तो बिंगो वो पुर्जो झुके बदलवा लिया। अब अपना बुजुर्ग जखा नहीं देखो अनिल भाई वे खेती बाड़ी करता एक तो वो हड़ हो तो है मोटो मिल के जानता खेत ले जानता अब बिंगो जो फाड़ है बिन के की धार कर लेता दरांती है तो बिम धार लगा लेता कसी है तो बिम धार लगा लेता फावड़ो है तो बिन भी थोड़ा सो सांगो पांग रखता है इतना गिनती का औजार है बांसु बहुत बढ़िया और तगड़ी खेती होती। लेकिन अब जिया वगत बदल गयो तो वगत सारू चालनो भी पड़े लेकिन यह है कि जगह भी अपना देसी कृषि यंत्र जगह है बांगी भी सार संभाल जकी आप करा भी जिया कसी है तो भी धार धूर लगा के रखा दरांती जकी है तो भी दांत जगह है पर चौका सा आप बढ़वा के रखा
0: ताकि आप अच्छे तरीके से काम ले सका।
1: और एक चीज और है देखो अनिल भाई बीच में बात में बात आ जाए कि जब किसान का यंत्र जगह है नी भाई सही हालत में और बढ़िया स्थिति में हो है नी तो काम करने को मजा आ
0: मजा ही। तो बात देखो है कि जो को ट्रैक्टर है कल्टीवेटर खरीद है
1: थ्रेसर है कल्टीवेटर जो भी है
0: खींचे तो भाई मैं देखो धार लागेड़ो अपनो पानो लागेड़ो अच्छे तरीके से कल्टीवेटर हो है तो मैंने आसानी से खींच सके और जे अच्छे तरीके धार पानो ग्रीस नहीं देड़ो है तो मैंने मशीनरी खींचता है ना जोर आवे और जोर आवे तो अपनो ईंधन भी ज्यादा खपत हो और अपनो ट्रैक्टर इंजन है जो भी बैठ जावे
1: बिल्कुल
0: तो आपने नुकसान से भी बचना है और खर्चो भी कम करना है तो ये जो छोटी छोटी ध्यान है ये आपने रखना बहुत ही जरूरी है तो भाई शुरू आप काम भी करें
1: बिल्कुल। और आगे देखो बरसात तो आएगी तो बीस पहली सावचेती रागे हाँ चीजा उनकी थोड़ी सी निगाह कर ले
0: और खास करके ध्यान देवा कि भाई आप जो सावणी री फसल रे मैं जका उपकरण काम में लेवा वो गिल्ली मिट्टी रे मैं काम लिया जावे तो वेन आर आपा जको मिट्टी झड़कानो है मिट्टी साफ करनी है या फिर जको ऑयल देनो है टेम टेम सरो इन छोटी छोटी बातों रो आपा जरूर ध्यान रखा।
1: अब एक दूसरी छोटी बात कौन सी जगह अपन ध्यान रखनो है
0: अभी ध्यान तो देखो अपन खास तौर अपने किसान भाई बहनों रो रखनो है पर उनारो मनोरंजन रो
1: तो मनोरंजन को ध्यान रखनो आग लो कौन सो गीतड़ लो
0: तो देखो गीतड़ लो सुना आपा रामनिवास राव और साथियों री आवाज रे मैं
1: सुनाओ।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु कार्रवाई, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु कार्रवाई की शुरुआत 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई थी और 2015 में पेरिस अग्रीमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया जिसका लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। लेकिन लगभग सभी देशों के प्रतिबद्धता के बावजूद अब तक के वादे इस लक्ष्य के लिए काफी नहीं हैं। इसलिए तुरंत और प्रभावी बदलाव जरूरी है, खासकर गरीब देशों को वित्तीय सहायता और समर्थन देना होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार ही सबसे जरूरी उपाय हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य

0: यूनेस्को ने जलवायु जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 भारतीय भाषाओं में जलवायु साक्षरता की सामग्री तैयार की है।
1: संदीप भाई देखो अबार आपा संदेश सुने और अपनी जो की बाता है वो करी और गितरलो भी सुने और देखो अबार आपा बाता करा आगे अपनी खेती बाड़ी तो नित नई तकनीक आई है उनारो तो आपा समझे से बिठावा यहाँ पर वेरे सागे सागे आपने जो का आगे बढ़ने रखा खतर आपने समाज ने आगे बढ़ाने खतर कई बार आपा देखा कि भी खेती बाड़ी में अतिवृष्टि हो जावे या फिर ओलावृष्टि हो जावे या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए मैं शू अपनो काम धंधो है जो को आगे कौन बढ़ पावे तो वह सरू की सरकार भी टेम टेम अपन आगे बढ़ाने खातर घनी योजना ले रहा है जिया थे चर्चा भी करा है विश्वकर्मा योजना है जबकि अपना समाज रहा वंचित लोग है आगे बढ़ने में रेड है उन्होंने आत्र हुनर सीखा और वह आगे बढ़ने रो प्रयास करे।
2: बिल्कुल सही बात है अनिल भाई। देखो यहाँ है कि हाथ को हुनर जगह के नहीं वो भूखो कौन सो है और हाथ के हुनर की जब आप बात करें तो पहली तो जो है कि वो हुनर थोड़ो सो गांव में ही रहते लेकिन बीच में इन प्रकार वक्त भी आयो कि हाथ के हुनर का नहीं लोग तो ध्यान कौन देता क्योंकि मशीनी युग आ गयो। लेकिन अब धीरे धीरे आ चीज पाछी आ रही है कि हाथ बनाएड़ी जी की चीजें है नहीं बांगी मांग जकी है बा बड़ी है और मांग बढ़ने के पीछे वजह आ है कि लोगों को इन प्रकार की चीजों के प्रति नजरियो झुको है वो बदलियो है।
1: नजरिया भी थे बात करी उन्होंने संदीप भाई देखो परसों पर दिन मारो शहर में अठे बीकानेर आनो हो गयो और मारो जो को एक मित्र है सुनार मैं सु मिलनो होयो तो बहन मैं यहाँ पूछ लियो कभी जकी अपने कारीगरी हो है सुनार ऊपर क्योंकि सुनार चर्चा चल रही है और आजकल अपने जकी विदेशी मुद्रा बचाने खातर सोनो खरीदनो को और
2: आह्वान भी करे
1: तो आप नियमारो पालन भी करा पर बह सर मैं पूछ लियो कभी जकी मशीन सु थे कारीगरी करो कोई भी ज्वेलरी ऊपर वह बढ़िया रवे के हाथ सु जकी मनाईडी है वह बढ़िया रवे तो वह बोले कि हाथ सु जकी ज्वेलरी में बनावा वेरी लागत भी ज्यादा हुए और मारे कारीगरारी वे में कुशलता भी हुए और वे जकी ज्वेलरी है वह लंबे टाइम ते चाले और वे में सोनरी जकी खपत है वह भी कम हुए और जकी मशीनरी सु हुए मेरी कीमत कम होया करे और उनारी जकी आप कह सका कि सुंदरता भी वे आतरी कारीगर सु कम होया करे तो आप हाथ री जो हुनर है नी वो तो आप रो योगदान हर क्षेत्र में ही रखा है।
2: और देखो एक चीज और भी है कि आज के जमाने में हाथों काम कोई सीख ले नी तो पिंग कोई भी सामान वो बनावे कोई भी चीज वो बनावे हाथ सु तो वह बिकेगी ए दो पीसा बुक कमाओगो। अब चाहे लोहारगिरी को काम है दर्जी को काम है बड़ई को काम है या फिर आपने मोची को काम है टोकरी बनाने को काम है या राजमिस्त्री है माड़ा बनाने को काम है या अन्य जगह भी पारंपरिक
1: झाड़ू चटाई बुनकर
2: बहुत सारी चीजें
1: किसी भी जगह खिलौना बनावे नहीं वो भी आप रो हाथ रो हुनर रखे
2: हाथ को हुनर रखा।
1: अब एक चीज और करके आप देखा कभी मछली रो जाल बनावे वो भी हाथ रो हुनर है
2: हाथ को हुनर है बिल्कुल। और अब एक चीज है कि सरकार भी इन चीज का ध्यान दे रही है कि हर एक आदमी जो है आम आदमी जो है बिंगन जो रोजगार नहीं तो वो हाथ को हुनर सीख गए आपरी आमदनी जी की बात कर सके तो इनके लिए एक योजना है विश्वकर्मा योजना और आज की योजना है को मूल उद्देश्य वही है कि इन प्रकार जका भी पारंपरिक हुनर आ रहा कला कौशल आ रहा काम है बंग प्रशिक्षण जो को है वो दियो जाए। भाई मने एक काम आ रहे हो पहले हूँ करता आ रहा लेकिन आधुनिक समय में बिंग संबंध में और अधिक जानकारी जकी है बिंग बारे में प्रशिक्षण जो को है वो मिल जाए तो बीसू आपने काम ने और भी अच्छो कर सका। और मोटी बात आ है अनिल भाई कि इन प्रकार रो जब आप प्रशिक्षण कर लिया तो सरकार का न्यू काम काज काम धंधा ने आगे बढ़ाने के लिए अपन ने की मिले
1: वित्तीय सहायता भी दी
2: सहायता जी की है वह मिले
1: यानी जो पीछे है जो वो भी अपन
2: भी काम काज तोड़ने के लिए देखो पीछे टके की तो दरकार है भी। अब आप कोई प्रशिक्षण भी ले लियो है और आपको खुद को काम करना चाहो तो सरकार आपने आज सुविधा देवे कि वित्तीय जो की धन की जो की व्यवस्था है पर सरकार का नहीं हुए वो लोन जो है वो आपने मिल जाए बहुत सस्ती दर पर और आप काम काज जो है वो आगे
1: तो देखो आप जगह चौपाल में सुन लाग रहे हाँ बाता करने लाग रहे हाँ वह सगला मिनट समझ ले वहाँ कभी अपना जगह कोई भी भाई बंधु है जो वो हाथ रो हुनर में आगे बढ़ सके तो मैंने ए योजना सु जोड़ा और मैंने ए योजना के तहत प्रशिक्षण दिलार वित्तीय सहायता भी प्रदान कराने खातर आप जकी सीख है वह देन रो काम करा
2: बिल्कुल। और

0: वो पैसा भी आपा कमावा। और इनके अलावा इनको जो दूसरो पहलू है नी अनिल भाई, बी पर आप थोड़ा सा गौर करा तो आपने भारत की जी की पारंपरिक कला है, शिल्प है, या फिर जिकी भी आपने कह रहे कि सांस्कृतिक विरासत जिकी है, बिंग संरक्षण में भी आप महत्वपूर्ण योगदान जो को है वो दे सका। और आज की योजना है नी विश्वकर्मा योजना, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य जो को है बिने साकार करने में भी सहायक सिद्ध हो।
1: और खास करके आप देखा संदीप भाई के भी यह जकी योजना है एमें शहर रह सागे सागे अपने गाँव रो भी विकास रो पूरा ध्यान रखे गए है। और खास करके जके आप बात करी के भी अपने जो किसान रह कने जके कने खेती बाड़ी जमीन कम है, उपज कम लेस के है, और बुना खातर भी ए योजना में जुड़ आगे बढ़न रो मौको है।
0: बिल्कुल। और देखो एक मोटी बात आ है अनिल भाई कि आपने गाँव में बैठ के इन प्रकार काम धंधो कर सका भी, आपने सरकार का न्यू फायदो जो को मिल रहे, ऋण जो को है मिल रहे। और ऋण की एक बात बताऊं आपने कि पहले चरण जो को है दो चरण है, पहले चरण में आपने लगभग 1,00,000 रुपया मिल रहे, और दूसरे चरण में जब आप पहले चरण पूरा कर लिया तो 2,00,000 ताइंगो ऋण जो को है मिले। और मजे की बात आ है अनिल भाई जो को ऋण मिले नहीं आपने वो रियायती ब्याज दर पर मिल रहे।
1: तो देखो कितनी आपने सहायता मिले, तो आप पूरी योजना की जानकारी लेवा आगे बढ़ा।
0: योजना नाम एक कर दोबारा बताओ, विश्वकर्मा योजना जी की।
1: देखो थे बताए और मैं भी बता देवा, विश्वकर्मा योजना है जो कि आपने किसान भाई बहना ने हाथ रो हुनर जो जाने चाहे वो किसो भी काम करते हुए वह आगे बढ़ने खातर यह योजना में प्रोत्साहित किया जाए। और अब आगे बढ़ने आ रही है बात है तो संदीप भाई अब आगे गीतड़ सरु क्या बढ़ा रहे हो, आगे कह रहे हो गायडो गीतड़ो सुना रहे हो।
0: भाई देखो मैं तो गीतड़ो देखो मैं पसंद को ले आया हूँ वो है गोविंद सिंह राठौड़। तो पहले आपको गीत सुनो।
1: ठीक है।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

संदीप भाई, अब आपां देखो संदेशा सुनिया, और संदेशा पहला आपां मिठो सो लोग गीत सुनियो, और आपने जकी बातें करा खेती बाड़ी री, तो खेती बाड़ी में आपां देखा कि भाई आपां ने सरकार भी टेम टेम सरू आगे बढ़ाने रो प्रयास करे, आपां भी बढ़ाने रो पूरा पूरा प्रयास करा, पर मैं सरू की है कि आपां अपनी खेती बाड़ी में कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन लेवा, तो आपना जका कैस कहा कि मित्र पक्षी है नहीं, उन्होंने भी पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप रसायनिक पदार्थों रो कम से कम छिड़काव करना चाहिए खेतीबाड़ी में अच्छो उत्पादन लेने खातर अच्छी उच्च गुणवत्ता।

0: पैदावार लेने खातर है। तो वह सर अपने जो आप देख सकते हैं कि भी मित्र पक्षी है उन्हें ध्यान देवा। और जी आप बात करा कि उल्लू है तो अपनो जो मित्र पक्षी है
1: कोचरी जी की
0: है, कोचरी है या कि है कि जो अपनी खेती बाड़ी में चूहा है, गिलहरी है, जका अन्य छोटा जीव है जका अपनी फसल ने नुकसान पहुंचावे, वह यो प्राकृतिक शिकारी है और उन्होंने अपनी फसल बर्बाद होने से बचा देवे। जो दूसरी बात करा बगुलो है तो यो भी अपना जो खेत में सिंचाई करा तो वह में जका हानिकारक कीट पतंगा है वे बारे निकल है उन्हें खा जावे, उन्हें जका अंडा है तो उन्हें भी खार आपरी पेटरी आग शांत करे और अपनी फसल ने भी उन नुकसान से बचाव
1: है। बिल्कुल सही बात है। और देखो हालांकि कई पक्षी जका है बैकी नुकसान पगा पर बांस जो को फायदो है नी वो बहुत ज्यादा है। और इन प्रकार आप देखा कि तीतर और बटेर है ऐ जगह पक्षी है खेता में जो भी कोई दीमक लागेड़ी है या अन्य जगह कीड़ा मकोड़ा है बाने चुग चुग के खा जावे। और दीमक तो कह रहे कि तीतर और बटेर को पसंदीदा भोजन हो तो दीमक कोई खेत में हो तो बिंग आस पास जो तीतर बटेर हो तो आप ने दीमक सु निजात जी वा मिल सके।
0: और जो कि आप देखा कि भी मैना है जो पक्षी है वो भी अपने खेत में बहुत ही सहायक है और अपनो मित्र है। वह सुखी है कि अपनी जो फसल में टिड्डी इलिया और जो लार्वा है वह खार नष्ट करे और अपनी फसल ने बैसु बचावे।
1: तो कहो मतलब वो है कि आपने खेत के आसपास जो भी प्राकृतिक आवास है या पेड़ पौधा जो है वह अपन लगाना चाहिए ताकि इन प्रकार जो भी पक्षी है जो किसान रा मित्र है बांग ने रहने की सुविधा मिले। और इनके सागे सागे रासायनिक खाद आपने जगह रासायनिक जगह जो कीटनाशक है और वो प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए और बिल्कुल कम मात्रा में करना चाहिए।
0: और कम मात्रा की जकी बात करी हो संदीप भाई तो आपने जका मिलजुल किसान ने संयुक्त रूप से अपनी फसल में जो कीट पतंगा हुआ है उन्हें एक सागे छिड़काव करा तो वह जका कीट व्याधियां हैं वो एक सागे समाप्त हो जाए। और आप बीघा डेढ़ बीघा एकड़ पे एक सागे करा तो वह व्याधि दूसरे खेत से अपने खेत में पाछी आ जाए। तो आप टेम सारू कम से कम छिड़काव करा और मिलजुल करा एक साथ
1: बिल्कुल
0: तो वैसे अपना खर्चो भी बचे और पैदावार भी अच्छी हो।
1: और देखो जब सामूहिक रूप से कोई काम करा तो भी मैं अपन सफलता भी मिले और सामूहिक रूप से जब आप काम करा तो भी सो एको जो को है वो भी आप बने डो रहा।
0: तो देखो आप बात करी अपनी चौपाल रमाई अपना किसान भाई बहना भी आपने बातें ने सुनी और काम में भी ले सी और आपने भी सीख मिली। तो देखो अबार घड़ी की सुई है वह आपने किसान भाई बहना सु सीख लेन रो इशारो कर रही है तो किसान भाई बहना सु लेवा सीख। घना घना राम राम
1: राम राम।

ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे ग्रामीण जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मिताली सिंह की गाई हुई ये गजल।

इस मोइनुद्दीन खान की गाई गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम शख्सियत, जिसे हम जयपुर से रिले करेंगे।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने किशोर कुमार और आशा भोंसले को सुना। फिल्म का नाम था दो गुलाब। और अब सुनिए कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी को। फिल्म का नाम है बाजीगर।

नलिन दवे और अलका याग्निक को आपने सुना, फिल्म का नाम था प्रेम। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय

0: प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोग

0: तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल दो दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार

0: 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defence, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
2: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defence and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral fora. Dr. Jayashankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jayashankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agnimitra Paul today chaired a high-level administrative review meeting at Siliguri. Discussions focused on municipal affairs, women and child development.

0: यार नाटक लेकर, नचना यार नचना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नचना, भैन की सगाई च तो भैनू नचना ही पैंदा।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ऐ गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

0: प्यार तो होना ही था। इस फिल्म में आपने अभिजीत और अलका याग्निक को सुना। इसके साथ ये फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसे हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से
1: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन्स को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाह

0: पत्रकार उमेश चतुर्वेदी।
1: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 24 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अब भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या न करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है। और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
2: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
3: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were.
4: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मनिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे, और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
3: Fabulous gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
2: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की। सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
0: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुँचाया, चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
2: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थीं,

0: तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
1: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज। लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी, तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी, तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था, और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे, और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे, क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
2: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
0: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
3: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
4: हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
3: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
5: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने,
6: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्य टीम कर रही है, और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
2: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
0: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे। तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सकें। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक

0: आशीष भटनागर।
1: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए, वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जयजी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन 3 स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे। और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे, और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देकर उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। SMS का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग SMS करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब SMS को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास SMS या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
2: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों की रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
3: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ।
2: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
1: 60, 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां

0: भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
1: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे चौकर ने है वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती साजीद पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
2: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
0: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
3: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना। लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए। इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज जिस तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
2: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुँचाया ही नहीं बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिससे नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
0: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
4: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं, मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
0: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने

0: खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
2: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी। और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट टॉर्नामेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई, जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूं, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
0: निशानेबाजी जैसे खेल, जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
3: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
0: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है, तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
1: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
3: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति।
2: श्री MV सुब्बारायडू और श्रीमती M जलजाक्षी के पुत्र श्री MSN मूर्ति संगीत के परिवेश में ही पले बढ़े हैं। आपकी माता श्रीमती M जलजाक्षी स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री NCH कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री MSN मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री MSN मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री MSN मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति, गटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहायक वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला।
3: श्री MSN मूर्ति's exposure to music began early. His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri MSN Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri NCH Krishnamacharyulu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri MSN Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri MSN Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists.

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री एम हरिबाबू ऑन द घटम। Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

पहला था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। दैट वॉज तन्यावर्तनम ऑन द मृदंगम by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया। With this we come to the end of tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy on the mridangam and on the ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात 11:05 पर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।

उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।